वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स और ये रहे अभी क्रिए मैसेज। एक्चुअली एक मैसेज मैंने चूज किया है और उन्होंने ये चीज बताई है रिगार्डिंग सम एक्स्ट्रा हॉट बटर चिकन। लेट मी रीड इट आउट। क्यूरा केतन, लास्ट नाइट आई वॉज क्रेविंग प्रॉपर हॉट करी, सो आई वेंट टू अ लोकल टेक अवे एंड स्पेसिफिकली आस्क फॉर एक्स्ट्रा हॉट करी, हॉट बटर चिकन। What I got was so basically dry chicken chunks floating in a tub of warm sugary tomato syrup. It tasted more like dessert than dinner. And back home, a proper curry has rich gravy, real whole spices, and a fiery kick that leaves your taste buds tingling. Paying $22 for a tub of sweet tomato. Sauce in cold Auckland just made me miss proper home cooked food so much. Why is it so hard to find real spice here? अगर आप नए हैं तो definitely बहुत कुछ miss करने वाले हैं, but yes, India हो या फिर if you are from India then it is from India, otherwise अगर किसी और country से हो तो चाहे कोई भी country हो, हमारी आदत होती है उसे rich एरोमेटिक ग्रेवी की जो रूह को खुश कर दे, इस तरह का खाना हमें बहुत पसंद है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियली मुझे भी बहुत ही ज़्यादा मिस होता था, बट यस एट द एंड मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि ऑब्वियसली व्हेन यू चेंज द लोकेशन, व्हेन यू चेंज द कंट्री एंड ऑल, डेफिनेटली वहाँ के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ता है। बट आई वुड से अगर आपको सेम टेस्ट चाहिए, सेम रिचनेस चाहिए, तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप खुद सीखें और खुद ट्राई करें। सो वंस यू गो बैक टू योर कंट्री, वंस यू गो बैक टू योर होम, यू नो होम कंट्री, सीखें और वापस आके यहाँ पे ट्राई करें। आई एम प्रीटी श्योर वो स्टार्ट में कितना भी बकवास बनेगा बट स्टिल इट विल बी सो यमी, हाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो यस, दैट इज़ द ओनली ऑप्शन। बट यहाँ पे मुझे लगता है, एंड अगेन आई एम सेइंग लाइक यू नो, यहाँ पे काफ़ी अलग लोग यू नो अलग अलग टेस्ट रखते हैं, माई टेस्ट वुड बी दैट, मतलब मुझे सही लगा, मुझे कहीं ना कहीं एट द एंड चीज़ें मिल गई जो मुझे मिस होती थी। हाँ, नॉट 100% बट समवेयर अराउंड। सो यस, सीखिए और आप ट्राई कर सकते हैं। लंच बॉक्स विद केतन, मुझे पसंद है लड़का। 80s के रेट्रो गाने।

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. Save on their best-selling range, including 15% off all Quickstep. Visit your local Flooring Extra showroom today.
2: Flooring Extra. Adore your floor.
3: Before you can vote, you need to be enrolled. We're making it easy, with Electoral Commission teams popping up at events and venues across Aotearoa New Zealand, so you can enrol, check or update your details without any fuss. Find out where our teams will be at vote.nz.
4: Get the bold new flavours of Subway rice bowls, like chicken teriyaki or green goddess falafel, packed with protein, fibre, warm brown rice and your choice of salads, from just $11. Eat fresh with new Subway rice bowls.
5: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो-दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था।
6: फिर ये घर कैसे?
7: अरे ये तो Logic Finance के गुरु केंडोला का कमाल है।
8: एक real estate वाले ने उन्हें suggest किया। मैंने उन्हें Facebook पर ढूंढा और directly contact किया।
5: Neha, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
9: First home buyer बनना है या investment property लेनी है? तो आज ही call करें Logic Finance के गुरु केंडोला को on 0800 Logic Guru.
10: MediaWorks Complaints, how can I help?
11: Yeah, hi, you guys made some ads for my local business.
10: Nice.
11: And you talked me into creating this funny character.
10: Great.
11: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
10: Are you?
11: Yes.
10: Are you Bobby the Baker?
11: Yes.
10: What's that thing you do again?
11: Stop it.
10: You bring the mouth.
11: Stop it.
10: I'll bring the pie.
11: Stop it, please.
10: Okay.
11: Yeah, sure, I might have 3 stores now, but Bobby's more famous than me.
10: So what's the problem?
11: My name's Bruce.
12: Advertise with MediaWorks.
10: New Zealand listens to us.
13: Thinking of an EV? Think MG. Thinking of fast charging, clever tech, impressive range, and electrifying performance? Think MG. Thinking of safety features like a 360-degree camera or a 10-year warranty? Think MG. If you're thinking of an EV, you know who to think. See your nearest MG dealer today. Terms and conditions apply.
14: Non-stop Bollywood.
15: Hum.
14: Playing Bollywood's biggest hits.
16: Lunchbox with Ketan.
17: Heera ladka hai. Telescope leke dhoondega na, to bhi isse bade ladka nahi milega tujhe.
14: Hum.
18: Welcome back. Well, यहाँ पे मेरा एक सवाल है. आपने पहली मूवी कौन सी देखी सलमान खान की? पहली मूवी या फिर पहली एड अगर देखी है तो कब देखी थी मुझे बताना. आप 5599 पे मुझे बताइए. और आई वुड लव टू सी कि आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है और कौन सी ऐसी है, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ मिली है हाथ में जो मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड करने वाला हूँ. तो यस, मेक श्योर आप सोशल मीडिया चेकआउट करें, बिकॉज सोशल मीडिया पे मैं डालने वाला हूँ और वहाँ पे आप चेकआउट करके यू जस्ट फाइंड आउट कि आप अपना जो है वेब चेकआउट कर सकते हैं. जब मैंने उस एड को देखा, एक्चुअली वो एड नहीं, एड था पता नहीं क्या था, व्हेन आई सॉ, मेरे को पहले एआई लगा, बिकॉज इस बंदे की ऑब्वियसली सलमान खान की बंदा तो क्या, मेरे को लगा शायद मैं आपको बताएं, लेकिन एकदम से याद है कि भाई नाम तो मैंने बता दिया. सो यस, सलमान खान को जब मैंने देखा उस एड में, आई वॉज लाइक ये तो एआई लग रहा है, बिकॉज ही वॉज कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ वॉट ही लुक्स लाइक राइट नाउ. तो यस, मैं उसे डालूंगा. ये एड 1983 का है. And you will be so amazed, you will be so surprised by looking at him. कि भाई क्या था ये, I mean, मतलब वो सिर्फ 16 साल के थे तब. अगर आप बड़े, बहुत ही बड़े फैन हैं तो आपको बहुत पसंद आएगा वीडियो, बट अगर नहीं है तो भी आपको बहुत पसंद आएगा. सो यस, देखना वीडियो और बताना मुझे 5599 पे कैसा लगा वो.
14: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। चलिए बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड की। आज है 23 तारीख और 23 तारीख के दिन 1887 की ये बात है जब नाती तुहारे तोआ के चीफ होरोनुकु ते हेउ हेउ ने टोंगरीरो और रुपेहो माउंटेन्स के सैक्रेड एरियाज को क्राउन को गिफ्ट कर दिए थे। उनका मेन पर्पस था कि ये माउंटेन सेफ रहे और सेल ना हो और उनकी स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस जो है वो प्रिजर्व ही रहे। इस गिफ्ट से अराउंड 6,518 एकर्स यानी कि 2,638 हेक्टर्स लैंड प्रोटेक्टर हुई। बाद में इसी एरिया से टोंगरीरो नेशनल पार्क की फाउंडेशन भी बनी। टोंगरीरो नेशनल पार्क न्यूजीलैंड का फर्स्ट नेशनल पार्क बना और दुनिया का फोर्थ नेशनल पार्क भी रहा।

0: ब्रेकफास्ट विद केतन।
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम फीजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फीजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फीजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फीजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन।
3: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
4: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
5: Award goes to Indelible Homes.
4: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
2: Kahani of Indelible Homes.
6: You're planning a quick pop to the shops, but then life hits the fan. Luckily, DoorDash now delivers everything from the warehouse. Groceries, PJs, toys, even their new lunchbox. In a dash. Now that's a good call.
7: Dash!
8: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyangya full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
9: 1% finance and $2,000 off exclusive to West City Auto Group. That's right. Get behind the wheel of JQ J7 SHS for just $47,990 plus on-road costs. With 1% finance and $2,000 off, experience premium style, advanced technology and super hybrid efficiency all in one impressive SUV. Hurry! Limited stock available at 1% finance. Speak with Jimmy Taylor and team at West City Omura JQ. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
10: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ,
11: अच्छा
10: बताओ तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
11: मिसेस सिंह
12: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
13: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहुहु। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
14: Spruce your backyard for spring at Trade Tested. Smash the winter grime with a Karcher water blaster. Get a Hyundai chipper in to shred the branches or deal to the weeds with a fancy Greenworks electric garden sprayer. Be first up, best dressed this spring at Trade Tested.
15: Already got a quote for your bathroomware? But what about a second opinion? Email your cart or your list to Elite Bathroomware. Right now, take advantage of their massive spring sale and experienced staff. Quality reassurance, trending coloured tapware ranges, natural timber vanities, concrete freestanding baths, and everything else bathroomware. September only, spring bathroom sale in-store only. Or apply for VIP access online. Elite Bathroomware, market leaders in designer bathrooms. 59 Allens Road, East Tamaki. See you there.
0: Lunchbox with Keithan.
16: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
17: चटनी शॉट्स।
18: Welcome back. You are listening to Lunchbox. और ये रही चटनी शॉट्स में फट-फट वाली न्यूज़। वेलिंगटन में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट निकी हैगर की न्यू बुक लॉन्च हो चुकी है, जहां हंड्रेड्स ऑफ पीपल पहुंचे। बुक का नाम है डर्टी वर्क। और हैगर के मुताबिक ये टैक्स पेयर्स यूनियन और उनके एक्टिविटीज को एग्जामिन करती है। टैक्स पेयर्स यूनियन ने बुक पर अपनी कंसर्न भी रेज की। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, माओ आओ लैंडस्लाइड रिव्यू के बाद तोरंगा सिटी काउंसिल ने रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट करने के लिए अप टू 500,000 अप्रूव किए हैं। फोकस रिस्क मैनेजमेंट, इमरजेंसी प्लानिंग और काउंसिल के इंटरनल सिस्टम इंप्रूव करने पर होगा। ड्राइविंग टेस्ट कंट्रोवर्सी, NZTA ने एक टेस्टिंग ऑफिसर के एंडोर्समेंट रिवोक किए हैं अनयूजुअल पास रेट्स की इन्वेस्टिगेशन के बाद। ऑफिसर्स ने एलिगेशंस डिनाई करते हुए कहा है कि उनके सारे टेस्ट फेयर और ट्रांसपेरेंट रहेंगे। क्राइस्टचर्च में स्टोलन कार चेज, पुलिस ने एक कमर्शियल हेलीकॉप्टर की हेल्प ली और व्हीकल को ट्रैक किया। रोड स्पाइक्स डिप्लॉय होने के बाद कार रुक गई और दो यूथ को अरेस्ट कर लिया गया। और ऑस्ट्रेलिया में जिसी बेड मर्डर ट्रायल कंटिन्यू हो रही है, बर्ड के सिस्टर्स ने कोर्ट में टेस्टिफाई किया कि उनका भाई अपने फॉर्मर पार्टनर पुलिस ऑफिसर अबेव कॉन्डन के बिहेवियर से काफी फियरफुल था और लमारे कॉन्डन मर्डर चार्जेस डिनाई कर रही है। आखिरी है और सिल्वर फर्न्स फैंस के लिए बहुत ही बढ़िया अपडेट, ऑस्ट्रेलियन डायमंड ने सारा क्लाउ को कॉन्सोलेशन कप स्क्वाड में शामिल कर दिया है। उन्हें रिसेंटली सिक्योरिटी गार्ड को किक करने के केस में फायर और सस्पेंड होना पड़ा था दो गेम के लिए। सीरीज अक्टूबर 18 को ऑकलैंड में शुरू होने वाली है।
0: दिल से दिल तक अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI।

0: ऑफ बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: थ्रोबैक ब्रॉट टू यू बाय 0800 रचना. इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.
2: एड सुनिए, मैं एड चलाता हूँ एंड देन सुन के बताइएगा मुझे 5599. पहले चलो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं ऐड चला लेता हूँ, उसके बाद बात जो आगे की बात है वो बाद में करते हैं.

Well, ये कोई हॉलीवुड का ब्रांड नहीं है, ऑफ कोर्स नाम तो अभी ले लिया था कोका कोला, मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहता एक्चुअली, बट यस इस एड, ये पहला एड था सलमान भाई का, सलमान खान का, जो ये सिर्फ 16 साल के थे, है ना, फैसिनेटिंग। आपने अगर देख लिया वीडियो तो बताइए मुझे कैसा लगा आपको, बट अमेजिंग था यार, अमेजिंग, लाइक लिटरली मैंने जब देखा तो AI टाइप लगा, बट नहीं, दिस वॉज रियल सलमान खान। मुझे बताइए 5599 पे आपको कैसा लगा।

0: keep calm because Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हाल चाल, 16 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 6 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहेगा। आज का दिन बहुत ही विंडी रहने वाला है, बट 20% चांस भी है बारिश के। और आज का सनसेट होगा 6:19 पे।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे
1: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। मेरा नाम केतन है, बने रहिए इस आर में आपके लिए।

0: Well, हम सब ये जानते हैं और ये अवॉइड करते हैं एक्चुअली कन्वर्सेशन अबाउट हमारी विल, डेथ एंड व्हाट विल हैपन, व्हाट विल गोइंग टू हैपन टू अवर मनी एंड प्रॉपर्टी जो हमने पूरे साल पूरे लाइफ में मेहनत करके बनाते हैं. वी अज्यूम कि ये सारा जो पैसा है, ये सारी जो प्रॉपर्टी है, गुडविल्स है, एसेट्स हैं, ये सारे हमारे पार्टनर को या फिर बच्चों को जाएगा या फिर फैमिली के किसी बंदे को जाएगा. बट ऐसा एक्चुअली हर बार होता नहीं है. एंड देन यस, विदाउट अ विल इन न्यूजीलैंड क्या हो सकता है, उसे आपको ज़रूर जानना चाहिए. Who decide what happened to your home, savings, investigation, या फिर personal belongings? And इसका जो process है, create unnecessary stress भी. जी हाँ, conflict और cost for your loved one. यानी कि ये जो episode है, आपको definitely सुनना चाहिए. Unfiltered with Sandy and Rosby. ये actually relatable है to everyone who is doing work, who is, you know, day and night they are doing so hard work ताकि future safe रहे, खुद के लिए और plus अपने उनके बच्चों के लिए भी. तो यस, हमारे बीच आई थी तानिया पिंटो, जिन्होंने एक बहुत ही बढ़िया यू नो हमसे बात की है. सीनियर ट्रस्टी एट पब्लिक ट्रस्ट भी हैं वो, और काफ़ी कॉमन जो मिथ्स होते हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है और ओपन भी किया है, ओपन अबाउट दैट टॉपिक. एंड काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी नोटेबल बात भी बताई उन्होंने. सो आई एम प्रीटी श्योर आपको ये चीज़ जाननी चाहिए. आप मुझे बस ड्राइव लिखिए और 5599 पे भेज दीजिए ताकि आपको ये लिंक इग्नोर आई मीन आपके नज़रों से ना चले जाए. एंड बियॉन्ड दैट, व्हाट डज सक्सेस एक्चुअली मीन? समाज क्या बोलता है कि आप कितने सक्सेसफुल हो, क्या है क्या नहीं है, ये सारी बातें भी डिपेंड करता है. वेदर यू डोंट हैव हाउस but you don't have loan as well and you're having a good life, but you have house but then you have loans and so many things. So kya kaun better in cheezon mein? Is it the one who doesn't have house or is it the one who has the house? So yes, is bare mein Vijay Pooja ne ek bahut hi badhiya society defined success ko unpack kiya hai, from home loans and money to marriage and lifestyle. Ye sari baatein unhone kahi hai. To agar aapko ye sunna hai to definitely hame BF likhiye aur 5599 pe bhej dijiye. But yes, लंच टाइम रेंट लाइन के लिए मुझे टेक्स्ट भेजिए 5599 पे. लंच बॉक्स विद केतन.
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
2: इसके पीछे
1: हाँ.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Dirt cheap, dirty thoughts, a dirty tackle. Sometimes you can get away with being dirty. Other times you need Dirtworks. Ride dirty, keep clean with Dirtworks eco-friendly bike cleaner for mountain bikes, dirt bikes and 4x4s. Check out dirtworks.co.nz for more info. That's works with an X.
2: Winger Motors है आपका home of cherry, जहां नया SUV लेना is easier than you think.

0: एवरीडे ड्राइविंग के लिए स्मार्टर चॉइस. विजिट विंगर मोटर्स वेस्ट ऑकलैंड ग्रीन लेन और पुकेकोई और winger.co.nz. ऑफर एंड सितंबर 30th.
1: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800-862-342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or emergency services.
2: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
3: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया. मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया.
2: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
4: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.
5: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
6: हाँ. अच्छा,
5: बताओ तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं.
6: मिसेस सिंह.
7: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
8: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहूहू. कॉल 0928130 और विजिट focuskitchens.co.nz.
9: Spring savings are on now at Beds R Us. Save on selected sleepyhead beds like the chiropractic perform, half price, queen size, now from 2299. Step up your sleep with spring savings at Beds R Us, Manikau and Pukekohe, where dreams begin.
10: Lunchbox with Ketan.
11: मुझे पसंद है लड़का.
10: हाँ.
12: आज लंच टाइम फ्रेंड लाइन के लिए किसने कुछ मैसेज नहीं भेजा था. कोई बात नहीं. आज वैसे मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ नहीं जो मैं आपके साथ शेयर करूं. हाँ, मुझे हॉर्न पड़े हैं, बट वो मेरी गलती की वजह से पड़े. ऐसा नहीं किसी और की गलती की वजह से मुझे पड़े. बट यस, इट वाज मी ओनली. बट एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील होता है यार कि यार हम जब कुछ एरियाज़ में जाते हैं, लाइक यू नो फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन दे कॉल मी एंड पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, बट वहाँ पर पार्किंग की इतनी ज़्यादा दिक्कत है. एक तरफ येलो लाइन है और दूसरी तरफ लिटरली पार्किंग है ही नहीं. सो इधर इफ दे पार्क ऑन द रोड, इट इज़ गॉन, लाइक यू नो पूरा रोड ब्लॉक हो जाएगा. सो एंडिंग अप पार्किंग ऑन ईदर द ग्रास और जो उनके घर के बाहर का जो एरिया होता है वहाँ पे, विच डजंट लुक नाइस. इस तरह के घर पता नहीं क्यों बनते हैं यार. अगर कोई चाहे मुझे बात बताना तो प्लीज़ डू सो. बट यस, सिलेक्शन सर पे है. बिग प्रोमिसज, बिग डिसीजन एंड रियल कॉन्सिक्वेंसेज, ये सारी बातें होने वाली है अभी कुछ टाइम तक. बट कितनी चीज़ सचमुच होती है, कितनी नहीं होती है, तो आने वाले टाइम पे ही बताएंगे, पता चलेगा. बट यस, ड्राइव शो में इलेक्शन की बातें ज़रूर होने वाली हैं. इस सैटरडे, सॉरी इस थर्सडे नेशनल पार्टी कैंपेन मैनेजर नवतेज रंधावा वो आ रहे हैं यहाँ पे लाइव आप सभी से बात करने के लिए रिगार्डिंग द पॉलिसीज, प्रायोरिटीज एंड उनके विजन न्यूजीलैंड को लेकर. अगर आपके जहन में कुछ सवाल है तो यस, नवतेज रंधावा को पूछने के लिए तो आप हमें 5599 पे ड्राइव लिख के भेज दीजिए सो दैट वी नो दैट यस, ये सवाल उनके लिए है. इस थर्सडे 5 बजे याद रखना, कैलेंडर में डाल दीजिए और भूलना नहीं.
10: लंच के मंच पे टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
2: एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल मिला है मुझे। पहले सवाल करता हूँ, क्या आप भी एक्सटेंशन कोड यूज करते हैं? अगर हाँ तो ये बात जो है ये आपके लिए बहुत ही पते की होगी। अगर आप अपने घर पर टॉर्पिडो 7 का 15 मीटर कैंप एक्सटेंशन लीड है तो एक बार जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि इस प्रोडक्ट को सेफ्टी कंसर्न की वजह से रिकॉल किया गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ एक्सटेंशन लीड्स में वायरिंग जो है वो है बैकवर्ड कनेक्ट हो गई थी और इसे इलेक्ट्रिकल सर्किट प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता और उसे करने पर फ्यूज ब्लो होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये एक्सटेंशन लीड टॉर्पिडो 7 और द आउटलेट स्टोर में 15 जनवरी 2025 से 10 जुलाई 2026 के बीच सेल की गई थी और अगर आपके पास ये प्रोडक्ट है तो अभी उसे यूज़ करना बंद कर दीजिए। एक्सटेंशन कोड को खुद रिपेयर या मॉडिफाई करने की कोशिश ना करें, आप इससे स्टोर में रिटर्न करके फुल रिफंड ले सकते हैं। तो सिंपल रिमाइंडर है, अगर आपने रिसेंटली टॉर्पिडो 7 का एक्सटेंशन लीड खरीदा है, चेक करना वर्थ है कि नहीं, चेक करना वर्थ इट है। और प्रोडक्ट का जो बार कोड है वो 9420789511 है, 9420789511। सेफ्टी के मामले में बेटर है कि एक बार चेक कर लें rather than रिस्क उठाना।

0: Well, I thought this news must share with you. Dunedin के एक मैन को लगा कि वो एक ऑस्ट्रेलियन पुलिस रिक्रूट के साथ 18 साल से जेन्युइन ऑनलाइन रिलेशनशिप में है, लेकिन एक्चुअली वो वुमेन ऑकलैंड में रह रही थी और फेक आइडेंटिटी यूज कर रही थी. OMG, 18 साल से. मैन ने 2006-2024 के बीच उससे करीबन 525,537 यानी कि ऑलमोस्ट मोर देन 500K भेजे, करीबन 1,149 यानी कि 1149 ट्रांजेक्शन्स में. वुमेन ने फेक स्टोरीज, ट्रैवल प्लान्स और इमरजेंसीज का यूज करके रैपिडली पैसे मांगे. पैसे मेनली शॉपिंग, फूड और पर्सनल डेब्ट्स में स्पेंड हुए. स्कैम तब रुका जब मैन डॉटर ने उसकी फियांसे फाइनेंसेस कंट्रोल कर ली. वेल, 44 ईयर ओल्ड वुमेन ने ऑप्टेनिंग बाय डिसेप्शन की गिल्टी प्ली दी है और फरवरी 26 में सेंटेंसिंग होगी. बट यहाँ मेरा सवाल है, 18 साल से जेन्युइन रिलेशनशिप ऑनलाइन रिलेशनशिप में, बट कभी मिलने का मन नहीं किया? आई मीन नॉट कि लाइक नॉट इन अदर वे, बट जब आप किसी से बात करते हो, चाहे कोई भी हो, लाइक दोस्त हो, कोई भी हो, you definitely feel like meeting them, right? And you want to see the how the person looks like. Aur tab to mere khayal se phones bhi itne strong nahi the that you call the video call and all. So 2006 se 2024 tak inhone ye cheez ki hai. Video calls to mere khayal se 2015 se matlab pehle hote the, but not in that way. But again, yeah, ho sakta hai video call kari hogi unhone, kyunki tab dusre apps hua karte the. But still, the person never thought of meeting or not. That's strange, right? Lunchbox with Ketan. Heera ladka hai. Telescope leke dhoondega na, to bhi isse better ladka nahi milega tujhe. Ladies and gentlemen, unfiltered with Sandy and Rizvi. Kyunki duniya mein already bahut sare perfect polished Instagram friendly stories hain, aur unka humse koi lena dena nahi. Yahan kahaniyan hoti hain raw, emotions hote hain real, aur conversations hote hain bina mask ke. Raja, mantri, chor, sipahi sab yahan aate hain. Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेज, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा, कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz.
4: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800-862-342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or Emergency Services.
5: It's double points week at Woolworths. Simply hit Boost in the Everyday Rewards app, spend $50 or more in store or online, and scan your Everyday Rewards card and collect double points on every shop. In Sunday, TCs and exclusions apply.
6: Grab your friends and whānau, pull out your pinkest outfits and join Pink Ribbon Walk this October. Walk together, have some fun and show your support for people affected by breast cancer across New Zealand. Get tickets now at pinkribbonwalk.co.nz.
7: Lunchbox with Ketan.
8: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
7: इसके पीछे
9: लंच के मंच पे.
0: वेल, एक बहुत ही बढ़िया न्यूज लेके आया हूँ बॉलीवुड से. द विवान, विवान ही बोलेंगे ना इसको, या विवान, व्यान, नहीं विवान ही बोलेंगे, को CBFC ने बिग ग्रीन सिग्नल दिया है. बहुत ही बड़ा, और वो काफी रेयर है. रेयर क्या है? सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया स्टार द विवान को CBFC ने बिना एक भी कट या ऑडियो विजुअल नोटिफिकेशन के क्लियर कर दिया है. फिल्म को UA 16+ सर्टिफिकेट मिला है. मूवी की टोटल रन टाइम जो है वो है 2 घंटे 16 मिनट 25 सेकंड, और ये 25 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है. ग्रेट है. वेल, विवान बिकम्स अ रेयर नो कट फिल्म. मतलब गजब यार. मतलब यूजली ऐसा होता है कि 16 प्लस है तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें तो होती है, बट यस, भाटिया, तमन्ना भाटिया भी उस फिल्म में है और देखते हैं यार क्या कमाल करती है फिल्म। अभी वैसे विवादों में तो आई है कुछ गाने को लेके भी, बट ऑब्वियसली ये तो सिर्फ कहा गया है कि उन्होंने गाना उठाया है विदाउट परमिशन, बट चल रहा है, लाइक यू नो द प्लानिंग हैज़ बीन गोइंग अराउंड और इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी चल रही है, एंड जैसे कुछ होता है तो डेफिनेटली हम बताते हैं आपको कितना दूध का दूध और वाटर का वाटर है।
9: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट NZPMI.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI। सुनो।

0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: हुकुम देगी।
1: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। और यस, अभी आप बने रहिए। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर समवन टू एवरीवन हु हैज बीन लिसनिंग टू मी सिंस 2012। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, 2012 नहीं भाई, 12 o'clock, यस 2012। अभी एक्चुअली का ट्रेलर देख रहा था मैं 2012 का, तो मैं वही देख के एकदम मेरे दिमाग में वही रह गया। आप सभी ने देखी 2012, जब दुनिया ख़त्म हो रही थी, ऐसा भी कोई मूवी हुई थी। बट उससे पहले आपको एक चीज़ याद है कि वो जो फिल्म रिलीज़ हुई थी उससे पहले मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो थी काफ़ी अच्छी थी। लाइक लिटरली लोगों को मजबूर कर दिया था टू बिलीव दैट 2012 में दुनिया सचमुच ख़त्म हो रही है। एंड तब तक तो शायद

I had no reason to tell my family, so I was like, मैं इसलिए आ गया. ये उसने कहा था. But he's doing very good, यार. वो अभी भी अपने शहर में, ये कोलकाता में ही है, and he's doing so amazing. अभी तो खैर उसके 2-3 बच्चे हो गए हैं, और काफ़ी मेहनत कर रहा है. अरे मतलब मेहनत इन द सेंस फैमिली में नहीं, वो फिल्म मेकिंग है. फिल्म बैकग्राउंड हम दोनों ने एक साथ ही सीखा था, सो ही इज़ बीन डूइंग सो ग्रेट. बट थैंक यू सो मच, आप बस बने रहिए, ये गाना सुनिए, बहुत ही बढ़िया. बचाओ क्या?

0: फिजी कीर्तन। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया इवेंट होने जा रहा है 25 सितंबर को, यानी कि परसों, वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो एवेन्यू पापा टोयोटो में। आप हमारी टीम के साथ जुड़िए बिकॉज यहाँ पे कीर्तन संग्रह रिकॉर्डिंग होने वाली है और वो सारी रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे रोआ ऐप पे। जी हाँ, जो हमारी प्लेलिस्ट है वहाँ पे भी बढ़िया। एंट्री जो है कंप्लीटली फ्री है। रिफ्रेशमेंट इन कावाज विल बी ऑन सेल ओवर देयर। एंड आपके पास बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है टू विन prizes as well. तो आइए आप अपनी family, friends के साथ and enjoy the evening with us.
1: Lunchbox with Ketan.
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बड़ा लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
1: सनातन World Cup Sports and Cultural Incorporated brings you Valentine's Buffet Restaurant, Lal's Transport in Rams Group of Companies, 11th Sanatan World Cup 2026, hosted by NZ Sanatan Sports and Cultural Incorporated from September 30th. Auckland comes alive with soccer, netball, volleyball and golf teams from New Zealand, Fiji, Australia, Canada and America, competing across Bill McKinley Park and local venues. Unity through sport, culture and community. Contact Tunman Chairperson Jiten Lal on 021-452-503. Stay tuned to Hub, your official media partner.
3: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास है. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेज, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz.
7: Do 8 Sudokus. Save 3 people's lives. Count the holes in a ceiling tile or just count the edges and then multiply it. 2 chapters of an audiobook about stoicism. Help create life-saving products. Watch a round of darts. Take a small nap.
8: These are some of the things you can achieve in one blood or plasma donation at your local NZ Blood Donor Centre or mobile drive. Visit nzblood.co.nz to book your blood or plasma donation appointment.
9: Oh, that tap's boring. Oh, that tap's happy because you paid with a Westpac card. There's over 200 grand of happy taps to be won. Just tap your Westpac debit or credit MasterCard. Search Westpac Happy Taps. Fees, exclusions and terms apply.
10: India comes to town. Aotearoa ka feel hi kuch alag ho jata hai. Tickets ab available hai. nzc.nz par. Be there. Kyunki ye sirf cricket nahi. Ye hai Black Caps versus India.
11: Thinking of an EV? Think MG. Thinking of fast charging, clever tech, impressive range, and electrifying performance? Think MG. Thinking of safety features like a 360-degree camera or a 10-year warranty? Think MG. If you're thinking of an EV, you know who to think. See your nearest MG dealer today. Terms and conditions apply.

0: विद केतन।
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम
0: स्किप या रीप्ले।
3: Welcome back. You are listening to Lunchbox. And yes, अभी एक नई लेटेस्ट खबर लेके आया हूँ। ऑकलैंड के एलिसली विलेज में सुबह करीबन 8 बजे एक बस ने पोल को हिट कर दिया। पोल गिरने से फुटपाथ पर चल रही एक स्कूल गर्ल के सर पे लगी और वो इंजर्ड भी हुई है। सेंट जॉन एम्बुलेंस ने उन्हें उनका सीन पर ही ट्रीटमेंट कर लिया। इंजरीज थोड़ी माइनर थी, विच इज़ गुड, विच इज़ ग्रेट, एंड इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑकलैंड ट्रांसपोर्ट इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन भी अभी चल रही है। अगर आप चाहते हैं फुल आर्टिकल इसके बारे में पढ़ना, तो आप ऑनलाइन जाके पढ़ लीजिए। बट यस, मेरे शो के बाद, एक्चुअली मेरे नहीं, सैंडी के शो और रुजबे के शो के बाद। बट थैंक गॉड लड़की इज ऑल ओके एंड इंजरीज बहुत ही माइनर है। बिकॉज इस तरह की अनसर्टेनिटी होती रहती है, लाइक यू नो, बिकॉज ऑफ द विंड, बिकॉज ऑफ सम फ्यू एक्सीडेंट्स, और ये सारी चीज़ें होती रहती है। सो इन अ वे इट इज़ वेरी गुड पॉइंट कि आप यू नो व्हेन यू आर ऑफ योर हाउस, आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि लाइक कहाँ चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। यू नेवर नो क्या चीज़ आपको हिट कर जाए, राइट?
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

चलिए बात करते हैं एक बहुत ही बड़े मैसेज की। वो ये है कि अटेंशन उबर ड्राइवर्स, अगर आपको आपका नॉट योर फॉल्ट सर्विस के साथ ऑलरेडी क्लेम है तो क्लेम प्रोसेस आगे बढ़ रहा है और एक क्लेम्स मैनेजर आपसे कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो इनटेक फोर अब ओपन है और इसमें आप फोन टीम भी फुली बिजी है, इसलिए कॉल ना करें, ऑनलाइन डायरेक्टली अप्लाई करें nyfservices.com पर। जस्ट अ रिमाइंडर अगेन, यस अगर आपने अप्लाई कर दिया है देन दे विल कॉल यू सून, बट अगर नहीं किया तो इनटेक फोर अभी जाके आप कर दीजिए nyfservices.com पर। एंड जस्ट कीप इन माइंड कि कॉल करने की कॉल ना करना उनको, बिकॉज उनका जो प्लेटफॉर्म है अभी बहुत ही ज़्यादा बिजी आ रहा है, तो इट्स बेटर टू जस्ट गो एंड चेक आउट देयर वेबसाइट एंड अप्लाई फ्रॉम देयर। सेकेंड इज दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो ऑकलैंड में होने जा रहा है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एक्सप्लोर करना है अगर आपको तो डेफिनेटली ये वीकेंड जो है आपके लिए है। 26-27 सितंबर ऑकलैंड के मिलेनियम होटल में दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो हो रही है 10 बजे से लेके 8 बजे शाम तक, यानी सुबह 10 से लेके 8 बजे शाम तक आप आइए और इन्जॉय करिए, जहाँ पर आपको मिलेंगे कुछ काफ़ी डेवलपर्स के प्रिंसिपल्स से डायरेक्टली मिलने का मौका। सेलेक्टेड प्रॉपर्टीज पर 0% अपफ्रंट DLD फीस का ऑफर, डिफर्ड पेमेंट प्लान्स अवेलेबल है वहाँ पे और ऑर्गेनाइजर्स के अकॉर्डिंग प्रोजेक्टेड रिटर्न अप टू 20% ROI हो सकता है। और हमारी टीम जो है वो सैटरडे को 12 बजे के बाद वहाँ पे अवेलेबल रहेगी, तो यस मेक श्योर आप मिलेनियम होटल ऑकलैंड 26-27 सितंबर सुबह 10 से 8 बजे के बीच आप वहाँ आइए और एन्जॉय करिए। 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए आप बिल्ड कैप्स पर भी बुकिंग कर सकते हैं, बट यस नोट 20% ROI एक प्रोजेक्टेड रिटर्न है, गारंटेड रिटर्न नहीं।

वेलकम बैक। स्पोर्ट्स की खबर ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के डायमंड्स प्लेयर सारा क्लो, उनको नेटबॉल ऑस्ट्रेलिया से सैंक्शन मिलने के बावजूद कंसल्टेशन कप स्क्वाड में शामिल कर दिया गया है। क्लो को सिडनी में एक सिक्योरिटी गार्ड को किक करने के केस में करीबन 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर फाइन हुआ था और दो मैच की सस्पेंशन भी मिली थी। सस्पेंड भी हुए थे वो। उन्होंने इंसिडेंट के बाद टीम से माफी भी मांगी और रिमोर्स एक्सप्रेस भी किया। अब वो ऑस्ट्रेलिया की 14 प्लेयर स्क्वाड में शामिल हो चुकी है और कंसल्टेशन कप का जो फर्स्ट मैच है वो 18 अक्टूबर को ऑकलैंड में सिल्वर फर्न के अगेंस्ट होने वाला है। सो यस, कांट वेट टू सी दैट मैच। लंच बॉक्स विद केतन। मुझे पसंद है लड़का।

0: Namaste New Zealand Immigration Services, Indelible Homes, Gem Entertainment, Tradeworks Group, Classic Automotive Solutions Limited, Malolo Rentals and Tours, or IIIA Science. Jankariyon ke liye hum sunte rahein.
1: MediaVox complaints. How can I help?
2: Yeah. Hello.
1: Hi.
2: Hi. Yeah. Can you guys take a radio jingle out of my brain?
1: Oh, you mean like a jingle extraction? It's our job to put advertising in there.
2: Well, okay. Well, what about something like a brain surgeon?
1: They'll probably just explain how repeat hearing puts things deep in your emotional memory, and I really don't think it's necessary. But yes, if you must, I do have the name of one.
2: Great. Sing it to me.
3: Advertise with MediaVox. New Zealand listens to us.
4: There's a new kind of goodness in the pet aisle. Nature's Gift. Discover the new Nature's Gift grain-free range, now in convenient pouches and delicious kibble. Made with real meat, real vegetables and grain-free recipes, it's a natural choice for everyday feeding. So, looking for nature's goodness? You'll love Nature's Gift. All new look, same great nutrition in supermarkets now. The delicious dog food packed with real goodness. Give them the gift of Nature's Gift grain-free. Discover the range in store today.
5: Raz, romance, action or supernatural power se bhari kahani. A thrilling fantasy adventure. The One, starring Siddharth Malhotra and Tamanna.
6: This one ki kali shakti, raat ke saaye se bhi kaale.
5: The One, releasing in cinemas on 25th September.
7: Ab mujhe dheere dheere samajh aa raha hai.
8: Jo kuch bhi ho raha hai, sab ek number ki bakwas.
5: Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
9: Hame mata ka bulava aaya hai.
10: This is Warehouse Country, where on your way home from work, school or wherever, you can top up on eggs, nature's fresh bread and milk at the best price in the country. From, well, the warehouse.
11: Clocks are about to go forward, which means you're about to lose an hour's sleep. That's better than losing your life. Install smoke alarms where you sleep this daylight saving. This message is brought to you by Fire and Emergency New Zealand.
12: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
13: Iske piche na 3-4 ladkiyan padi hui hain.
12: Iske piche.
14: Hum.
12: Tech Talk.
15: Tech टॉक के सेगमेंट में आपका स्वागत है। यूएस और चाइना के बीच एआई रेस प्लस नेशनल सिक्योरिटी टेंशन की वजह से ग्लोबल एआई सेफ्टी डील मुश्किल हो रही है। दोनों कंट्रीज एआई के रिस्क को रिकॉग्नाइज करती है और साथ ही साथ एक दूसरे पर ट्रस्ट कम है और एआई डोमिनेंस के लिए कॉम्पिटिशन भी स्ट्रांग है। ट्रंप और जी की अपकमिंग मीटिंग में एआई सेफ्टी और इमरजेंसी कम्युनिकेशन डिस्कस हो सकती है। फुल एग्रीमेंट डिफिकल्ट है, लेकिन क्राइसिस के टाइम डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल बनाना एक पॉसिबल फर्स्ट स्टेप हो सकता है। सो यस, एआई को सेफ्टी डेवलप करने के लिए यूएस चाइना कोऑपरेशन जरूरी है, बट जियोपॉलिटिकली राइवलरी बिगेस्ट हर्डल है। माय क्वेश्चन इज व्हाई यू वांट टू बी नंबर वन, व्हाई यू ऑलवेज वांट टू बी इन द कंपटीशन। आई मीन यू कैन डू द वंडर्स विदाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ द कंपटीशन, क्योंकि यूएस की तो हमेशा से ही रही है दैट दे वांट टू शो दैट दे आर द बेस्ट, चाहे कुछ भी वॉर हो, साइलेंट वॉर हो या फिर एनीथिंग, यू नो, रेस टू मून हो, हर एक चीज में।
12: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI.

0: बढ़िया आवाज गूंजेगी।
1: Throwback brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: And that's all for today guys. बहुत ही बढ़िया आज का दिन, मौका, बातें और आप सभी के मैसेजेस। आप बस बने रहिए, सैंडी विल बी जॉइनिंग शॉर्टली इन द कॉफी ब्रेक एंड उनके बाद रुज़बी उनका साथ देंगे द ड्राइव शो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू, सी यू टुमारो सेम टाइम।

0: with Kaitan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम.
2: Driving you home. Drive show with Sandy and Rusby.
3: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
4: ये गलत बोल दिया यार.
3: और पहनता भी नहीं है उसको.
4: बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुजबे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
3: इंटरेस्ट
5: ब्रांड हो गया अभी वो.
4: अभी ब्रांड हो गया ना.
3: रुजबे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
7: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया. घर बेचने को कह रहे थे.
8: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं. डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है.
7: इसीलिए NZPMI से बात कर लो. वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं.
9: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है. आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए. NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस. कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
10: The Specsavers Specstravaganza store-wide sale is on now. Phew, bit of a tongue twister, hey? Get any two pairs of glasses store-wide, even designers, for only $299. Save up to $200. Hurry, offer ends October 3. Should have gone to Specsavers. Include single vision lenses, conditions apply.
11: Know someone who may need support to enroll or vote? Ask them what would make it easier. It might be helping to find the nearest voting place, providing a lift, or supporting with the paperwork. Find more accessible information at vote.nz. Choose from audio, braille, easy read, large print, and New Zealand Sign Language. Or call 0800 36 7656. Brought to you by the Electoral Commission.
12: Grab your friends and whānau, pull out your pinkest outfits, and join Pink Ribbon Walk this October. Walk together, have some fun, and show your support for people affected by breast cancer across New Zealand. Get tickets now at pinkribbonwalk.co.nz.
10: ANZ is giving away Auckland FC tickets to fill this seat, and this seat, and that seat.
13: James, this is a radio ad.
10: Oh, sorry. ANZ is giving away 5,000 free tickets to Auckland FC's first home game of the season. It's our way of thanking the fans and Aucklanders who've backed the club from day one. Now the champs are back for more. So let's give them the welcome home they deserve and pack the stands. Search ANZ Pack the Stands for more information on how to claim your free tickets. T's and C's apply.
0: Check.
14: Brought to you by Man Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Man Tires on 0800-00010.
0: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
15: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. The Chief Ombudsman has been asked to urgently meet with the Secretary of Education over Official Information Act concerns. It comes after a leaked video shows a senior official appearing to advise staff on how to circumvent the OIA process. There are claims it's not a one-off. John Allen says he has significant concerns about the allegations. Auckland police are investigating an unprovoked assault on a 16-year-old in Henderson. They say the boy had observed three men drinking beer inside a bus shelter on Swanson Road on September the 9th. Without warning, one approached the victim and punched him with so much force it caused him to stumble on the road and left him with facial injuries. Legislation is passed that will in future allow every mum up to 3 days of inpatient postnatal care. Implementation will be phased in over 3 years to allow the health system to adjust. And a bizarre new theory has been put forward as to what happened to a missing boy at a remote South Australian property. Gus Lamont vanished a year ago from his farm in outback Grampus. Grandmother Josie Murray says police and family are now searching nearby eagle nests.
16: The eagle aspect should be looked at. It's highly unlikely, but it's not impossible.
15: to sports, seven pace bowlers and explosive openers Finn Allen and Tim Seifert are features of the Black Caps T20 squad to face India in a five-game series starting 4 weeks tomorrow in Christchurch. And to rugby league with Machinery House in a league of their own. Oh, the irony. After referee Ashley Klein's controversial decision-making and the Warriors' loss to the Knights, he's been appointed as the Bunker Review official in Friday's Dolphins-Roosters grand final qualifier.
1: Sports News.
7: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
16: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 13.9 डिग्रीज और आज को ओवरनाइट काफी चिली वेदर रहने वाला है 4 डिग्रीज वापस सर्दियों में हम आ चुके हैं सनसेट 6:19 पर
7: द बीट ऑफ बॉलीवुड
17: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है
7: कॉफी ब्रेक विद सैंडी
16: 3:03 हो चुके हैं अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है यू हमिंग अलोंग विद सैंडी और अभी से लेकर 4 तक मेरा और आपका साथ है कॉफी ब्रेक में और उसके बाद मेरा साथ यहां पे हो जाएगा रुजबे के साथ इन द ड्राइव शो सो कैसे हैं आप और आपका डे आज का कैसा जा रहा है हम डे पे हम एंटर कर चुके हैं सो दैट मीन्स कि इसके बाद की जर्नी आपकी थोड़ी ईजी रहने वाली है सो सेप्टेम्बर के एंड में आ रहे हैं डे लाइट सेविंग के पास हम एक्चुअली में आ रहे हैं दिस संदेश को नवेज के बारे में और भी डिटेल्स एक्चुअली में आपके बारे में मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एंड वेदर यार जैसे मैंने बताया कि 4 degrees आज ओवरनाइट मतलब अभी तो वार्म टेम्परेचर शुरू हुआ था मतलब वापस हम सर्दियों में अभी जा रहे हैं बट मुझे लगता है कि इन दिस वीक ये थोड़ा ऐसा रहने वाला है टिल वीकेंड कुछ ऐसा वेदर रहेगा संडे को क्वाइट विंडी एंड ऐसा रेनी दिखाई दे रहा है सो आफ्टर दैट थोड़ा टेम्परेचर जो है ये ठीक हो जाएगा होपफुली लेट्स सी एनीवे सो आपका डे कैसा जा रहा है ये भी आप यहाँ पे शेयर कीजिए और क्या क्या आपके आसपास हो रहा है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ थोड़ी देर में

0: 3:14 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं फिलहाल कॉफी ब्रेक. आप यहाँ पे सुन रहे हैं आपकी सुपर सिटी में क्या क्या हो रहा है इसकी जानकारी भी थोड़ी देर में आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे. लेकिन आपको बता देंगे इलेक्शन स्पेशल सेगमेंट जो आपके लिए हम लेके आए हैं. इलेक्शन जो स्पेशल प्रोग्राम है ये एवरी थर्सडे 5 PM आपके लिए हम यहाँ पे लेके आते हैं ड्राइव शो में. सो इस बार इलेक्शंस में पिछली बार हमने एक्ट पार्टी के लीडर डेविड सेबर के साथ बातें की थी और इस बार जो हम बातें करने वाले हैं नेशनल पार्टी के कैंपेन मैनेजर के साथ हम बात करने वाले हैं जहां पे हम पॉलिसीज़ के बारे में प्रायोरिटीज़ के बारे में उनका विजन क्या है न्यूजीलैंड को लेके एंड यू नो द थिंग्स जो अभी बाहर जाती है न्यूज़ जाती है बिकॉज कैंपेन्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर निकल के आती है. तो ये सारी बातें हम करने वाले हैं इसी थर्सडे को यानी कि कल 5 बजे के बाद. अगर आपका कोई सवाल है यू नो जिस वजह से एक कैंपेन को तैयार किया जाता है नेशनल पार्टी के लिए अगर आपका कोई सवाल है बेसिकली तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं एनी क्वेश्चन 5599 जो कि ऑफकोर्स इस इलेक्शंस के साथ रिलेटेड है 5599 पर ड्राइव कीवर्ड के साथ आपको अपना सवाल भेजना है तो आपके सवाल को हम यहाँ पे रखेंगे और कल हम इनसे ज़रूर पूछेंगे. और भी नवतेज रंधावा यहाँ पे शामिल होने वाले हैं तो और भी डिटेल में इनके साथ एक्चुअली भी हम इसके बारे में बात करने वाले हैं. सो मेक श्योर कि अपने मैसेजेस आप कर रहे हैं 5599 पर ड्राइव कीवर्ड के साथ. कॉफी ब्रेक विद सैंडी
1: मार्च 2027 एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
2: रुस्बे टिकट्स बुक हो गए
3: तो फिर देर किस बात की बाली बुला रहा है
2: सनसेट बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी
3: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन
2: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
4: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
5: हेलो एवरीबॉडी.
1: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
6: थोड़ा घूमे आओ अच्छा लगेगा आपको मन बहल जाएगा आपका भी.
1: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे ओनली ऑन हम.
7: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना.
8: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
9: And award goes to Indelible Homes.
8: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
10: Kahani of Indelible Homes.
11: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery anywhere in Auckland. Huge side-by-side stainless steel fridge freezer $699. 10kg 9-star energy heat pump dryer $799. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
12: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
13: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
14: There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.
15: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
16: अरे ये तो Logic Finance के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक real estate वाले ने उन्हें suggest किया. मैंने उन्हें Facebook पर ढूंढा और directly contact किया.
15: Neha, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
17: First home buyer बनना है या investment property लेनी है तो आज ही call करें Logic Finance के गुरु कैंडोला को on 0800 Logic Guru.

0: 327 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. और वैसे लिस्ट आई है टॉप प्लेसेस टू विजिट इन 2027. न्यूजीलैंड के दो जगह का नाम इसमें जरूर है. डनीडन एंड ओमारू का नाम है. हैव बीन नेम्ड न्यूजीलैंड्स ओनली इंक्लूजन इन लोनली प्लैनेट्स ग्लोबल बेस्ट इन ट्रेवल 2027 लिस्ट. क्या बात है. और मतलब दुनिया भर में इसका नाम है. आपसे जानना चाहूंगी कि आप में से कितने लोग डनीडन एंड ओमारू में गए हैं. सो अगर आप में से गए हैं तो यहाँ पे लिख के भेजो. मैं दोनों प्लेसेस में नहीं गई हूँ अभी तक. मुझे घूमने का शौक है यहाँ पर भी, लेकिन इन दोनों जगह पे मैं अभी तक नहीं गई हूँ. डनीडन के बारे में बोला गया है कि वाई ये लिस्ट में है इसमें, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इंडी म्यूजिक है वहाँ पे, फूड, आर्ट सीन्स एंड काफ़ी लार्ज स्टूडेंट पॉपुलेशन है वो हमें पता है. एंड वहाँ पे म्यूज़ियम है ऑफ नेचुरल मिस्ट्री जिसमें काफ़ी चीज़ें हैं लाइक मोआ बोन्स एंड मोमीफाइड कैट्स है उसमें. एंड वाओ, अपेरेंटली डायनासोर फॉसिल्ड डायनासोर डंग भी है वहाँ पे. ओके, सो वहाँ पे एक बहुत बड़ा कैसल भी है 1871 में जो बनाया गया था, जो कि वन ऑफ द हाईलाइट है. एंड ऑल्सो वहाँ पे टनल बीच है विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल. बेल्ट्रिन स्ट्रीट के बारे में काफ़ी लोगों को पता है जो कि दुनिया की स्टीपेस्ट स्ट्रीट है. मेरे को लगता है ये एक मेजर अट्रैक्शन रहता है. एंड या ऐसी सब चीज़ें हैं डनीडन के बारे में. ओमारू के बारे में विक्टोरियन एरा आर्किटेक्चर है वहाँ पे एंड मेजर स्टीम पंक सीन है वहाँ पे. स्टीम पंक हेडक्वार्टर है बेसिकली जहाँ पे स्टीम पंक सीन वो सब चीज़ें वहाँ पे. सो जो टाउन है इज़ डिस्क्राइब्ड बाय द लोनली प्लैनेट एज स्टीम पंक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. सो इसलिए वो मस्ट विजिट प्लेस है. हैव यू बीन टू डनीडन एंड ओमारू, बताइए यहाँ पे. और आप अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं. अगर आप गए हैं तो येस लिख के भेज सकते हैं 5599 पर. अगर दोनों में से एक जगह पे गए हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पे आप ज़रूर बता सकते हैं. और आई एम श्योर जो अगर आप गए होंगे वहाँ पे तो आप उस स्ट्रीट पे तो डेफिनेटली गए होंगे, बेल्विन स्ट्रीट पे जो कि स्टीपेस्ट स्ट्रीट है. और वहाँ पे हर कोई जाके अपनी फ़ोटो खिंचाता है. एंड आप में से हो सकता है कोई पढ़ा भी हो डनीडन में एक्चुअली में, बिकॉज़ वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ने के लिए. तो अगर आपने वहाँ पे स्टडी की है तो वो भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं.
1: नॉनस्टॉप बॉलीवुड जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं. हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी.
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

3:36 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं और आते हैं आज के सवाल पे, व्हाट एम आई क्वेश्चन के ऊपर. सो आज का सवाल ये है, आपको बताना ये क्या है. इट सेज कि ये एक इंसेक्ट है और ये जो इंसेक्ट है ना, इसका फर्स्ट पार्ट जो है इज नेम ऑफ अनदर इंसेक्ट. सो बेसिकली ये जो इंसेक्ट का नाम है, इस इंसेक्ट के नाम को अगर मैं काट दूँ तो इसमें एक नाम जो है वो एक डिफरेंट नाम है, वो एक जानवर का नाम है, और एक नाम जो है वो एक और इंसेक्ट का नाम है. सो आपको बताना है इस इंसेक्ट का नाम क्या है जिसके अंदर दो और नाम छुपे हुए हैं. सो या ये इंसेक्ट का नाम आपको बताना है. 5599 इज़ अ नंबर, ड्राइव कीवर्ड के साथ, एंड इंग्लिश वर्ड है, ये इंग्लिश का वर्ड है. एंड अगर मैं लेटर्स काउंट करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नाइन लेटर का ये वर्ड है. ओके, सो ये जो नाइन लेटर का वर्ड है, ये जो इंसेक्ट का नाम है, इस इंसेक्ट के नाम में दो नाम छिपे हुए हैं. अगर उसमें काटूँ, एक नाम जो है वो एक एनिमल का नाम है और एक नाम जो है वो एक इंसेक्ट का नाम है. वो जो एक है वो एनिमल है या फिर वो मतलब नॉट एग्जैक्टली एनिमल, लेकिन उसके नाम से मूवीज़ भी है एंड उसको ऐसे हवा बना के रखा हुआ है कि यू नो ये होता है. सो वो है ये. सो वो एक नाम है एंड सेकेंड तो डेफिनेटली एक इंसेक्ट है सेकेंड नाम, जो कि आपके घर पे ही बहुत ज़्यादा है. और इस इंसेक्ट के बारे में, जो कि पूरा का पूरा नाम है, इस इंसेक्ट के बारे में अगर आपको कोई चाहिए, हिंट चाहिए, तो इसके लिए आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं 5599 पर. थोड़ी देर पहले ध्रुवी आपने एकदम सही आंसर भेजा यार, बड़ी जल्दी आपने पकड़ लिया. एंड सुनील आपने जो आंसर भेजा है वो पार्टली सही है, आई विल से बिकॉज बटर इज़ नॉट एनीथिंग. सो या सुनील पार्टली सही है वो. एनीवे रिधि का आंसर भी आ चुका है एंड चेतन ने भी सही आंसर भेजा है. यार मुझे लगा था कि थोड़ा ट्रिकी रहने वाला ये, लेकिन आप तो बहुत ही स्मार्ट हैं. मैंने डनीडन के बारे में बात की थी कि अगर कोई वहाँ पे रहा है उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, बिकॉज यहाँ पे न्यूजीलैंड में डनीडन का नाम एक्चुअली में आया है मस्ट विजिट प्लेस में. सो एक का मैसेज आया, इन्होंने बोला है कि आई लिव्ड इन डनीडन टू ईयर्स, इट्स वेरी नाइस, म्यूजियम इज़ वेरी गुड, सम बीचेज़ आर वेरी गुड, बट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वेरी ओल्ड पीपल लिव देयर एस्पेशली इन साउथ. No one like under 50 there in south. Okay, cool. So, आप भी खैर अपने जवाब लिख के भेजिए जो मैंने अभी आपसे सवाल पूछा है 5599 पर, कि ये इंसेक्ट का नाम क्या है. इस इंसेक्ट के नाम में दो और नाम छुपे हुए हैं. जो पहला नाम है वो जानवर है या नहीं है या हवा बना के रखा है मूवीज़ ने, वो नाम है. और जो सेकेंड नाम है वो तो डेफिनेटली इंसेक्ट का नाम है. तो लिख के भेजिए 5599 इज अ नंबर. इस इंसेक्ट को वैसे एक और नाम से जाना जाता है, और ये जो दूसरे नाम से जो जाना जाता है वो नाम एक बहुत ही फेमस बैंड का नाम भी है.

0: 3:45 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं फिलहाल कॉफी ब्रेक आप यहाँ पे सुन रहे हैं एंड जो सवाल मैंने आपसे पूछा था सही जवाब देने का वक्त आ चुका है. ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जिसको अगर जिसके नाम में दो और नाम छुपे हुए हैं. कुछ हिंट्स मैंने आपको दिए थे एंड काफ़ी लोगों ने सही आंसर एक्चुअली में भेजा है. रथौर किरण आपके मैसेजेस भी यहाँ पे आए हैं. ड्रैगन फ्लाई इज द राइट आंसर. ड्रैगन एंड फ्लाई ये दो नाम. वैसे ड्रैगन फ्लाई के बारे में बातें करते हैं तो इनका लीथल हंटिंग जो है ये बड़ा सही है. ड्रैगन फ्लाइज जो है ये सक्सीड इन 95% ऑफ देयर हंट्स. सो बाय फार मोस्ट सक्सेसफुल प्रिडेटर्स है ये लाइन से भी ज़्यादा एंड इवन शार्क्स से भी ऊपर इनकी रेटिंग आती है. सो रेदर देन चेजिंग अ प्रे दे कैलकुलेट बहुत ही अच्छी वैसे ट्रैजेक्ट्री है उसकी कैलकुलेट करते हैं एंड देन मिड ईयर में जाके उसको अटैक करते हैं. ऐसे रहते हैं ये ड्रैगन फ्लाई. 360 डिग्री विजन इनका होता है. दिस इज़ द रीज़न बिकॉज इनकी जो कंपाउंड आइज होती है इसमें 30,000 लेंसेज होते हैं ईच आई में. सो कवरिंग नियरली द इंटायर हेड एंड प्रोवाइडिंग ऑलमोस्ट कम्प्लीट ऑल अराउंड विजन. सो 360 डिग्री विजन में ये देखते हैं एंड इनका लाइफ स्पैन अगर देखा जाए तो अडल्ट फ्लाइंग फेस जो है बहुत ही ब्रीफ है. दे लास्ट ओनली 1 to 2 months एंड या ये इनका एक्चुअली में रहता है. सो या ड्रैगन फ्लाई इज द राइट आंसर. Throwback.
1: Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 13.2 डिग्रीज, बट आज को वह नाइट काफी चिली वेदर रहेगा, 4 डिग्रीज इज द टेम्परेचर। सनसेट आज का 6:19 पर।
2: Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura Jaiku.
0: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: 4:03 हो चुके हैं और वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। सुपर से ऊपर आपके लिए शुरू हो चुका है ड्राइव शो में। कैसे हैं आप, आपका डे कैसा जा रहा है? इट इज़ 23rd September। अगर आज आपका बर्थडे है, और वेरी वेरी हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। अगर आज आपकी एनिवर्सरी है, वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। वैसे रुजबे थोड़ी देर में यहाँ पर शामिल हो जाएगा, और मेरे पास लिस्ट है ऑफ द प्लेसेस न्यूजीलैंडर्स वॉन्ट टू वर्क द मोस्ट। ऐसी जगहों के नाम, ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे काफ़ी लोग न्यूजीलैंड में जो है ये वहाँ पे काम करना चाहते हैं, उनकी फेवरेट प्लेसेस है कि उनको वहाँ पे जॉब मिल जाए। वेल, ये डाटा मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करने वाली हूँ। व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको ये लिस्ट में, ये टॉप 10 की लिस्ट में कौन सा नाम हो सकता है, कौन सी कंपनीज का नाम हो सकता है न्यूजीलैंड की, जहाँ पे लोग काम करना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे जॉब मिल जाए, यहाँ पे वो काम करेंगे। और इसके वेरियस रीजंस भी इस आर्टिकल में बताए गए हैं, जो कि आपके साथ मैं थोड़ी देर में यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। लेकिन तब तक आप मैसेज करके यहाँ पे ज़रूर शेयर कर सकते हैं 5599 पर।

0: 4:12 हो चुके हैं। ड्राइव शो फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं। नौ मैं आपको बताने वाली हूँ कि न्यूजीलैंडर्स कौन सी कंपनीज में काम करना चाहते हैं। कुछ कंपनीज की लिस्ट आई है जहाँ पे हर कोई चाहता है कि यहाँ पे जॉब मिले फॉर द वेरियस रीजंस। काफ़ी लोगों ने मैसेज भी किए हैं एंड आई मस्ट से कि जो मैसेज आए हैं उसमें से काफ़ी मैचिंग है जो मेरे पास लिस्ट है। सो व्हाट आर वर्कर्स एक्चुअली लुकिंग फॉर एंड सी कि आप इसके साथ रिलेट करते हैं कि नहीं करते हैं। जो रिसर्च है इज नॉट जस्ट अबाउट द सैलरी, एक्चुअली में इसमें है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, करियर डेवलपमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इनोवेशन, कॉम्पिटिटिव पे एंड बेनिफिट्स, जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। मेरे को लगता है ये सबसे टॉप पे ये फैक्टर होना चाहिए। देन वर्क प्लेस एक्सपीरियंस एंड वेदर द ऑर्गेनाइजेशन कैन अडेप्ट टू टेक्नोलॉजी चेंज इंक्लूडिंग AI। तो इसमें जो नाम आए हैं 10 मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर्स इन न्यूजीलैंड, ग्रीन क्रॉस हेल्थ का नाम आया है इसमें, देन एयर न्यूजीलैंड जो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे मैसेज करके बताया है, एश्योर क्वालिटी का नाम आया है, फिशर एंड पेकल हेल्थ केयर इसका नाम आया है जो कि मेरे पास मैसेज भी आया है, देन न्यूजीलैंड कस्टम्स सर्विस का नाम आया है, डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन का नाम आया है, रॉयल न्यूजीलैंड एयरफोर्स का नाम भी आया है, एक्सेस कम्युनिटी हेल्थ ड्यूलेट का नाम आया है, मिनिस्ट्री फॉर प्राइमरी इंडस्ट्रीज या पब्लिक सेक्टर की जॉब्स है इसमें अगर देखा जाए तो। सो लास्ट ईयर एयर न्यूजीलैंड नंबर 1 पे था, फॉलोड बाय MBIE एंड ANZ। सो इस बार लिस्ट में MBIE एंड ANZ नहीं है। दिस ईयर ग्रीन क्रॉस हेल्थ मूव्ड इनटू द टॉप स्पॉट। सो नंबर 1 पे इस समय ग्रीन क्रॉस हेल्थ है। एंड या ऑफकोर्स एयर न्यूजीलैंड के लिए जैसे कि एक मैसेज भी आया है कि काफ़ी डिस्काउंट भी रहता है फ्लाइट टिकट्स के ऊपर, तो काफ़ी लोगों के लिए ये फैक्टर भी रहता है। एंड जॉब सिक्योरिटी इज़ अनदर वन, बट रिसेंटली एयर न्यूजीलैंड की काफ़ी जॉब्स गई भी है अगर देखा जाए। सो आपको क्या लगता है, आप ये जो मैंने लिस्ट अभी देखी है एम्प्लॉयर्स की लिस्ट जो मैंने अभी बोली है, इसमें से किसी कंपनी के लिए आपका ऐसा ड्रीम जॉब है कि भाई इस कंपनी में आप भी एक दिन काम करना चाहते हैं? सो ग्रीन क्रॉस हेल्थ में एयर न्यूजीलैंड, एश्योर क्वालिटी, फ्यूचर एंड पेकल हेल्थ केयर, न्यूजीलैंड कस्टम सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन, रॉयल न्यूजीलैंड एयरफोर्स, एक्सेस कम्युनिटी हेल्थ, डेलॉयट, मिनिस्ट्री फॉर प्राइमरी इंडस्ट्रीज, इनमें से कोई है जिसमें आप एक दिन काम करना चाहेंगे या फिर यू ट्राइड एज वेल या फिर आप काम कर रहे हैं इनमें से किसी इंडस्ट्री में, तो वो भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। बिकॉज देन यू आर द लकी वन जिसके लिए हर कोई ट्राई कर रहा है उसमें आप काम कर रहे हैं। एयर न्यूजीलैंड के बारे में आई नो वी हैव फ्यू लिसनर्स जो कि एयर न्यूजीलैंड में काम करते हैं। सो यू कैन कॉल यहाँ पे 0800 हम पर 0800 004 866 पर या मैसेज करके बताइएगा। बिकॉज इसमें ये जो सारी बोली है चीज़ें कि जो रिसर्च है ये हाईलाइट करती है कि एक जनरेशनल डिफरेंस है। यंगर वर्कर्स जो है ये इंटरेस्टेड है इन डेवलपिंग स्किल्स जो कि रेलेवेंट है इन एंड AI ड्रिवन वर्क प्लेस में। वाइल्ड जो एल्डर वर्कर्स है उनके लिए जो एम्फोसिस है वो स्टेबिलिटी के ऊपर है ऑफकोर्स, एंड प्रडिक्टेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस है उनका। एंड या लेकिन ये जो लिस्ट है इज़ अकॉर्डिंग टू द पीपल, अकॉर्डिंग टू द वर्कर्स जो इस समय पर रेलेवेंट रहना चाहते हैं, वो ऐसी जॉब में जाना चाहते हैं जहाँ पे वो रेलेवेंट है टू करंट सिनेरियो। वो करंट सिनेरियो कोई भी हो सकता है टेक्नोलॉजी वाइज, वो AI का टाइम, जो भी सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग वो रेलेवेंट है वहाँ पे। सो दे ऑल्सो लुक फॉर द लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, करियर डेवलपमेंट एंड इनके, इनफैक्ट मैंने रिसेंट एक स्टडी ये भी पढ़ी थी जहाँ पे नॉट मैनी पीपल स्पेशली द जेन ज़ी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन लीडरशिप रोल्स। उनको अपने करियर ग्रोथ में और वैसे वो कैसे ग्रो कर रहे हैं रेदर देन जस्ट बिकमिंग अ लीडर, उनको वो ज़्यादा मैटर करता है। तो आपका क्या टेक है आप भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। मेरे पास मैसेज आया है प्रिया का, आई हैव बीन वर्किंग फॉर एयर न्यूजीलैंड फॉर पास्ट 12 years। वाओ, सो सी प्रिया आप वहाँ पे 12 साल से डेडिकेटेड हैं एंड यू आप कुछ और इसके बारे में शेयर करना चाहते हो तो यहाँ पे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो लेट मी नो इनमें से किसी जो मैंने लिस्ट बोली है किसी में अगर आप काम करते हैं। मिनिस्ट्री फॉर प्राइमरी इंडस्ट्रीज इसमें भी आई थिंक हमारी कम्युनिटी के लोग इसमें हो सकते हैं, ए न्यूजीलैंड में तो है ही, न्यूजीलैंड कस्टम सर्विस में भी कोई ना कोई होगा, रॉयल न्यूजीलैंड एयर फोर्स में मुझे लगता है कि कम चांसेस है कि हमारी कम्युनिटी का कोई वहाँ भी होगा। तो बस मैसेज करके बताइए, 5599 इज द नंबर। पुलिस का नाम इसमें नहीं आया, न्यूजीलैंड पुलिस का।
1: Daily dose of wisdom, wit and wild conversations.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: आपका प्रोफाइल देखा, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए।
4: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन, दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
5: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक,
2: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यहीं, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
5: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी, कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T&Cs, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
6: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.nz।
7: चूज कीजिए कैसे आप सेव करते हैं विंगर मोटर्स में, 3.9% फाइनेंस या $2,000 कैश बैक सेलेक्टेड न्यू ओमुडा या जेको मॉडल्स पर, सुपर

0: kilometer vehicle warranty. More ways to save at Winger Motors East Auckland, North Shore and Pukekui or winger.co.nz. On now till 30th September. Credit criteria, fees, T's and C's apply.
1: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery anywhere in Auckland. Huge side-by-side stainless steel fridge freezer, $699. 10kg 9-star energy heat pump dryer, $799. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
2: Today's after-school pickup came with one, two, three bonus kids, and they're all hungry. Luckily, I have a delicious Woolworths beef lasagna that's ready in just 35 minutes. Yum. That's my kind of Woolies.
3: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
4: Are you ready to go home?
5: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
7: 421 एट द मोमेंट हो चुके हैं एंड एयर न्यूजीलैंड के बारे में जो बात कर रहे थे हम एक्चुअली में बहुत सारी कंपनीज़ के बारे में बात कर रहे थे एंड जो एयर न्यूजीलैंड में काम करती है उन्होंने बोला है कि इट इज़ अ गुड कंपनी बट इट हैज़ अप्स एंड डाउन ग्रोथ एंड प्रमोशन इज़ गुड मैनेजमेंट डिपेंड करता है फेवरेटिज्म है बट पीपल गेट ओवर इट बट इट इज़ वन ऑफ द नोन कंपनी फॉर एवर सो प्राउड ऑफ दिस ब्रांड एयर न्यूजीलैंड किया कहा एंड मेरे साथ यहाँ पे फोन लाइन पर भी शामिल है हाय ओके चले गए ये शायद उनको ऑन ईयर अपनी कंपनी के बारे नहीं बताना था या फिर इस कंपनी की इतनी तारीफ सुन ली बोले चलो कोई बात ही रहने देता हूँ आपसे सवाल ये है मेरा व्हाट्स वन थिंग दैट वुड मेक यू लीव योर करंट जॉब राइट नाउ जो आप जॉब कर रहे हैं इसमें से ऐसा क्या है जिसके कारण अपनी आप करंट जॉब छोड़ सकते हैं ऑप्शन इज मोर मनी वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी कि आपको आने की ज़रूरत ही नहीं है वर्क फ्रॉम होम है इज़ इट करियर ग्रोथ इज़ इट बेटर बॉस जो कि आपको ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं बेटर आवर्स या ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ इसमें से क्या है इस लिस्ट में जो आपके लिए मायने करता है मायने रखता है कि करंटली जो भी आप जॉब कर रहे हैं ना ये जॉब आप छोड़ सकते हैं अगर इसमें से कुछ आपको बेटर मिलता है सो बेटर मनी आपको मिल रही है इज़ इट मोर मनी आपके लिए मैटर कर रही है राइट नाउ इन योर सिनेरियो आपकी करंट लाइफ में अभी क्या मैटर कर रहा है ज़्यादा पैसा मैटर कर रहा है वर्क फ्रॉम होम अगर आपको मिल जाए तो मतलब आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ये आपका सिनेरियो हो सकता है करियर ग्रोथ आपको फोकस है कि भाई जहाँ पे आपके करियर को ऐसा पुश मिले बिकॉज आई नो क्वाइट अ पीपल जो बोलते हैं कि भाई न्यूजीलैंड में ना करियर ग्रोथ बहुत स्लो है बहुत स्लो ग्रोथ होती है यहाँ पे तो दिस माइट बी योर फैक्टर कि करियर ग्रोथ आपके लिए ज़्यादा मैटर करता है या बेटर बॉस बेटर आवर्स ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ कैफियों के लिए ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए होती है सो बताओ 5599 पर मैसेज करके भी बता सकते हैं ड्राइव कीवर्ड के साथ कि इसमें से क्या है जो आपके लिए मैटर करता है जिसके कारण आप अपने करंट जॉब जो है ये आप छोड़ भी सकते हैं हेलो
8: सैंडी हाउ आर यू
7: आई एम गुड हाउ आर यू सॉरी क्या नाम आपका
8: अर्शदीप
7: अर्शदीप हाँ अर्शदीप तो बताओ इसमें से ऐसा क्या फैक्टर है जो बहुत मायने रखता है
8: ओके सो अगर मैं 20s में होती तो मैं पैसा चूज करती अगर मैं से लेट 20s में कोविड के बाद तो मैं वर्क फ्रॉम होम चूज करती और फ्लेक्सिबिलिटी पर अभी तो मैं इस स्टेज पे हूँ कि लोटो मिल जाए मैं काम ही छोड़ दूँ
7: यू आर लाइक कि कुछ मैटर नहीं करता लोटो मैटर करती है उसी के सहारे बैठी हो
8: वही मैं हर वेंसडे आज और सैटरडे को यही दुआ करती हूँ.
7: ओह माय गॉड,
8: जीत जाऊँ फिर मैं अपनी मर्जी का काम करूँ, मुझे टेंशन ही ना हो कि काम करना है क्या, पैसा है क्या है, फिर मैं बस घूमू फिरू.
7: सही है,
8: अनुपमा का डायलॉग याद आता ना, मैं घूमू फिरू ऐश करू यहाँ जाऊँ वहां जाऊँ.
7: बस तो मेरे को ये बताओ कि अभी राइट नाउ जॉब में फ्लेक्सिबिलिटी है, वो सब चीजें हैं जो मैंने वैसे फैक्टर्स बोला है?
8: हाँ, आप रीच द लेवल मेरा, मेरे पास सभी सब कुछ ही है.
7: वर्क फ्रॉम होम भी है, करियर ग्रोथ है,
8: ऐसे भी है करियर. हाँ, अभी आई थिंक नेक्स्ट स्टेज होगा तो और करियर ग्रोथ और सब कुछ होगा, बट है सब कुछ है भगवान
7: अभी है. ओके, मतलब खुश हो अभी इस जॉब से, मतलब चेंज नहीं करना चाहोगी ना?
8: नहीं
7: नहीं सही, अभी नाम भी तो बोल दिया ना. तो क्यों नहीं, ही बोलोगी
8: सच में? नहीं नहीं, अभी सच में मेरा वेरी गुड स्टेज है. मैं बचपन से कि आई वांट टू बी देयर, नाउ आई एम देयर, सो आई एम लाइक वाओ, लाइक आई हैव रीच्ड इट, यू नो, सो आई एम एंजॉयिंग दैट फेज एज़ वेल इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग फॉर द नेक्स्ट गोल. सो yeah,
7: and plus you are doing some extra activities as well now for yourself.
8: community. क्योंकि अभी मैं इस स्टेज पे हूँ कि अभी stable है, तो so I can focus on the other things that I'm passionate about. So I think वो भी एक चीज factor है ना कि I'm lucky I get to do everything that I love. So
7: yeah, that's really good actually, Arsh. Good one. Thank you, Arsh, and see you soon. Bye. And Monisha ने यहाँ पे लिखा है travel opportunities and better pay. या इनको ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज एंड बेटर पे चाहिए. एंड पार्थ ने भी यहाँ पे ट्रैवल अपॉर्चुनिटी लिखा है. वाओ, आई डिड एक्सपेक्ट कि ज़्यादा लोग ट्रैवल अपॉर्चुनिटी लिखेंगे यहाँ पे. सो आप भी बताइए कि आपके लिए क्या बेटर करता है, मोर मनी, वर्क फ्रॉम होम, करियर ग्रोथ, बेटर बॉस, बेटर आवर्स, ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज, क्या मैटर करता है? 5599 इज द नंबर.
6: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
4: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
9: Brought
6: to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: थोड़ा तो हॉल बना दे.
3: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manuko, Mount Wellington, and Westgate. Up to 60% off on now.

0: 4:32 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुका है। हम 104.2 FM पे आप ड्राइव शो फिलहाल सुन रहे हैं एंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताती हूँ, स्पेशली हमारे ऊबर ड्राइवर्स के लिए। इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ क्लेम विद नॉट योर फॉल्ट सर्विसेज, सो इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड एंड अ क्लेम्स मैनेजर विल बी इन टच विद यू। सो इफ़ यू हैव नॉट अप्लाइड येट, इनटेक 4 इज़ नाउ ओपन। सो प्लीज़ नोट कि जो नॉट योर फॉल्ट सर्विसेज फ़ोन टीम है इज़ करंटली एट कैपेसिटी, सो प्लीज़ डू नॉट कॉल। इंस्टेड आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वेबसाइट है nyfservices.com। सो नॉट योर फॉल्ट इसी का शॉर्ट है nyfservices.com। सो दिस इज़ फॉर द ऊबर ड्राइवर्स। सो अगर आपने इफ यू ऑलरेडी हैव अ क्लेम विद नॉट योर फॉल्ट सर्विसेज, तो आगे मूव फॉरवर्ड करके क्लेम्स मैनेजर आपको वैसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं इस चीज़ के रिलेटेड। नाउ अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो एक बहुत ही बड़ा दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो यहाँ पे होने वाला है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर हाई रिटर्न प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट विद जीरो टैक्स, बिकॉज दैट्स दुबई, सो डोंट मिस द बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो जो कि यहाँ पे होने वाला है और इसी वीकेंड पे होगा 26 एंड 27 को 10 AM to 8 PM एट JW मेरिट इन ऑकलैंड, यहीं पे होने वाला है जहाँ पे आप डेवलपर्स को मिल सकते हैं इन पर्सन, जहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव डील्स के बारे में पता चलेगा, इंक्लूसिंग 0% अपफ्रंट DLD फीस ऑन क्वालिफाइंग यूनिट्स, डेफर्ड पेमेंट प्लान्स के बारे में आपको पता चलेगा, प्रोजेक्टेड रिटर्न्स आपको पता चलेगी ऑफ अप टू 20% ROI। सो वेदर यू आर स्टार्टिंग आउट या फिर अपना पोर्टफोलियो आप एक्सपेंड कर रहे हैं, बुक योर 1-to-1 कंसल्टेशन। आप इनकी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आप बुकिंग कर सकते हैं, buildcaps.com buildcaps.com, वहाँ पे जाइए, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। इनफैक्ट वहाँ पे हम FM की टीम भी रहने वाली है दिस सैटरडे 10 AM ऑनवर्ड्स। सो हमारी टीम से कशिका विल बी देयर टू गिव द मोर इन्फॉर्मेशन एंड वहाँ पे उनको जाके आप ज़रूर मिलेगा। बट रिमेंबर, अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो दिस इज़ अ प्लेस यू कैन डेफिनेटली गो। इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा टाइम इन्वेस्ट करने यहाँ पे पहुँच चुके हैं रुजबे। हाय रुजबे।
1: नहीं, आपने ऐसा बोलना चाहिए था, इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो हमारे हम का एक बहुत ही प्रॉपर इन्वेस्टमेंट,
0: गुड
1: इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ गए हैं अभी।
0: कैसे हो रुजबे?
1: मैं बढ़िया हूँ सैंडी, आप कैसे हो यार?
0: आई एम गुड एज वेल यार, हाउ इज लाइफ?
1: लाइफ इज ग्रेट, कैन बी बेटर और मे बी कैन, बट इट्स ओके।
0: या यू नो बाय द वे, मैं टेम्परेचर देख रही थी, मैंने तुम्हें अभी शर्ट में देखा, तो आई मस्ट टेल यू,
1: या प्लीज लेट मी नो,
0: 4 degrees इट विल बी टुनाइट।
1: ओह माय गॉड, इट इज गोना बी 4 degrees, राइट?
0: 4 degrees, यस, हम सर्दियों में वापस चले गए हैं,
1: सो यू नो
0: गोइंग बैकवर्ड एज अ वेदर वाइज।
1: यू नो व्हाट आई रियलाइज्ड, तो मैं आज थोड़ा फ्री, मैं घर से काम कर रहा था, तो मैं थोड़ा सा ठंड लग रही थी मुझे यार,
0: आज ठंड है
1: और बाहर हवा बहुत है, लेकिन धूप भी खिल रही थी, तो मैं धूप में जाके बैठ गया।
0: ठंडी हवा है
1: आज, काफी ठंडी है,
0: ऐसा सर्दियों वाली फीलिंग है टोटल।
1: एंड आई विल टेल यू समथिंग, मैंने स्टार्ट ऑफ किया था तो मैं हाफ स्लीव शर्ट में था, बट देन आई वाज लाइक कि नहीं यार, आज ऐसा लग रहा है कि ठंड ज्यादा होने वाली है, एंड आई नॉट चेक्ड वेदर अंटिल दैट टाइम।
0: हम अभी वेदर को रिजेक्ट कर रहे थे, नहीं नहीं यार तुम ठंडे नहीं हो सकते हो आज का दिन, स्प्रिंग चल, आई मीन ठंडा वेदर नहीं हो सकता।
1: ओके, सो एनीवे आई हैव ब्रॉट अ वेरी नाइस एंड हैवी जैकेट, सो इट जस्टिफाइज नाउ कि मैं हैवी जैकेट क्यों लेकर आया हूं। 4 degrees हो रहा है आज रात को।
0: आई नो मैन, 4 degrees, इट्स गोना बी 4 degrees। So guys, take
1: care good,
0: of yourself.
1: Yeah, I think,
0: नहीं, because ध्यान रखना पड़ेगा ना, ये जो अभी वेदर है, काफी लोग पता है ये जाते हुए वेदर में बीमार हो रहे हैं।
1: Yeah, जाते हुए वेदर में। जाते हुए वेदर में, जाते हुए विंटर में।
0: वही मतलब ये जो जा रहा है वेदर ना, इसमें जो मर्जी लगा लो, विंटर है, समर, स्प्रिंग है, क्या है ये? अभी स्प्रिंग है,
1: लेकिन ठीक है यार, मेरे को लग रहा है इस बार विंटर काफी कम रहा, ज्यादा नहीं रहा ये बार विंटर, बीमारियां ज्यादा रही, लेकिन
0: बीमारियां ज्यादा रही है,
1: विंटर बहुत कम रहा।
0: एनीवे या गाइस, रुजबे आ चुका है यहाँ पे, तो और भी बातें हम आपके साथ यहाँ पे करेंगे। सो
1: क्या किया क्या आपने अब तक यार?
0: तो मैं बातें बताती हूँ। ओके,
2: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GW and Havel and Omura Jaiku.
3: Keep calm because Punjabi swag is on. On.
4: ਮੰਗੀ

0: ड्राइव शो फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं एंड थर्सडे को यानी कि कल यहाँ पे इलेक्शन स्पेशल में हम बात करने वाले हैं नेशनल पार्टी के कैंपेन मैनेजर नवतेज रंधावा से।
1: जी नवतेज रंधावा के साथ हम बात करने वाले हैं अबाउट द पॉलिसीज जो नेशनल ये बार के बारे में प्रमोट कर रही है जो या जिसके बारे में वो बात कर रही है एंड उसके अराउंड कुछ सवाल उनको पूछेंगे, कुछ चीज़ें बोलेंगे कि क्या उनके हिसाब से फ़ायदेमंद होने वाला है हमारे लिए हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए एंड
0: अगर आपका कोई सवाल है नेशनल पार्टी को लेके रिगार्डिंग द इलेक्शंस आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं ड्राइव कीवर्ड के साथ 5599 इज अ नंबर एंड आने वाले दिनों में वी गोना टॉक विद समवन बहुत ही जल्दी किसी के साथ हम ऐसे बात करने वाले हैं जो न्यूजीलैंड से निकल के बहुत ही बड़े स्टार बने हैं या बनी है
1: हाँ, राइट
0: तो इतना हिंट अभी हम देना चाहेंगे आपको
1: जी थोड़ी देर में हम कभी थोड़ी देर में बात करने वाले हैं
0: थोड़ी देर में इसके बारे में और भी हम बताएंगे
1: चलो ठीक है The Drive Show with Sandy and Rusby brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe massive home show deals available in store now only at Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group the home of GWM Havel and Omura Jaiku Throwback brought to you by 0800 Rachna idhar udhar jaane se bachna call karo 0800 Rachna that's 0800-722-462 for first home buyers investors business loan commercial loan or construction

0: से ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: हर दिन की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते. आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने. हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं. हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने.
2: Accurate traffic.
3: Kogan washes at a price that won't send you into a spin.
4: Clear overnight for Auckland, a low of 8 on the northern, heavy from the Harbour Bridge to Northcote Road. Town to Silverdale, 50 minutes on the northwestern, slow from Waterview to Rosebank. The southern town to Manukau, 45 minutes to Drury and hour 12. Heavy northbound Mount Wellington to Green Lane, south from Spaghetti Junction to Highbrook Drive. Heavy on the southwestern through Mangere Bridge in both directions. Trains are all running on time.
3: Shop Kogan washes and dryers now at Mighty Ape.
5: We're recruiting for New Zealand's most important jobs, and chances are, you're probably qualified. Whether you make coffee for others or just yourself, if you're a shop worker, tall building worker, gym guy, gym gal, teacher, preacher, scuba diver or Uber driver, bring yourself to the 2026 general election. No experience? No worries. You'll be trained and get paid. With thousands of jobs available, it pays to be you. Apply at work.elections.nz.
6: When India comes to town, Aotearoa feels different. Tickets are on sale now at nzc.nz. Be there, because this isn't cricket. This is Black Caps versus India.
7: Commonwealth Vault aapke precious belongings ko rakhta hai safe aur secure. Gold, bullion aur precious metals ki value jab all time high pe hai, tab ye pehle se kahin zyada zaruri hai ki aapke assets theft aur natural disaster se protected rahe. Jab aap apne valuables Commonwealth Vault ko entrust karte hain to aapko milta hai peace of mind, ye jante hue ki wo safe, secure aur protected rahenge. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond. Details at commonwealthvault.co.nz. That's commonwealthvault.co.nz.
8: Hey, City Rail Link's now open, and our first trip's going to the game.
9: Now I can go east-west on just one train. So my first trip seeing an old friend in Swanson.
10: Our first train ride. We're surprising the kids with Te Wai Horatiu Station and a movie.
11: CRL first trip, coffee with friends, maybe K Road, maybe Pukekohe.
12: Oh, it'll be our millionth time going to the art gallery, but our first time taking the train.
13: Those all sound great. The City Rail Link's now open, so all aboard with Auckland Transport.
14: In business, relationships matter, respect matters, and so does keeping your word. So what do you do when customers don't pay your invoices? At Kedar Limited, they understand that in our Indian community, business is built on trust, respect, and keeping your word. With 20 years of debt recovery experience, they can help recover your B2B debts. Want your old invoices paid? Call Kedar Limited on 022-090-9845. Pehle baat, phir solution aur payment bhi. Visit kaydaar.co.nz.
15: Their mum can't work out why they always eat so well at mine. Well, it's the Woolworths chicken schnitzel. Maybe one day I'll tell her. But for now, my kind of Woolies keeps that secret between us.
0: Time check.
16: Brought to you by Man Tires. For all kinds of tires and mechanical services. Open 7 days. Call Man Tires on 0800 00 00 10.
0: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
17: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 5. A young child injured in Ōtautau, Southland on Sunday has today died. Police are now treating the case as a homicide. A man and a woman, both aged 19, who had previously been charged over the incident, are expected to face further charges. Police have begun a fresh search of the Christchurch Red Zone in relation to missing woman Rowena Walker. She disappeared from Burwood more than a year ago, and officers believe she was the victim of foul play. Ahead of the election, the major political parties agree something has to be done about fire and emergency. Labor promises to ensure it has greater resourcing. And National has put forward a plan, with MP Tim Costley saying heads must roll at the troubled entity.
18: We've seen deeper problems with leadership, a board that just hasn't done its job.
17: And the quips are flying in Parliament for the final debate of the term. Prime Minister Christopher Luxon was firing shots at his opposition.
2: Can I wish Chris Hipkins all the very best with his now four-year attempt at just getting warmed up? But I have to say, if that's him getting warmed up, I'd hate to see him having a lie down.
17: And Chris Hipkins hit back.
18: Traditionally, a Prime Minister's speech in the adjournment debate is light-hearted and contains some humour. I was worried when Christopher Luxon got started, but then he decided to talk about the government's track record and the humour arrived unexpectedly.
17: To sport, the Black Caps have named seven fast bowlers, including a recall for Adam Milne in the 16-strong T20 squad to face India in the five-match series. Critical discussions for New Zealand rugby tomorrow in Wellington with the aim of cutting millions of dollars worth of costs. Rugby news with All Blacks Travel and Hospitality.com. Eden Park Bledisloe Cup hospitality packages selling now. And Warriors centre Adam Pompey has been granted an early release.
0: Sports news. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Ross Skill. The beat of Bollywood.
19: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
20: Feels like 11 degrees right now. Overnight temperature 4 degree tak hone wala yaar. Aaj to bahut kadake ki thand. Aaj bahar mat nikalna, bimar honge aap. Baad mein aap sabko bimar karoge. To aaj mere ko lag raha hai har kisi ne janhit mein jari ghar pe rehna chahiye. Mast thandi mein enjoy kijiye ghar ke andar chadar rajai mein.
6: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. Power Drive at 5.
0: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Drive Show with Sandy and Rusby.
21: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
20: 5:03, you're listening to The Drive Show with Sandy and Rusby. Hi Sandy, good evening.
22: Good evening Rusby, how are you?
20: I am great yaar, how are you doing?
22: I'm good. वैसे हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत ही जल्दी एक्चुअली में we're gonna have a conversation with someone जिसके बारे में हमने हिंट लास्ट आवर में भी दिया है. We're gonna have a conversation with someone जिन्होंने अपनी शुरुआत बहुत ही ऐसे टाइम से की वेन सबको लगा कि ये जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है शायद इससे कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा. एक ऐसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से उन्होंने शुरुआत की एंड नाउ द पर्सन इज बिग इन बॉलीवुड.
20: उस जमाने में ना उस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को मालूम भी नहीं था कि उसको स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बोलेंगे
22: एक्चुअली में. या
20: वो बस एक टाइम पास वीडियो अपलोड करने का वेबसाइट था शायद से.
22: यस यस या
20: एंड देन आगे चल के फिर इट इवेंचुअली बिकेम एन ऐप एंड थिंग्स एंड एवरीथिंग यू नो इट जस्ट ग्रो
22: अप फ्रॉम न्यूजीलैंड फ्रॉम सुपर सिटी टू बॉलीवुड. एक जर्नी के बारे में हम बात करेंगे. अगर आपको कोई आइडिया है किसके बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज राइट नाउ तो हम नाम रिवील नहीं करेंगे तो मैसेज करके बताइए.
20: हम श्योर नहीं है ना कि अब तक जब तक हम देखेंगे नहीं उनको स्टूडियो में तब तक हमको भरोसा नहीं है.
22: भरोसा नहीं है भाई सीधी सी बात है. तब तक आप ही गेस कर लो. 5599 इज द नंबर.
20: क्योंकि फिर हम बोलेंगे आपने गेस किया है. हमने तो नहीं बोला ना, हमने कमेंट नहीं किया. बट आप गेस करो क्या लगता है आपको न्यूजीलैंड से है ये हस्ती.
22: या और वी आर प्लेइंग दिस कैरेक्टर गेस.
20: हां कैरेक्टर गेस न्यूजीलैंड से है ये हस्ती. और ये अभी उन्होंने मचाया है.
22: शी हैज डन द मूवीज एज वेल. मूवीज भी की है इन्होंने एंड
20: न्यूजीलैंड का नाम बहुत रोशन किया है.
22: ये बिग बॉस में एज अ कंटेस्टेंट नहीं गई है लेकिन बिग बॉस में एज अ गेस्ट जरूर गई है.
20: अच्छा
22: या
20: ठीक है तो बताइए 5599 पर ड्राइव कीवर्ड के साथ यहाँ पे मैसेज करके बताइए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं.
22: और इसी के साथ आपको बता दें कि दिस फ्राइडे 25 सितंबर वैदिक सेंटर में हम फीजी कीर्तन संग्रह की रिकॉर्डिंग भी होने वाली है. सो आपको भी इनविटेशन है वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि कैसे रिकॉर्डिंग हो रही है. रिकॉर्डिंग करने ना जाइएगा वहाँ पे बिकॉज वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं.
20: अच्छा ऐसा है.
22: या वो सिलेक्टेड है ऑलरेडी. सो वो शॉर्टलिस्टेड है रिहर्सल कर रहे हैं.
20: मुझे आया नहीं कंफर्मेशन ईमेल लेकिन अब तक.
22: किस चीज का
20: कि you are selected.
22: मतलब तुम सिलेक्टेड नहीं हो ना.
20: मैं क्यों नहीं. मैं सिलेक्टेड.
22: तुम्हें कीर्तन करना था वहाँ पे क्या.
20: मैं
22: तुम्हें आता है.
20: मैं कर सकता हूँ उसमें क्या.
22: एक बताओ कीर्तन मुझे राइट नाउ.
20: मैं यहाँ पे रेडियो पे नहीं गा पाऊंगा वो. मैं सीधा लाइव रिकॉर्डिंग पे गाऊंगा.
22: Anyone out there जो रुस्बे से सही सवाल पूछ सकता है रिगार्डिंग फीजी कीर्तन बिकॉज मुझे नहीं पता है सो मैं तो आउट रहूंगी कोई सवाल के लिए।
20: अरे मैंने वो कि मैंने सुना है यहाँ पे कितना हमारा कीर्तन का प्रोमो चलता था तो उसमें
22: तो बताओ
20: वो,
22: एक
20: ला ला ला ला
22: वो तो हाँ वो तो बहुत पुराना है लेकिन वो तो एक वो है ना सिग्नेचर ऐसा बोलने के लिए कोरस है वो तो
20: कोरस है ना
22: या
20: मैं कोरस में गाना चाह रहा हूँ मैं लीड थोड़ी हूँ आपको लगता है मैं लीड नहीं

0: लोगों के लिए, क्योंकि डिफिकल्ट है ना हर जगह घर लेना, मार्केट ही बहुत टफ है हर जगह, रिसेशन है, ये है वो है, बहुत सारी बातें हो रही है ना.
1: एंड इट्स अ इलेक्शन ईयर बाय द वे. सो इलेक्शन ईयर में आपको बता दूं कि हमने लास्ट थर्सडे डेविड सिमर से बात की थी, एक्ट पार्टी के
0: लीडर
1: और कल हम बात करने वाले हैं नेशनल पार्टी के कैंपेन मैनेजर नवतेज रंधावा के साथ, जहाँ पे हम नेशनल पार्टीज की कुछ कैंपेन जो इस समय बाहर आ रही है
0: इसके बारे में थोड़ी पूछताछ करने वाले हम. और आपसे भी जानना चाह रहे कि आप कौन से सवाल ऐसा पूछना चाहेंगे कि नेशनल कैंडिडेट, नेशनल पार्टी के अगर रिप्रेजेंटेटिव है तो उनसे आप कौन से सवाल पूछने चाहेंगे. एंड वी वांट सम टफ क्वेश्चंस आउट हियर यार. ड्राइव लिखकर भेजिए 5599 पे.
1: बिकॉज हक बनता है ना इलेक्शन ईयर में. मुझे लगता है कि हमारी कम्युनिटी की वोट बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एंड राइट नाउ इस साल में जो कुछ हुआ है, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं रुजबे हमारी कम्युनिटी को लेके, बहुत सारे सवाल भी काफ़ी लीडर्स ने उठाया है यहाँ पे. तो हमारे क्वेश्चन करना बनता है बिफोर वी डिसाइड कि हमें किसको वोट करना है.
0: एंड मुझे लगता है वोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप वोट करने काबिल है या लायक है, मतलब वो लायक मतलब रेजिडेंट रेजिडेंट अगर आप है, वैलिड है, You know what I mean? अगर आप रेजिडेंट है, अगर आप वोट कर सकते हैं, तो आपने आपका ये जो राइट है इसको ज़रूर एक्सरसाइज करना चाहिए. और वो राइट एक्सरसाइज करने के लिए आपके पास इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, और वही हम इस माध्यम के थ्रू लेकर आ रहे हैं आपके लिए
1: 100%. सो यस, आप भी यहाँ पे मैसेज करके ड्राइव कीवर्ड के साथ बताइएगा कि ऐसा कौन सा सवाल है जो नेशनल पार्टी के लिए आपके जहन में है.
0: और कल 5 बजे से आपने यहाँ पे ट्यून इन करना है और सुनना जरूर है. वैसे तो आपने 3 बजे से ही शुरू कर देना चाहिए,
1: लेकिन 5 बजे
0: अगर इस 3 नहीं तो मैक्स 4 बजे से तो करना ही चाहिए.
1: तुम कितने बजे आते हो?
0: 4 बजे ना.
1: Are you sure?
0: मतलब ओके अराउंड अबाउट ऊपर नीचे.
1: या
0: सैंडी मैं 3 बजे भी आता हूँ काफी बार यार, प्लीज डोंट बी मीन. अगर 4 बजे नहीं किया आपने तो 5 बजे से तो आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा
1: फॉर दिस सेगमेंट. एंड थोड़ी देर में एक सिचुएशन भी आपके लिए हम लेके आएंगे. एंड हमारे पास काफी मैसेजेस आए हैं जिस आर्टिस्ट के बारे में हमने यहाँ पे पूछा है कि हम बहुत ही जल्दी किसके साथ बात करने वाले हैं, किसकी इंटरव्यू करने वाले हैं, और किसे कन्वर्सेशंस, आई विल से द राइट वर्ड इज कन्वर्सेशंस करने वाले हैं अबाउट न्यूजीलैंड से बॉलीवुड की जर्नी के बारे में.
0: मैंने ऐसा सुना है कि ये अपेरेंटली ये रेडियो अनाउंसर भी रहे हैं बिफोर.
1: या सुना ऐसा है, फैक्ट है,
0: फैक्ट है ना वो.
1: या या
0: अच्छा तो फैक्ट
1: इनको
0: है,
1: हमें रेडियो पे सुना. सो क्वाइट अ जर्नी है आई कैन से ना, रेडियो पे सुना है, फिर आपने इनको बॉलीवुड मूवीज में देखा है.
0: अभी एक और हिंट आपको देते हैं.
1: तो रुजबे के होप्स यहाँ पे जाग गए हैं.
0: किस बात, कहाँ के रेडियो से बॉलीवुड जा सकते हैं?
1: yeah.
0: मैं उम्र निकल गई ना सैंडी. वैसे अगर आप 10 साल पहले बोलते तो शायद अभी भी होप था वो टाइम पे. अभी तो यार
1: अरे बॉलीवुड का ट्रेंड चेंज हो चुका है ना अभी. इट्स नॉट जस्ट अबाउट उम्र वहाँ पे.
0: या एंड दैट्स राइट एक्चुअली. अक्षय खन्ना ने बाकी चीज को भी बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है ना,
1: बालों को
0: या बिना बालों को
1: या वही.
0: वेल दिस इज वन मोर हिंट फॉर यू. क्या लगता है आपको कौन आने वाले हमारे स्टूडियोज में हमारे साथ यहाँ पे वार्तालाप करने के लिए आज?
1: आज या फिर
0: या,
1: कभी
0: आज नहीं. अच्छा ठीक है. ये देखो यार सैंडी, मेकअप योर माइंड
1: मेरा काम है.

0: Ladies and gentlemen,
1: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. आपके लिए यहाँ पे हम गाने लेकर आते हैं और कुछ बातें भी लेकर आते हैं. आज देखो है वेनसडे. वेनसडे को आपके लिए 5 बजे के बाद हम लेकर आते हैं
1: सिचुएशनशिप.
0: सिचुएशनशिप well, this is not what you're thinking. It is about we'll put you in a situation.
2: और आपको बताना है कि अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आप क्या करते. तो आज की सिचुएशन ऐसी है, आपके सामने एक ऐसी पर्सनैलिटी है, सेलिब्रिटी है, पर्सनैलिटी है, जिसके बारे में आपने हमेशा से सपने देखे हैं कि कभी तो आपको ना इससे मिलना है. कैन बी योर फेवरेट एक्टर, एक्ट्रेस, योर सिंगर, या फिर पॉलिटिशियन, बिजनेस, स्टैंड अप कॉमेडियन, एनीवन. सो वो आपके सामने है. सो वुड यू रेदर
0: मत बोलो भाई, डर लगता है.
2: स्टैंड अप कॉमेडियन के बाद वही आया. वुड यू रेदर हैव अ पिक्चर विद देम एंड नो कन्वर्सेशन एट ऑल, और वुड यू रेदर हैव वन टू वन कन्वर्सेशन विद दैट सेलिब्रिटी एंड नो पिक्चर एट ऑल, देयर इज नो रिकॉर्ड कि आप कभी उसको मिले थे. आप क्या सिलेक्ट करोगे
0: इन दिस सिचुएशन? व्हाट वुड यू सिलेक्ट?
2: हाँ, इन दिस सिचुएशन आप क्या उसको क्या सिलेक्ट करोगे, क्या ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे 5599 पर, या फिर कॉल करो यहाँ पे 0800 00 हम 0800 00 4866. आप क्या करोगे इस सिचुएशन में? रुजबे, तुम्हारा क्या होगा? ऐसा कौन होगा,
0: ऐसा कौन होगा जिसको मैं एकदम ही ऐसा मिलना चाहूंगा?
2: बिकॉज तुम्हारी लिस्ट इतनी प्रोमिनेंट नहीं है कि कि भाई ये तो इसके लिए तो है मैड एकदम.
0: मैड मैं वैसे हूँ यार काफी लोगों के लिए. हाय, आपका स्वागत है.
3: हाय रुजबे, हाय सैंडी, सोम बोल रहा हूँ.
0: हाय सोम, बोलिए.
2: यस सोम, बताइए.
3: हाँ, तो मेरे साथ ऑलरेडी ये हो चुका है. सो आई वाज एट दैट टाइम मैं इंटरकॉन्टिनेंटल गोवा में काम कर रहा था एंड इट वाज आई थिंक क्रिसमस या न्यू ईयर की हॉलीडे होगी, तब उस टाइम पे मेरा शिफ्ट लगी हुई थी एंड वी हैड नो आइडिया सम वीवीआईपी वाज कमिंग इन. सो वी सेड ओके कोई ना कोई तो आई, इतने सारे तो होते हैं एंड यू विल नॉट बिलीव आफ्टरनून का शिफ्ट था मेरा. आई वाज जस्ट बाय मायसेल्फ एट द रिसेप्शन डेस्क. पर्सन हु चेक्स इन, नॉट चेक्स इन, ही जस्ट ट्रॉल्स इज मिस्टर अमिताभ बच्चन. एंड ही जस्ट कम्स इन फ्रंट ऑफ माय रिसेप्शन डेस्क एंड आई एम लाइक मेरे जैसे पैर नीचे से ऐसे हिल रहे हैं. I was like, क्या बोलूं मैं? And he is like cool and calm. He is asking me, आप कुछ तो बता रहे थे because I think जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, they all checked in earlier and they were in their villas. And by the way, अगर आप लोगों ने गोलमाल मूवी तो देखी होगी, जो वो विलास हैं गोलमाल मूवी में, they are actually owned by each on like एक-एक सेलिब्रिटी. अमिताभ बच्चन का एक है, अभिषेक बच्चन का एक है. सो दे वर एक्चुअली आई वाज इंटरकॉन्टिनेंटल गोवा, तो वो एक एक विला उनका होता है.
2: ओके,
3: सो दे एक्चुअली सो द शूटिंग ऑफ दैट गोलवान मूवी वाज एक्चुअली इन वन ऑफ दोस विलास.
0: ओ वाओ.
3: सो हाँ, तो
0: अब ये ओरिजिनल गोलमाल, मतलब जो पहली गोलमाल है रोहित शेट्टी की, पहली
3: फर्स्ट गोलमाल.
2: ओके ओके,
3: तो वो पूरी शूटिंग गोवा में इंटरकॉन्टिनेंटल में एंड दैट्स जो एक अमिताभ बच्चन का, एक अमर सिंह का, एक आई थिंक अनिल अंबानी, तो दे ऑल यूज्ड टू कम देयर.
0: क्या बात है यार,
2: नाइस मैन.
0: तो फिर क्या अमिताभ बच्चन को आंसर किया आपने कि नहीं किया फिर?
3: हाँ हाँ, ओब्वियसली. सो ही वाज देयर एंड ही वाज जस्ट आस्किंग आपने इनको देखा है? सो ही वाज बेसिकली टॉकिंग अबाउट जया बच्चन, अभिषेक बच्चन. आई वाज लाइक आई थिंक सो दे आर देयर बट आई डोंट नो, मेरे जैसे आई कुड स्पीक टू देम बट एक भी तब वो नहीं है कि एक फोटो देखते हैं कि बट वी आर नॉट अलाउड एनी,
0: सो
3: वी कुडंट, आई कुडंट टेक इट एंड वी जस्ट आई थिंक तभी उनका लाइक किंग.
0: अरे आपका, या सो दिस इज सॉरी, आपका आवाज अटक रहा है यार हमारी फ्रीक्वेंसी की तरह.
2: ये नहीं बोलना था.
0: सॉरी, बोलिए.
3: कैन यू हियर मी नाउ?
2: या या, परफेक्ट.
3: सॉरी मैं.
0: अरे रे, आपने सॉरी बोल दिया लेकिन वो जो एक्सक्यूज था वही उसी टाइम पे अटक गया, तो हम समझ गए कि नेटवर्क का इशू है.
3: सो ऑब्वियसली आई ट्राइड टू स्पीक एंड थोड़ा सा ही बात कर सके, देन या सो अगर गिवन अ चांस आई वुड हैव डेफिनेटली टेकन ऑटोग्राफ एंड फोटो बट ऑब्वियसली आई कुडंट डू एनीथिंग. सो spoke to him, so in that way I can say.
0: Yeah.
2: तो
0: yeah.
2: वो खुशी तो मिली होगी ना आपको की conversation में कि चलो photo ना से लेकिन conversation हुई है.
0: लेकिन अभी but I don't trust सोम ना यार, वो तो कुछ भी बोल सकता है, अभी proof थोड़ी है सोम के पास.
3: इसीलिए तो प्रॉब्लम है कि कोई प्रूफ है नहीं मेरे पास, वो रहता बट अनफॉर्चुनेटली नहीं, अब क्या करेंगे.
0: नहीं, नहीं, सही है.
2: लेकिन जो आजकल का टाइम ऐसा हो चुका है कि प्रूफ निकालने में बंदा बोलता है कि चलो ये लो एआई है ना, अभी प्रूफ देते हैं तुम्हें.
3: मैं 2003-04 की बात कर रहा हूँ, तब तो एआई नहीं था ना,
2: तब तो नहीं था,
0: तब मोबाइल फोन भी नहीं थे ना.
3: नहीं मोबाइल फोन था यार, इतने भी गए गुजरे नहीं थे हम लोग.
0: हाँ मतलब इतने नहीं थे मोबाइल फोन यार,
2: मैं था फोन बट इतने एडवांस वाले नहीं,
3: हाईफाई टाइप के मोबाइल नहीं थे वो.
0: अगर मोबाइल इतना ही रेलेवेंट होता, मेरे को एक बात बोलो सोम, अगर मोबाइल इतना ही रेलेवेंट होता तो अमिताभ बच्चन खुद कॉल करके नहीं पूछ लेते जया बच्चन को कि भाई किधर है.
3: वो भी है
0: तो फिर,
3: बट आई डोंट नो एट दैट टाइम इतना वो नहीं था ना. बट स्ट्रेंजली अगर देखा जाए कुछ कुछ कभी खुशी कभी गम में उसके पास तो बड़ा वाला फोन था. बट आई वंडर जब होटल आया था तब क्या कहा नहीं था उसके पास फोन, क्या था पता नहीं.
2: गुड पॉइंट,
0: ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर कॉल यार.
2: थैंक यू,
3: नो वरीज, चलो थैंक्स,
0: थैंक यू.
2: So, तुम बोल रहे थे रुजबे?
0: मैं बोल रहा था कि मेरे सामने अगर ऐसे आएंगे तो मतलब ऐसा जो सोम के साथ हुआ है ना, वो फ्रीज वाला, वो फ्रीज वाला हो सकता है अगर शाहरुख खान है सामने, तो
2: शाहरुख खान के सामने हो सकते हो तुम फ्रीज. या
0: शाहरुख खान फॉर श्योर.
2: सो तुम्हारे सामने शाहरुख खान आए तो वुड यू रादर हैव अ पिक्चर और कन्वर्सेशन?
0: पिक्चर तो नहीं लूंगा मैं,
2: कन्वर्सेशन.
0: कन्वर्सेशन भी क्या पता, इतना बड़ा आदमी थोड़ी कन्वर्सेशन करेगा.
2: ये बोलोगे एक तरफा प्यार
0: एक तरफा प्यार की एक तरफा प्यार की ताकत कुछ और ही होती है. वो दूसरे प्यार नहीं, क्या था डायलॉग
2: बांटी नहीं जाती है, पता नहीं क्या था वो.
0: वो दो लोगों के बीच में नहीं बटती,
2: वही
0: सिर्फ मेरा हक है उसपे. वही एग्जैक्टली ये डायलॉग मारूंगा मैं. एक्चुअली दिस इज अ गुड वन, लर्न करता हूँ बस ये डायलॉग को अच्छे से अभी.
1: थोड़ा सा हॉल बना दे.
4: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manuko, Mount Wellington and Westgate. Up to 60% off on now.

0: 10 a.m.
1: Accurate traffic.
2: Fresh savings from Bargain Chemist.
3: Clear overnight with a low of 6 on the northern. Heavy from West Haven to Esmond. The upper harbour is heavy westbound through Greenhithe. On the northwestern town to Massey, 30 minutes. To Manukau, 45, just over an hour to Drury. Heavy traffic heading south from Spaghetti Junction to Sylvia Park. Southwestern's heavy in both directions between Onehunga and the southern. Town to the airport, 33 minutes.
2: Find fresh savings across health, beauty, baby, personal care and more. All at Bargain Chemist.
1: There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.
4: Their mum can't work out why they always eat so well at mine. Well, it's the Woolworths chicken schnitzel. Maybe one day I'll tell her. But for now, my kind of Woolies keeps that secret between us.
5: Few things sound better than logs crackling in a fire. Rain on a tin roof. My voice. And the words, you've won a pair of Bose headphones. Be in to win one of 50 pairs when you join Southern Cross Health Insurance by 11th of October. See website for details. T's and C's apply.
6: You know Elite Bathroomware? Family owned since 2002. 48 hard-working Kiwis. One obsession? Bathrooms. With the ultimate showroom and the biggest range. Curating the best brands and bathroom fittings so you don't have to compromise. You asked? Elite delivered. The spring bathroom sale is on for September only. It's your chance to have that high-end bathroom with incredible savings. Elite Bathroomware. Kiwi-owned and operated. 59 Allens Road, East Tāmaki. See you there.
7: The ultimate pro iPhone. iPhone 18 Pro. With a big leap in battery life, new 48-megapixel Fusion main camera with variable aperture for more creative control, and four gorgeous colours. Be the first to unbox it with a great deal at Spark. Plus, save even more with trade-in. Do more with iPhone 18 Pro on an eligible pay monthly mobile plan with Spark. Order online or in-store. Spark terms and credit criteria apply. Delivery times may vary.
8: Auckland, it's time to sit back, relax, and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites, or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
9: Are you ready to go home?
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
10: Power Drive at 5.
0: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernised, customised designs for your dream kitchen.
11: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. Or ek important article aaya hai jahan pe again it's around politics and it has to be around politics kyunki jaise hi election abhi pass mein hai ab har koi ek dusre ke upar bill bhadne ki abhi koshish mein laga hai. Currently Erica Stanford ne ek statement diya hai. Unhone kaha hai ki unko currently confidence hai MBIE chief executive Nick Blakely mein.
12: For now.
11: For now. 50 million से ज़्यादा जो डॉलर है ये इन्होंने अब तक इन्वेस्ट किए थे फॉर एक टेक्नोलॉजी इन इमिग्रेशन बायो क्या बोलते हैं उसको बायोमेट्रिक कैपेबिलिटी अपग्रेड कि बायोमेट्रिक के थ्रू सब कुछ हो जाएगा बट एनी वे उसके कोई मेजरेबल बेनिफिट्स अब तक डिलीवर नहीं हुए हैं और प्रोजेक्ट को शायद अबैंडन भी किया जा सकता है. 42 मिलियन तो ऑलरेडी रिटर्न ऑफ हो गया है और ऊपर से ज़्यादा 8.7 मिलियन भी रिकमेंड किया गया है कि वो भी राइट ऑफ कर दे तो दैट मेक्स इट टू 50.7 मिलियन. लेकिन एरिका स्टैनफोर्ड बोल रही है कि नहीं नहीं ऑल इज़ वेल मतलब मुझे अभी भी भरोसा है इन पे
12: कि ये कर सकती है बट उन्होंने अनकंडीशनल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं दिया है. वैसे मिनिस्टर इज फेसिंग क्वेश्चंस अबाउट एमबीआई ने जिस वजह से हैंडल किए हैं इमिग्रेशन इश्यूज एंड डिसीजन सो फार अभी रिसेंटली एक्चुअली लास्ट टू ईयर्स में. एंड स्टैनफोर्ड ने इंडिकेट किया है कि शी एक्सपेक्ट्स अकाउंटेबिलिटी एंड आंसर्स ऑल्सो फ्रॉम MBIE.
11: या सो ब्लेकली, निक ब्लेकली जो है, इन्होंने अपेरेंटली पार्लियामेंट को मिसगाइड किया था बोल कुछ फैक्ट्स छुपाकर, और उसके कारण आई थिंक उनके ऊपर भी एक इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है. और ये जो एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन है, दिस इज लेड बाय माइकल हेरोन केसी. तो ये सारे इंटीग्रिटीज इसके इन्वेस्ट कर रहे हैं. बट व्हाट इज योर टेक ऑन दिस यार? $50 million ये अपेरेंटली वेस्ट हो गए हैं. अभी इसके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए आपके हिसाब से, आपको क्या लगता है?
12: एंड अगर इमिग्रेशन न्यूजीलैंड ऐसा पंगा होता है कि हु शुड अल्टीमेटली आंसर फॉर इट ना?
11: ये 50 मिलियन अगर इमिग्रेशन के कोई और फंक्शन में अगर इन्वेस्ट किए गए होते तो वीजा प्रोसेसिंग इतना डिले नहीं हुआ होता.
12: और बस लीडरशिप रिस्पॉन्सिबल हो जाती है जब वाइडर एंगल के बारे में बात होती है. एंड यू नो क्वेश्चंस जब उठते हैं, जब कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो 100% वहाँ पे क्वेश्चंस उठते हैं. एंड क्योंकि अकाउंटेबिलिटी होती है वहाँ पे कि आप किस उसके आंसर क्या है, उसका रीज़न क्या है, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है, ये सब चीज़ें.
11: सो या तो आप बताइए व्हाट इज योर टेक ऑन दिस. 5599 पे आप मैसेज करके हमें बता सकते हो, या अगर आप कॉल करना चाहते हो तो 800-004-866 इज द नंबर. यू कैन गिव अस अ कॉल एंड यू कैन शेयर योर टेक ऑन दिस.
12: अपना एक्सपीरियंस भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस इसको लेके क्या रहा है. बिकॉज अभी जिन्होंने बोला है कि इमिग्रेशन इश्यूज एंड डिसीशंस को लेके काफ़ी सवाल उठाए गए हैं, क्या आपका केस भी इसमें आया है? क्या आपके भी कुछ ऐसा आपने अप्लाई किया था इमिग्रेशन के थ्रू जिसमें आपको डिलेज बहुत सारे हुए हैं, इश्यूज या फिर आपने फेस किए हैं विदाउट एनी रीजन?
11: इश्यूज की बात करोगे सैंडी, हम 8 बजे तक यहीं पे रहेंगे. वो गलत टॉपिक हो जाएगा.
12: गलत टॉपिक इस टाइम पे हमने छेड़ लिया. बढ़िया, यू कैन मैसेज.
11: मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने भी कोई चीज में बहुत पैसे लगाए या बहुत टाइम लगाया, बहुत एफर्ट लगाया? पैसे तो इतने नहीं होंगे, चलो ठीक है, बट टाइम लगाया, एफर्ट लगाया, और फिर वो चीज आपको रोकनी पड़ी. काफी बार होता है ना, DIY प्रोजेक्ट तुम शुरू करते हो कुछ चीज करने में, काफी मेहनत करते हो, काफी पैसा भी लगाते हो.
12: अरे बिजनेसेस में तो होता है बहुत कुछ.
11: बिजनेसेस में होता है,
12: बट यू स्टार्ट समथिंग, यू स्टार्ट समथिंग बट देन कंसिस्टेंसी आप नहीं कर पाते हो बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर, रिसोर्सेज और एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है वो फैक्टर. तो उसके कारण आगे आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, आगे
11: आप एंड लाइन, फिनिश लाइन तक उसको नहीं ले जा सकते,
12: नहीं लेके जाते हो.
11: ऐसे कोई किस्से अगर आपके पास है वो भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो हमारे साथ, कॉल करके या फिर मैसेज करके ऑन 5599. कॉल करने का नंबर है 0800-4866.
12: या फिर अगर आप मैसेज करना चाहते हैं, 5599 इज अ नंबर जहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं. और आज 6 बजे के बाद ट्रेंड मेकर्स में आप कुछ और भी सुनने वाले हैं.
11: आज कोई अलग थीम लेकर आने वाली है सैंडी.
12: डिफरेंट थीम.
11: ठीक है, तो उसके बारे में हम 6 बजे के बाद ही जानेंगे. आज सरप्राइज है, मेरे लिए भी सरप्राइज है आज.
12: ओह या, तुम्हारे लिए सरप्राइज है ना, यू डोंट नो व्हाट इज इट.
11: या सो एनीवे 5599 इज द नंबर वेयर यू कैन कीप सेंडिंग योर मैसेजेस. और भी इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ करेंगे आज. सुनते रहिए ड्राइव शो 7 बजे तक.
10: लेट्स गो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local developer.

0: Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
1: Hum. Accurate traffic.
2: Crackerjack Mount Wellington now open.
3: Looking pretty clear overnight with a low of 6 on the northern, just slow from West Haven to Esmond. Town to Silverdale, 42 minutes. Upper Harbour still slow, heading west through Greenhithe. On the northwest and a bit slow from Waterview to Rosebank. The southern is heavy heading north from Tremworth Street, just past Green Lane, and south from Spaghetti Junction to Sylvia Park. Southwestern really heavy in both directions between Onehunga and the southern.
2: Deals to blow your mind, not your wallet. Visit Crackerjack's new store in Mount Wellington.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सबडिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz
7: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
8: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
9: Commonwealth Vault आपके precious belongings को रखता है safe और secure. Gold, bullion और precious metals की value जब all-time high पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके assets theft और natural disaster से protected रहें. जब आप अपने valuables Commonwealth Vault को entrust करते हैं, तो आपको मिलता है peace of mind. ये जानते हुए कि वो safe, secure और protected रहेंगे. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond. Details at commonwealthvault.co.nz. That's commonwealthvault.co.nz.
10: Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudhima Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor weekend, 24th and 25th October. Early bird tickets just $75 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12 half price, under 5s free. Book now at sudhimahotels.com/foodfestival.
11: This is Warehouse Country, where the best price on nature's fresh bread, the best price on eggs, and the best price on milk in the country can only be found at The Warehouse. Obviously.
12: Today's after-school pickup came with one, two, three bonus kids, and they're all hungry. Luckily, I have a delicious Woolworths beef lasagna that's ready in just 35 minutes. Yum. That's my kind of Woolies.
13: Time check.
14: Brought to you by Maan Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services, open 7 days. Call Maan Tyres on 0800-00010.
0: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
15: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 6. A young child injured in an incident in Southland on Sunday has today died in Starship Hospital. Police are now treating the case as homicide and say a man and a woman, both aged 19, are expected to face further charges. The Chief Ombudsman says he has significant concerns about allegations regarding the Official Information Act. A leaked video shows a senior education official appearing to tell staff how to circumvent the OIA process. John Allen says he's asked to urgently meet with the Secretary of Education. The barbs have been flying in Parliament for the final debate of the term. Christopher Luxon made it clear what National isn't about.
16: So let me set the record straight for just one last time, please. Is National considering a capital gains tax?
17: No.
16: Are we considering a land tax on your farm? What about scrapping investment boost?
17: No.
15: And Labour's Chris Hipkins took aim at the current coalition.
18: 3 years ago, I said that if Christopher Luxon went into government with David Seymour and Winston Peters, they would run circles around him. Well, it's just as well they work in a round building.
15: The new New Zealand version of Monopoly has been unveiled. Iconic locations to make the board include the Hobbiton movie set, Tongariro Alpine Crossing and Cathedral Cove. To sport, it's taken 10 months, but former All Blacks captain Scott Barrett will be back this weekend. First it was a sabbatical, then a back injury, but Barrett will turn out for Taranaki against Hawke's Bay on Sunday. Rugby news with All Blacks Travel and Hospitality.com. Eden Park Bledisloe Cup hospitality packages selling now. And the Warriors have confirmed centre Adam Pompey is leaving. There has been speculation the 28-year-old is heading to the Melbourne Storm.
1: Sports news.
13: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Ross. Skill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
1: Are you ready to go home? The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura Jaiku. Let's go! Three, two,
17: Trendmakers. Aap sun rahe humbling Bollywood's biggest hits. Good evening. Drive show aapke liye jari hai.
19: A very very good evening. And Trendmakers aapke liye shuru ho chuka hai. And Trendmakers mein itihas mein aisa pehli baar hua hai. I think pehli baar hua hai. की ट्रेंड मेकर्स शुरू हुआ है और रुज़बे को अभी नहीं पता है कि ट्रेंड मेकर्स आज किसके ऊपर है।
17: आज मुझे नहीं पता है ट्रेंड मेकर्स का टॉपिक क्या है।
19: बिकॉज आज रुज़बे हॉट सीट पे नहीं है तो वो देख नहीं पा रहा है।
17: That's right. So, क्या हो रहा है आज ट्रेंड मेकर्स में यार?
19: ट्रेंड मेकर्स में आज हम ऐसे गाने सुनने वाले हैं जो खाते पीते गाने हैं।
17: खाते पीते गाने
19: या
17: मतलब पॉलिटिक्स के अराउंड अच्छा ओ खाने पीने ओ अच्छा मतलब आप फूड की बात कर रहे हो।
19: जस्ट बिकॉज इट इज इलेक्शन ईयर डजंट मीन कि हम उसके ऊपर शो करेंगे रुज़बे।
17: या इट वाज अ नाइस वन लेकिन कुछ भी बोलो
19: अच्छा था बट या आज हम खाने पीने वाले गाने ऐसे करने वाले हैं एंड सरप्राइजिंगली वी हैव लॉट ऑफ चिकन एंड कुकर्ड इन आवर प्लेलिस्ट।
17: आई कैन थिंक ऑफ अ फ्यू सॉन्ग्स। पहले तो है एक कुकड़ो को वो भाई बजरंगी भाईजान का वो गाना
19: वही प्ले होने वाला है।
17: फिर एक है चिकन डांस जिसमें विक्की कौशल का गाना है वो
19: यस
17: फ्रॉम द मूवी
19: स्क्वायर फुट।
17: हाँ Love per square foot
19: आधा बोला मैंने।
17: बहुत लवली मूवी थी यार वो इतनी स्वीट इतनी क्यूट मूवी। आई थिंक विकी कौशल की पहली ऐसी कमर्शियल टाइप की मूवी मतलब एज इन मसान है पहली बट
19: रोमांटिक मूवी थी वो।
17: हाँ रोमांटिक मूवी नेटफ्लिक्स पे आई थी।
19: या
17: वेरी नाइस मूवी।
19: सो या खाते पीते गाने हम यहाँ पे प्ले करने वाले हैं।
17: वो कुक्कड़ कमाल दा वो वाले गाने भी
19: तो लिख के भेजिए डबल
17: कमाल दा इज
19: कभी देखो अब खाने के ऊपर तो सारे गाने हैं नहीं खाने के रेफरेंसेस यूज किए गए हैं बहुत सारे गाने
17: तो फिर वो भी हो सकता है इसमें आती क्या खंडाला
19: क्यों
17: लोना लेके चिक्की खाएंगे वाटरफॉल पे जाएंगे
19: हाँ, वो भी क्वालिफाई करता है खाई के पान बनारस वाला।
17: अरे खाई के पान बनारस वाला
19: तो आप ही भेजिए आज सारे खाने पीने वाले गाने।
17: वो वाला गाना भी हो सकता है सैंडी असलम भाई
19: उसमें क्या है
17: दुबई का चश्मा चीन की चड्डी और ईरानी चाय। या
20: भूख लगी जोरों की भूख लगी

0: भैया हमरा हाल का है।
1: बता दे।
0: निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

0: आप सुन रहे हैं हम्पलिंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स। आज ट्रेंड मेकर्स में आपके लिए हम खाते पीते गाने लेकर आ रहे हैं। एंड उससे एक और चीज आपको बताना है कि अगर आपको भी बढ़िया सा खाना पीना एंजॉय करना है तो हम जा रहे हैं बाली बैंकॉक। एंड बाली बैंकॉक हम जा रहे हैं ईस्टर 2027 में, जहाँ पे वी आर गोना हैव लॉट ऑफ फूड एज वेल, बट अ लॉट ऑफ एडवेंचर, लॉट ऑफ फन एंड आई थिंक सम शॉपिंग एज वेल, क्योंकि बैंकॉक में जाके हम शॉपिंग भी करने वाले हैं ढेर सारी।
1: 100% सो बाली बैंकॉक के ट्रिप के लिए अगर आपको हमारे साथ शामिल होना है, इट इज़ वेरी इजी। चाय पे चर्चा हम करने वाले हैं एक वीकेंड पे, तो हमें आके मिलिएगा एंड आप जानिएगा कि इस ट्रिप में क्या क्या होने वाला है, इसके पैकेजेस कैसे हैं, ये कॉस्ट वर्थ क्यों हैं। बिकॉज कई बार लगता है ऐसे सुन के कि यार कितना खर्चा होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे, ये सारे सवालों के जवाब आप हमसे मिलके कर सकते हैं
0: जी। एंड ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी एन ऑल इंक्लूसिव पैकेज एंड वी आर ट्राइंग कि आप अगर उस दिन पे आओ तो उस दिन के लिए आपके लिए कुछ डील्स भी हम वहाँ पे अरेंज करेंगे। बट आई थिंक द होल पॉइंट ऑफ चाय पे चर्चा इज फॉर यू टू गेट द वाइब कि क्या वाइब होने वाला है, क्या मस्ती हम करने वाले हैं, कैसे माहौल हम सेट करेंगे ट्रिप पे। So you'll get to know all of the those things.
1: Every detail आपको एक्चुअली में मिलने वाली है। So drive लिख के भेजिए 5599 पर, ऑटो रिप्लाई में आपको फॉर्म मिल जाएगा जो आपको भरना है for RSVP purposes.

0: Trend Makers.
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
2: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
1: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यही अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
1: सुनो आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया घर बेचने को कह रहे थे
3: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं डेवलप करना बेहतर लगता है पर पैसों का डर है
1: इसीलिए NZPMI से बात कर लो वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं
4: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए NZPMI टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI
5: A Kogan monitor is just like an monitor. Both monitors do very similar monitor things, but with slightly different little logos, cords, and stands. One's a Kogan 34-inch curved ultra-wide monitor. The other monitor has a price you won't be able to stand. Get what you want for less with Kogan. Available from Mighty Ape, Dick Smith, and Kogan.com. Clickin' awesome.
6: Auckland, it's time to sit back, relax, and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites, or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
7: Uber drivers, if you already have a claim with Not Your Fault services, it is moving forward and one of their claims managers will be in touch. If you have not applied, intake 4 is open. Not Your Fault services phone team is at capacity. So please don't call, apply online instead at nyfservices.com. That's nyfservices.com.
8: Bollywood.
9: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
10: Are you ready to go home?
11: The Drive Show with Sandy and Rusby brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
12: You're listening to Humbling Bollywood's biggest hits, Trend Makers. आपके लिए आज हम खाने पीने वाले गाने लेकर आ रहे हैं और काफी बढ़िया मैसेजेस आए यहाँ पे यार. Some songs that we haven't thought of and some songs that we have not heard of also.
13: चाय और कॉफी के गाने भी आए हमारे पास.
12: यार मेरे को वो वाला गाना बहुत पसंद है. वो मैसेज भी आया है. कॉफी पीते पीते. उस गाने का टाइटल है. बहुत बढ़िया गाना
13: है. वो भी है लिस्ट में. वो भी रख दिया है. सो या आप भी भेजिए यहाँ पे एंड ऐसे कौन से गाने हैं जो आप यहाँ पे सुनना चाहते हैं और साथ साथ में हमारे पॉडकास्ट सुनना ना भूलिएगा बिकॉज हमने जो रिसेंट पॉडकास्ट किया है रुजबे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट बिकॉज थिंक योर फैमिली अगर आपको लगता है कि वेन यू पास अवे तो आपकी फैमिली को ऑटोमेटिकली सब कुछ मिल जाएगा देन यू नीड टू थिंक अगेन बिकॉज ऐसा यहाँ पे न्यूजीलैंड में नहीं होता है There are many things which are very different.
12: Yeah, and that's why we spoke to someone from Public Trust. और उन्होंने कुछ ऐसे किस्से शेयर किए हमारे साथ पॉडकास्ट में जो सुन के हमको ऐसे लगा ओह माय गॉड यार दैट्स समथिंग दैट वी रियली डोंट थिंक अबाउट वी डोंट टॉक अबाउट हमारे घर में तो बात करना भी मना होता है काफ़ी बार वी आर नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट डेथ वी नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट कि अरे आपके जाने के बाद क्या या हमारे जाने के बाद क्या तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एंड आई थिंक पीपल हु हैव गॉन थ्रू इट रियलाइज इट मोर कि काश यू नो हमें ये सब के बारे में पहले ही पता हुआ होता सब यू नो सो हैव अ लिसन टू दिस कॉन्वर्जेशन जो हमने किया है तानिया पिंटो के साथ बहुत ही डीप एंड मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन रहा इसमें एंड आई थिंक दैट दिस कॉन्वर्जेशन इफ अगर आप सुनोगे इट विल गिव यू an idea or some hope and may inspire you also to have a chat with your family
13: या सो बहुत ही इंसाइटफुल एपिसोड है आई विल से. सो ड्राइव कीवर्ड जब आप लिखोगे तो ये एपिसोड भी आपको मिल जाएगा.
12: एंड डेफिनेटली देयर इज अ कॉल टू एक्शन आल्सो इन दिस एपिसोड, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि काफी बार विल्स के बारे में बातें नहीं होती है कि विल का क्या इंपॉर्टेंस है,
13: पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है यहाँ पे न्यूजीलैंड,
12: एंड्योरिंग पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है, बैंक्स क्या करते हैं आपके अकाउंट के साथ आफ्टर यू पास अवे, यू नो सो मेनी थिंग्स that I think you'd get information on in this podcast. So drive likhkar bhejna hai 5599 pe.
13: Yeah, to aapko episode ka link mil jayega. And abhi aapke liye sawal hai, aapko ek aise gaane ka naam batana hai jahan pe ek bahut hi Indian snack ke bare mein baat hui hai Akshay Kumar ke gaane mein.
12: Oh, mere ko gaane ka naam aapko likh
13: ke bhejna hai 5599 pe. Let's see kitne log is gaane ko guess kar pate hain.
12: Indian snack jo ek aur ek beverage ke बहुत परफेक्ट जाता है.
13: या या या या
12: यूजुअली इस बेवरेज का और इस स्नैक का
13: कॉम्बिनेशन
12: जो कॉम्बिनेशन है, और ये स्नैक ऐसा है कि इस स्नैक को आप ऐसे भी खा सकते हो या उसको किसी के साथ भी खा सकते हो, राइट ना? और ये स्नैक में जो मेन इंग्रेडिएंट है
13: वो तो कहीं पे भी जा सकता है,
12: वो कहीं पे भी जा सकता है और उसके बारे में भी जिक्र हुआ है इस गाने में.
13: तो यहाँ पे लिख के भेजिए 5599 पर, एंड द हिंट इज अक्षय कुमार.

0: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स एंड ट्रेंड मेकर्स, आपके लिए हम लेकर आते हैं 6 से 7 के बीच।
1: या और जो गाने के बारे में हम बात कर रहे थे वो गाना अभी आपके लिए हम प्ले करने वाले हैं, समोसे के बारे में बात हो रही थी।
0: या जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू, क्या गाना है यार।
1: शालू फ्रेंड्स होते हैं उसको बहुत छेड़ते हैं
0: ना। या दैट्स राइट यार।
1: Yeah, you know there are like almost Rusbe 100 days left in 2026.
0: Only 100 days left.
1: Only 100 wow. days, man. मतलब उसके बाद 2026 is over and out.
0: And 2027, मेरे को लग रहा है 2026 has been a very very tough year, yeah, for a lot of them.
1: हर साल किसी ना किसी के लिए कुछ अच्छा होता है कभी बुरा होता है, so it's like that only.
0: That's right. How has 2026 been for you so far, Sandy?
1: मेरे लिए okay. Yeah, I will say okay, A-Y वाला, okay.
0: Okay.
1: Yeah, yeah.
0: So.
1: मतलब कि इतना बुरा भी नहीं, इतना अच्छा भी नहीं, okay, I will say.
0: Okay, you will say.
1: वो जो आता है ना, middle में आता है, yeah, okay.
0: चलता है मतलब.
1: Yeah, मतलब आया गया, like, okay, doesn't matter.
0: Right.
1: So, वैसा वाला मैं कह सकती हूँ, that rating I will give. What about you?
0: I think for me, it has been a little tough, I would say. Yeah, it's been quite a tough year. In terms of my personal motivation as well, my personal mental health, it has been a tough year.
1: Yeah.
0: And I'm hoping ki abhi with summer coming in, hopefully things turn around and hopefully things change. 100%. But let's see.
1: और मुझे क्या लगता है ना कि हमें साल के खत्म होने का या फिर एक महीने के खत्म होने का इंतजार नहीं करना चाहिए to turn things around. अपने बारे में भी, you know, mentally भी. We just need to keep, okay, like this phase is over. Why not next day say?
0: Yeah.
1: उसके लिए कोई Monday, first, या end of year नहीं होना चाहिए.
0: 100%. And having said that, there doesn't have to be any pressure also. Like, मेरे को मालूम है, I'm going through like a tough phase, but I don't have to be कि भाई मेरे को यार ये अभी बदलना ही है और अभी ये
1: first
0: October से बदलना है. ऐसा मेरे को मेरे लग रहा है कि होगा भाई धीरे. Time अपना अपना लेगा वो धीरे धीरे.
1: जब अपने time के साथ अपने pace के साथ चलते हो और हर किसी की pace different होती है.
0: That's right.
1: Every person is very different. So, yeah, ज्ञान देना बड़ा इजी होता है, but apply करना is very easy खुद पे.
0: नहीं, मैं तो खुद के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है, like it's been, और ऐसे ना रेडियो पे हमको काफी बार सुनते हैं, राइट, हम लोग हंसते हैं मस्ती करते हैं, ये वो, ये हमारा काम है. और यहाँ पे आपको रेडियो पे पता भी नहीं लगेगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है या सैंडी के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि हमारा ये काम है, हम लोग यहाँ पे आके हमारा काम करते हैं और वो शिद्दत से करते हैं और फिर हमारे प्रॉब्लम्स जो है वो बाद में हमारी मतलब टेक ओवर कर लेते हैं या जो भी होती है.
1: मेरे को लगता है कि इसमें ये हो जाता है कि हर किसी की लाइफ में है चीज़ें चल रही, लेकिन हर किसी को हमेशा प्रिटेंड हैप्पी नहीं करना है एवरी डे इन द लाइफ टू आउट देयर. मतलब जैसे हमें करना पड़ता है, मतलब प्रिटेंड कह लो या फिर हमें अपनी, नॉट प्रिटेंड, हमें अपनी एनर्जी चेंज करनी पड़ती है.
0: वो तो बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है हर किसी को करना ज़रूरी है वो. बट हैविंग सेड दैट, इट डजंट मीन दैट देयर इज नथिंग गोइंग रॉन्ग. लाइक मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं अपसेट हूँ कोई बात को लेकर या किसी चीज को लेकर, और लेकिन मैं रेडियो पे आके अपना काम कर रहा हूँ, हंस रहा हूँ, गा रहा हूँ, ये मस्ती कर रहा हूँ, और फिर मैं फिर घर पे जाके अगर बोल रहा हूँ कि अरे यार नहीं, आई एम रियली फीलिंग, यू नो, नॉट फीलिंग वेल या जो भी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अरे तू रेडियो पे जाके क्या मस्ती कर रहा है भाई, वो मेरा काम है.
1: तो आज ऐसी रील बनाई तुम, तो अच्छे मूड में नहीं, तो तुमने तो ऐसी रील बनाई, बिकॉज वो काम है,
0: वो काम है,
1: इट इज अ वर्क. किसी के लिए अपना काम जितना इम्पोर्टेंट होता है, हमारे लिए यही काम है.
0: हम मस्ती के लिए
1: नहीं करेंगे तो भाई क्या करेंगे.
0: एग्जैक्टली, वो मस्ती के लिए हम नहीं कर रहे हैं, हम हमारे पास भी हमारे KPIs है जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं और उसके लिए हमको ये करना पड़ रहा है. सो या आई थिंक लाइक व्हाट वी आर ट्राइंग टू गेट टू इज दैट इफ यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू लाइक अ टफ फेज and there are moments of your job that require you to be happy, require to be in the mood, masti ye wo, it's fine yaar. I think you don't have to take the stress ki oh no, ab main sad hu to mujhe sad hi rehna hai pura time, ya main khush hu to unko khush hi rehna hai pura time. I think we live in the gray zone anyway.
1: Is it what pe aapko kehte hain, take care of yourself, tata bye bye,
0: have a lovely rest of your evening, we'll see you tomorrow, bye.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
2: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
1: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
3: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
4: ANZ is giving away Auckland FC tickets to fill this seat, and this seat, and that seat.
5: James, this is a radio ad.
4: Oh, sorry. ANZ is giving away 5,000 free tickets to Auckland FC's first home game of the season. It's our way of thanking the fans and Aucklanders who've backed the club from day one. Now the champs are back for more, so let's give them the welcome home they deserve and pack the stands. Search ANZ Pack the Stands for more information on how to claim your free tickets. T's and C's apply.
6: This is Warehouse Country, where the best price on nature's fresh bread, the best price on eggs, and the best price on milk in the country can only be found at The Warehouse. Obviously.
7: Kick breast cancer to the curb and volunteer for the Pink Ribbon Street Appeal this October. Pick a two-hour shift at a time and location that suits you to help the thousands of women diagnosed with breast cancer. Sign up at pinkribbonvolunteer.org.nz.
8: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
9: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
10: अब हमारा क्या होगा?
11: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
9: तो क्या करें?
12: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो की करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: जिया चले जा चले

मिडवीक मसाला जारी है नाइट कैफे में, ये सेगमेंट 8 टू 9 आपके लिए रहता है ऑन एवरी वेंसडे। शुरू करते हैं बॉलीवुड खबरों के साथ। रणबीर कपूर को गणपति की मूर्ति अपने साथ कैरी करते हुए देखा गया था ड्यूरिंग विसर्जन, और ही वाज सीन पार्टिसिपेटिंग इन गणपति विसर्जन अपने डॉटर राहा और आलिया भट्ट के साथ। फैमिली एक फोटोग्राफ के लिए इकट्ठा हुए ड्यूरिंग द रिलीजियस सेलिब्रेशन, जहाँ पर राहा वाज सीन क्लोज टू आलिया और रणबीर ने गणपति जी की मूर्ति अपने साथ लिया था। और ये अपीयरेंस बहुत ही जल्दी लोगों के अटेंशन को अट्रैक्ट किया फ्रॉम फैंस एंड फोटोग्राफर्स जो वहाँ पर मौजूद थे या जो पहुँच गए इस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए। सोनी राजदान ने कहा है कि शी पेड द प्राइस फॉर बीइंग एन एक्टर। इस पर जानकारी बहुत ही जल्दी आपके लिए।

कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

एक पल में जो आकर गुजर जाता है ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।

0: Bandweek Masala.
1: सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. सोनी राजदान का कहना है कि शी ओपन्ड अप इनफैक्ट अबाउट हर लॉन्ग करियर एंड अ डिसीजन टू प्रायोरिटाइज एक्टिंग ओवर स्टारडम. इन्होंने डिस्कस किया कि चूजिंग चैलेंजिंग रोल्स इसका अपना खुद का एक कॉम्प्रोमाइज़ या समझौता के साथ ये आता है. शी इज़ करंटली अपियरिंग इन द फैमिली ड्रामा ओम का हरी. और एक्टर ने कहा है कि मदरहुड और फैमिली रिलेशनशिप्स के बारे में उन्होंने काफ़ी डीपली बातें किया इन HT interview. तो इन्होंने कहा है कि रोल्स को चूज करने के दौरान कॉम्प्रोमाइजेस भी करना पड़ता है क्योंकि अलग अलग रोल्स आते हैं और पूरा किरदार जो आपको निभाना होता है और उसका सिलेक्शन ये चैलेंजिंग हो सकता है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और भी बॉलीवुड खबरें बहुत ही जल्दी.

0: मसाला
1: सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स मिडवीक मसाला जारी है ओनली ऑन हम जिसमें बॉलीवुड की खबरें आप तक हम लेकर आते हैं। मिर्ज़ापुर ये मूवी काफ़ी सक्सेस स्टोरी बना रही है, सक्सेसफुल हुई है बॉक्स ऑफिस पर, जिसमें पंकज त्रिपाठी है और इस मूवी ने अभी 200 करोड़ मार्क को क्रॉस कर दिया है इन जस्ट 2 वीक्स और अभी भी लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। थिएटर्स अभी भी खचाखच भरा जा रहा है विद ऑडियंसेस क्योंकि आफ्टर इट्स थिएट्रिकल रिलीज ऑडियंसेस अब यहाँ पर पहुँचने लगे हैं टू वॉच द मूवी। वर्ड ऑफ माउथ सबसे बड़ा पब्लिसिटी रहा है। लेटेस्ट बॉक्स ऑफिस फिगर्स हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश किया गया था और कहा गया है कि इसकी वजह से मूवी का पॉपुलरिटी बढ़ते जा रहा है। मिर्ज़ापुर फ्रेंचाइज अभी और भी बड़ा हो गया है, फ्रॉम स्ट्रीमिंग इनटू सिनेमा में अभी आ चुका है। करीना कपूर की फिल्म दायरा इट ओपन्स अप विद सडन अमाउंट ऑफ लाख्स एट द बॉक्स ऑफिस, इस पर जानकारी मैं आपको दूंगा।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे। नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस। हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
2: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स। लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
1: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही। अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL T&Cs, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
3: Hey, City Rail Link's now open, and our first trip's going to the game.
4: Now I can go east-west on just one train. So my first trip seeing an old friend in Swanson.
5: Our first train ride. We're surprising the kids with Tiwai Horatiu Station and a movie.
6: See our first trip? Coffee with friends, maybe K Road, maybe Pukekohe.
7: Oh, it'll be our millionth time going to the art gallery, but our first time taking the train.
8: Those all sound great. The City Rail Link's now open, so all aboard with Auckland Transport.
9: MediaWorks complaints. How can I help?
10: Yeah, hi. You guys made some ads for my local business.
9: Nice.
10: And you talked me into creating this funny character.
9: Great.
10: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
9: Are you?
10: Yes.
9: Are you Bobby the Baker?
10: Yes.
9: What's that thing you do again?
10: Stop it.
9: You bring the mouth.
10: Stop it.
9: I'll bring the pie.
10: Stop it, please.
9: Okay.
10: Yeah, sure. I might have 3 stores now, but Bobby's more famous than me.
9: So what's the problem?
10: My name's Bruce.
11: Advertise with
12: MediaWorks.
9: New Zealand listens to us.
13: The beat of Bollywood.
14: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
13: Hum. Night Cafe on Hum.
15: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। करीना कपूर की फिल्म दायरा ये 90 लाख रुपए कमा चुकी है एट दी बॉक्स ऑफिस ऑन इट्स ओपनिंग डे। और इस फिल्म में करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन काम कर रहे हैं। इट ओपन इन थिएटर्स विद अराउंड 90 लाख। और कहा गया है कि फिगर रिप्रेजेंट्स द फिल्म्स फर्स्ट डे डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। इंटरनेशनल अगर कुछ कलेक्शन रहा होगा इंटरनेशनली तो ये अभी नहीं अकाउंट किया गया इस अमाउंट में। और इस फिल्म मार्क्स अनदर थिएट्रिकल रिलीज फॉर करीना कपूर खान। और कहा गया है कि अब इस फिल्म की परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा ऑन ऑडियंस रिस्पॉन्स और वीकेंड कलेक्शंस जो कि अभी इस दौरान होगा आने वाले वीकेंड में। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ कुछ ही देर में कुणाल खेमूज वाइब का क्या रिस्पॉन्स रहा या क्या रिस्पॉन्स मिला है इस पर जानकारी मैं आपको दूंगा। गुण गुण गुण।

0: अरे नेहा, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट होम। तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
1: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
0: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
2: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
3: ANZ is giving away Auckland FC tickets to fill this seat and this seat. And that's it.
4: James, this is a radio ad.
3: Oh, sorry. ANZ is giving away 5,000 free tickets to Auckland FC's first home game of the season. It's our way of thanking the fans and Aucklanders who've backed the club from day one. Now the champs are back for more. So let's give them the welcome home they deserve and pack the stands. Search ANZ Pack the Stands for more information on how to claim your free tickets. T's and C's apply.
5: Check. Brought to you by Maan Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services, open 7 days. Call Maan Tyres on 0800 00 00 10.
6: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
7: Good evening to you. With the latest at 9, I'm Jeff Bryan. The body of a man who was reported missing at 1:30 this morning has been found. He was suspected to have entered the Waikato River near Hamilton, where his clothes and cell phone were left behind. There's a warning to watch for AI-powered scams. Cyber security company Avast has crunched the numbers on the tens of millions of video encounters involving the technology and flagged around 1 in 30 as somehow fraudulent. And the new New Zealand version of Monopoly has been unveiled. Iconic locations to make the board include the Hobbiton movie set and the Tongariro Alpine Crossing. In sport, MPC Rugby this weekend, former AB skipper Scott Barrett is back after months on the sidelines for Taranaki against Hawke's Bay, and Northland gets Simon Parker back for the Ramfurly Shield defence against Counties Monaco. And in motorsport, with Magan Turbo's 80,000k tyre warranty, in Formula One, Red Bull driver Isaac Ajar is staying with Red Bull as Max Verstappen's teammate for next year. There is no announcement yet from sister team Racing Bulls on whether Kiwi driver Liam Lawson will remain with the team.
5: Sports News.
6: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Draw Skill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
8: 9th कैफे में मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका। 8 to 9 मिडवीक मसाला आपने सुना बॉलीवुड की खबरें। अभी 9 PM ऑनवर्ड्स आपको तो पता है कि क्या होता है। नाइट कैफे कंटिन्यूज, अमेजिंग म्यूजिकल जर्नी कंटिन्यूज। इस घंटे पर आपके लिए होगा एवरी टॉप ऑफ द आवर पर न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट, और तुरंत उसके बाद में हम लेकर आ जाएंगे आपके लिए 30 मिनट्स ऑफ नॉनस्टॉप म्यूजिक। आज गानों की लिस्ट देखें तो जुबिन नौटियाल पालक मुशाल है, जायज धामी अदिति सिंह शर्मा है, कुमार शानू, नीरज श्रीधर, तुलसी कुमार, अल्तमाश फरीदी को भी आप सुनेंगे, शाश्वत सचदेव भी है, रफ्तार भी है एक गाने में जो इन द लिस्ट आपके लिए होगा। आप सुनते रहो, मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ। वेलकम टू द शो।

0: पार्टी खत्म, चलो।
1: आपका मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम।
2: You are listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ Unfiltered Drive. सुनना ना भूले पॉडकास्ट की अगर बातें करें तो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बातें होती है. ये इलेक्शन ईयर है तो ड्राइव शो में स्पेशल इलेक्शन सेगमेंट आता है एवरी थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 6 PM, जिसके जरिए आपको तैयार किया जा रहा है और आपके अंडरस्टैंडिंग को और भी बेहतर बनाने के लिए ये सेगमेंट लाया जाता है टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द पॉलिसीज एंड पोजिशंस ऑफ द पार्टी शेपिंग न्यूजीलैंड्स फ्यूचर. तो फर्स्ट एपिसोड में एक्ट पार्टी लीडर डेविड सीमोर रिज़बे और सेंडी के साथ एक ओपन कन्वर्सेशन का हिस्सा बनेंगे अबाउट एक्स पॉलिसीज एंड हिज विजन फॉर न्यूजीलैंड. और ट्रीटी ऑफ वाइटांगी और कमेंट्स मेड बाय परमजीत परमार, इमिग्रेशन के मुद्दों पर बातें होंगी, एक्स प्रपोजल टू फ्रीज द अडल्ट मिनिमम वेज और अदर इश्यूज शेपिंग द कंट्री, इन मुद्दों पर बातें होंगी आपके लिए. तो फिर अनफिल्टर्ड ड्राइव सुनना ना भूले. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और भी पॉडकास्ट के बारे में बातें करेंगे, खासतौर पर ब्रेकफास्ट कैचअप पॉडकास्ट पर बहुत ही जल्दी आपके लिए.

0: Cafe on Hum.
1: You are listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और प्यारे गानों के साथ साथ इंटरेस्टिंग खबरें. वैसे रोवा पर भी आप हम म्यूजिक स्टेशंस का मजा ले पाएंगे. हम रिवाइंड में आपको मिलेगा बॉलीवुड गोल्डन ईरा 60s और 70s के हिट्स. 80s जुकबॉक्स में आपको मिलेंगे 80s ईरा ऑफ बॉलीवुड सॉन्ग्स. और फीजी भजन में आप वर्ल्ड्स फर्स्ट 24/7 फ्री फीजी भजन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को एंजॉय कर पाएंगे, जिसमें भजन फ्रॉम फीजीज बेस्ट आर्टिस्ट एनी टाइम एनी वे आपको मिलेगा. चढ़ती कला पंजाबी हिट्स, बैक टू बैक पंजाबी हिट्स ओनली ऑन रोवा. फिजी कीर्तन संग्रह, बिगर चॉइस ऑफ कीर्तन आर्टिस्ट अब हम फिजी कीर्तन संग्रह में आपको मिलेगा. ये भी हमारा एक हम म्यूजिक स्टेशन है ऑन रोवा. यहाँ पर न्यू पूल ऑफ कीर्तन को एड कर दिया गया है जो आप इंजॉय कर पाएंगे. राहत फतेह अली खान के गाने, लव ऑफ सूफी और कवालीज अगर है आपका तो फिर आप चेकआउट करें म्यूजिक स्टेशन ऑफ राहत फतेह अली खान. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और भी प्यारे गाने आपके लिए.

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम।
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं। अगर आज आपका जन्मदिन है, अ वेरी हैप्पी बर्थडे एवरीवन जिनका आज जन्मदिन है एंड दोज हु आर सेलिब्रेटिंग। आई एम श्योर आज बहुत कुछ घर पर किया गया है या फिर वीकेंड के लिए भी आपने प्लानिंग बनाकर रखा है, तो फिर टीम हम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू विश एवरीवन अ हैप्पी बर्थडे जो ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं। अगर आप आउटसाइड ऑफ न्यूजीलैंड हो या फिर आउटसाइड ऑफ ओकलैंड हो, आप हमें रोवर के जरिए सुन रहे हैं, तो बिग शाउट आउट टू ऑल आवर रोवर लिसनर्स, क्योंकि आपको हम हमेशा याद करते हैं। आप हमसे दूर होकर भी हमें अपने बहुत ही करीब रखते हैं थ्रू रोवर। तो आपके लिए अगला गाना सुनते रहो हम, मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ।

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.nz।
2: There's a new kind of goodness in the pet aisle, Nature's Gift. Discover the new Nature's Gift grain-free range, now in convenient pouches and delicious kibble. Made with real meat, real vegetables and grain-free recipes, it's a natural choice for everyday feeding. So, looking for Nature's goodness? You'll love Nature's Gift. All new look, same great nutrition in supermarkets now. The delicious dog food packed with real goodness. Give them the gift of Nature's Gift grain-free. Discover the range in-store today.
3: Spring just got fresher with these great deals at New World North Island this week. Get avocados, 2 for $2.50, or whole chicken legs, $7.99 per kilo. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
4: 4.95% finance on your next car. Exclusive to West City Auto Group. Right now, get into the Havel Jolion, Havel H6, Tank 300 or Canon Ute range with 4.95% per annum fixed finance for 48 months with just 20% deposit. Whether you're after something stylish, practical, rugged or ready for work, they've got something for everyone. But hurry, this exclusive offer won't last forever. Speak with Jimmy Taylor and team at West City GWM. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
5: The beat of Bollywood.
6: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं
5: है. Night Cafe.
7: You're humming along with Krish on your number one hum, playing Bollywood's biggest hits. Night Cafe आपके लिए जारी है. Breakfast catch-up, ये podcast भी सुनना ना भूले. Topic है Beyond the Debt. What does success actually mean? Vijay और Pooja बातें करेंगे about how society measures success, from home loans to marriage, और Q listeners are redefining what is truly what it truly means to be settled. तो BF text करे 5599 पर, full audio आपको यहाँ पर मिल जाएगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम और भी प्यारे गाने आपके लिए.

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स क्रिश के साथ है हम कीर्तन संग्रह रिकॉर्डिंग ये 25 सितंबर को होने जा रहा है और वैदिक सेंटा में ये होगा पापटोए में रिकॉर्डेड कलाकारों के कीर्तन आप रोवा पर हम फीजी कीर्तन संग्रह पर सुन सकेंगे जॉइन द हम टीम टू सी हाउ इट ऑल हैपेंस एंट्री इज फ्री फॉर ऑल रिफ्रेशमेंट्स और कावा भी यहाँ पर बेचा जाएगा You will also have the opportunity to win prizes. तो यहाँ पर आप पहुँच जाए याद रहे हम कीर्तन संग्रह रिकॉर्डिंग Friday 25 September को वैदिक सेंटर पापटोए में होगी मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ

0: Bollywood.
1: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम.
1: You are listening to number one humpling Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. कुछ सामाजिक सूचना है आपके लिए. श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन में गणेश उत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है. ट्यूजडे 15 सितंबर से लेकर संडे 20 सितंबर के तक सभी धर्म प्रेमियों को सादर आमंत्रण है. और भी जानकारी के लिए आप 09836 4647 पर कांटेक्ट कर सकते हैं. महाप्रसाद हर एक दिन आपके लिए यहाँ पर आयोजित किया गया है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: Cafe on Hum.
1: Breakfast show with Vijay and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very that is a very acceleration.
3: That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This is my fancy English. That's a very.
4: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m. आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो.
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz.
7: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery anywhere in Auckland. Huge side-by-side stainless steel fridge freezer $699. 10kg 9-star energy heat pump dryer $799. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
8: हे नेहा, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट होम. तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
9: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया.
8: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
10: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.
11: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ. बोली, बस मेरा फोकस है.
8: हाँ. अच्छा
11: बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं.
8: मिसेस सिंह.
12: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
13: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
14: राज, रोमांस, एक्शन और सुपर नेचुरल पावर से भरी कहानी, एक थ्रिलिंग फैंटेसी एडवेंचर. द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा, एम तमन्ना.
15: इस वन की काली शक्ति रात के साये से भी काले.
14: द वन रिलीजिंग इन सिनेमास ऑन 25th सितंबर.
16: अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है सब एक नंबर की बकवास.
14: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स. रेटिंग TBC.
17: हमें माता का बुलावा आया है.

0: Coffee on Hum.
1: You are listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और प्यारे गानों के साथ साथ इंटरेस्टिंग खबरें. वैसे रोवा पर भी आप हम म्यूजिक स्टेशंस का मजा ले पाएंगे. हम रिवाइंड में आपको मिलेगा बॉलीवुड्स गोल्डन ईरा 60s और 70s के हिट्स. 80s जुक बॉक्स में आपको मिलेंगे 80s ईरा ऑफ बॉलीवुड सॉन्ग्स. और फीजी भजन में आप वर्ल्ड्स फर्स्ट 24/7 फ्री फीजी भजन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को एंजॉय कर पाएंगे, जिसमें भजन फ्रॉम फीजीज बेस्ट आर्टिस्ट एनी टाइम एनी वे आपको मिलेगा. चढ़ती कला पंजाबी हिट्स, बैक टू बैक पंजाबी हिट्स ओनली ऑन रोवा. फिजी कीर्तन संग्रह, बिगर चॉइस ऑफ कीर्तन आर्टिस्ट अब हम फिजी कीर्तन संग्रह में आपको मिलेगा. ये भी हमारा एक हम म्यूजिक स्टेशन है ऑन रोवा. यहाँ पर न्यू पूल ऑफ कीर्तन को एड कर दिया गया है जो आप इंजॉय कर पाएंगे. राहत फतेह अली खान के गाने, लव ऑफ सूफी और कवालीज अगर है आपका तो फिर आप चेकआउट करें म्यूजिक स्टेशन ऑफ राहत फतेह अली खान. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और भी प्यारे गाने आपके लिए.

नाइट कैफे यहीं पर खत्म होता है दोस्तों, आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा। अब हमारी मुलाकात होती है एक बार फिर कल, आ जाएंगे थर्सडे नाइट रिदम एंड रोमांस लेकर, जिसमें बहुत सारे रोमांटिक और लवली सॉन्ग्स आपके लिए होगा। कृष का बहुत सारा प्यार, नमस्ते।

0: driving you home.
1: Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं है उसको.
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया
3: अभी. ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manuka and Poke Kohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manuka and Poke Kohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.

0: www.dansentertainment.com. www.dansentertainment.com.
1: दूध उबालोगे? दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
1: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
2: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09 2799439 और विजिट लीगल एसोसिएट्स.co.nz।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
1: चूज कीजिए कैसे आप सेव करते हैं विंगर मोटर्स में 3.

0: kilometer vehicle warranty. More ways to save at Winger Motors East Auckland, North Shore and Pukekui or winger.co.nz. On now till 30th September. Credit criteria, fees, T's and C's apply.
1: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है हाँ।
2: अच्छा
1: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
2: मिसेस सिंह
3: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
0: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहूहू कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This
3: record,
2: is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
0: Weekdays, 6 to 10 a.m. राज, रोमांस, एक्शन और सुपर नेचुरल पावर से भरी कहानी, एक थ्रिलिंग फैंटेसी एडवेंचर, द वन, स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा, एम तमन्ना।
5: इस वन की काली शक्तियाँ रात के साए से भी काले हैं।
0: द वन रिलीजिंग इन सिनेमाज ऑन 25th सितंबर।
6: अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है सब एक नंबर की बकवास।
0: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म, रेटिंग TBC।
7: हमें माता का बुलावा आया है।
8: Playing Bollywood's biggest hits.
9: Budget gaane.

0: calm because Punjabi swag is on.
1: Hey, hey,

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: माँ एक चपाती और देना।
3: हाँ, एक चपाती मुझे भी।
4: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा। कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियां पकाएं, खुशियां खिलाएं।
5: Kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
6: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited, trading as Assure One, is a licensed financial advice provider.
7: Reliance Ventilation System.
8: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
7: Moisture और ventilation का problem लगता है।
8: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
7: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
9: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
10: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800 634 234. TCs and lending criteria apply.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800-634-234. TCs and lending criteria apply.
2: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर पूरे शहर पे

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
6: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
7: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
6: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
7: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
8: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.

0: The beat of Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये ये ये ये. सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

उस पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: driving you home?
1: The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं है उसको.
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया
3: अभी. ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manuko and Poke Kohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manuko and Poke Kohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया. घर बेचने को कह रहे थे.
6: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं. डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है.
5: इसीलिए NZPMI से बात कर लो. वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं.
7: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है. आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए. NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस. कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
8: हे नेहा, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट होम. तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
9: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया. मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया.
8: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
10: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है, तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.

0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Monaco.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
2: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑनसाइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑनसाइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए
3: There's a new kind of goodness in the pet aisle. Nature's Gift. Discover the new Nature's Gift grain-free range, now in convenient pouches and delicious kibble. Made with real meat, real vegetables and grain-free recipes, it's a natural choice for everyday feeding. So, looking for Nature's goodness? You'll love Nature's Gift. All new look, same great nutrition in supermarkets now. The delicious dog food packed with real goodness. Give them the gift of Nature's Gift grain-free. Discover the range in store today.
4: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights, 2 lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
5: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
6: Uber drivers, if you already have a claim with Not Your Fault Services, it is moving forward and one of their claims managers will be in touch. If you have not applied, intake 4 is open. Not Your Fault Services phone team is at capacity. So please don't call, apply online instead at nyfservices.com. That's nyfservices.com.
7: दुबई में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा मौका अब न्यूजीलैंड में बिलकैट रियल एस्टेट एंड बीएनडब्ल्यू डेवलपमेंट्स प्रेजेंट्स बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो 26 एंड 27 सितंबर एट जेडब्ल्यू मैरियट ऑकलैंड 10 एएम टू 8 पीएम देखिए दुबई के बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अप टू 20% आरओआई प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स पर 0% टैक्स और क्वालिफाइंग यूनिट्स पर अपफ्रंट डीएलडी डिफर्ड डेवलपर प्रिंसिपल से सीधी बातचीत इन पर्सन रजिस्टर नाउ विजिट bilcaps.com प्रमोटेड बाय वेब टाइगर्स
8: Hum, time check.
9: Brought to you by Mann Tires. For all kinds of tires and mechanical services. Open 7 days. Call Mann Tires on 0800-00010.
10: Good morning, it's Simateek Chibatre hai.
8: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
11: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. The College of Midwives believes more beds are needed to allow for 3 days of postnatal care. The law change will roll out gradually. Spokesperson Alison Eddy says more midwives are also a must.
12: We support the intent of the legislation, but we're also concerned around system capacity. The universal entitlement to a 3-day stay, it places those at risk that might need longer than that.
11: The number of work-related injury claims has dropped. Stats NZ says they fell by almost 12,000 last year. ACC spokesperson James Whittaker says people are becoming more aware of work hazards.
13: We'd like to think that people are aware of their responsibilities as an employer, but also as an employee, and people are realising that injuries don't have to happen.
11: It's feared ratepayers will end up footing the bill as councils scramble with how to fund the rollout of RMA changes. Local Government NZ's Raheet Stoltz says they need confidence the system will be workable.
14: So we expect to have those discussions with the government to have the same principle apply to councils who will be on the front line.
11: Harvey Weinstein has been jailed for 15 years for sexual assault. The disgraced Hollywood producer denies the allegation made by his former assistant, but apologised to anyone he may have hurt. In sport, after more than 3 months out with a leg injury, Lester Faiinganuku returns in Nelson tonight. The All Blacks hybrid has been named on the bench by Tasman coach Jono Phillips for the NPC clash with Bay of Plenty.
15: We're just giving him a clear
0: role on the side of the scrum, and that's really important. It's been a while since he's played.
11: And a trio of Black Ferns frontline players are back on deck for Sunday's test with England at Twickenham. Rugby news with All Blacks travel on hospitality.com. Eden Park Bledisloe Cup hospitality packages selling now.
8: Sports news brought to you by Sona Sansar, Papa Toy, and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
10: Super City, Auckland mein filhal temperature 4.7 degrees hai aaj. High of 14 expected hai. Later today overnight 8 degrees temperature rahega. Aur sunrise jo hai abhi se kareeban 4 minuton mein yani 6-7 am par ye hoga, jabki sunset 6:19 pm par rahega. Mausam ke liye aaj kaha gaya hai ki mainly fine weather rehne wala hai with some morning frosts kuch kuch ilakon mein, aur otherwise it's going to be a beautiful day, bright sunny day from subah se lekar sham tak.
8: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
15: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
8: Breakfast Catch Up.
16: तीन मिनट हो रहे हैं छह बजकर नमस्कार अ वेरी गुड मॉर्निंग स्वागत है आपका वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आज है थर्सडे 24th of September आज की ये सुबह आप सभी को बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो शुभ सुबह की मंगल कामनाएं आपको गुड मॉर्निंग
10: और आप सभी को भी अ वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत सारी शुभकामनाएं थैंक यू सो मच सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए
16: और वादे के अनुसार वादे को निभाने के लिए अब हम आ गए हैं और अभी से लेकर ठीक 10 बजे तक आपके साथ रहेंगे इस प्रोग्राम में जिस दौरान हमेशा की तरह आज भी कोशिश हमारी यही होगी कि आपको फुली इन्फॉर्म्ड और एंटरटेन रखें
10: एब्सोल्युटली शुरुआत तो हम करेंगे डेफिनेटली ब्रेकफास्ट कैचअप के साथ और देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ हमें कैचअप करना है आपको अपडेटेड रखना है ये सारी चीज़ें तो आपके लिए लेकर ही आएंगे बट लेटर इन द शो मॉर्निंग मैडनेस जो है ये भी रहेगा 7 AM to 8 AM के बीच जहाँ पर वी अंडरस्टैंड द मैडनेस कभी कभी हम सुबह सुबह एक्सपीरियंस करते हैं और उसके चलते हाउ डू वी गेट आवर थिंग्स प्लैंड एंड सॉर्टेड इस हिसाब से भी आपके साथ हम डेफिनेटली बने रहेंगे और अपार्ट फ्रॉम दैट 7:30 न्यूज हेडलाइंस जो है ये भी रहेगा उसके साथ साथ आपके लिए आफ्टर 8 हम रश आवर का प्रोग्राम लेकर आएंगे जहां पर व्हाट्स योर टेक आपके लिए रहेगा जिसमें आप हमारे साथ ज़रूर लाइव होने या कॉल करते हुए पार्ट ले सकेंगे सो डेफिनेटली आज पूरे दिन भर का जो प्रोग्राम है ये हमने प्लान कर रखा हुआ है जिसके लिए वी जस्ट नीड योर साथ योर सपोर्ट ताकि आज के सफ़र की शुरुआत जो है ये हम आपके साथ अच्छे तरीके से कर सकें 15 या 5 मिनट हो रहे हैं फिलहाल 6 बजकर और चलिए आज का पहला गाना आपके नाम हम शामिल कर रहे हैं

0: Pinterest पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशन होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: स्प्रिंग जस्ट गॉट फ्रेशर विद दीस ग्रेट डील्स एट न्यू वर्ल्ड नॉर्थ आइलैंड दिस वीक। Get avocados 2 for $2.50 or whole chicken legs $7.99 per kilo. Now that's new world value. Sizes, limits, exclusions apply.
3: Briscoe's half price birthday blowout is on now with half price off the entire store. That's right, every single item in store nationwide is half price. All stores open till 9 tonight. Plus, we're giving away $25,000 cash.
4: See online for TZs and exclusions.
5: Professional Financials hai saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
6: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process so simple and frank.
5: Business finance ya income protection. हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाएं।
6: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
7: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
8: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
0: The beat of Bollywood.
9: World's best, hamari koi branch nahi hai.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau. Global headlines.
11: Subah ke mukhya samacharon mein. ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेजेशियान ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में दावा किया कि ईरान अमेरिका के प्रेशर और सैंक्शंस के आगे कभी नहीं झुकेगा और उन्होंने मिलिट्री पावर के बजाय डिप्लोमेसी और ट्रू पीस के लिए दुनिया से एक साथ आने की अपील की है। दूसरी तरफ यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि असेंबली में हुई यूएस ईरान टॉक्स से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिला है और पुराना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अब खत्म हो चुका है। उन्होंने साफ किया है कि यूएस का सबसे बड़ा एम ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना है, लेकिन ईरान के इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के कारण किसी कॉन्क्रीट अग्रीमेंट पर पहुँचना हमेशा मुश्किल रहता है। उधर ओमान कोस्ट के पास कॉमर्शियल शिप MV केप डाओ पर हुए टोपीडो अटैक में उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक इंडियन सी फेरा की मौत हो गई है। वेसल पर टोटल 20 इंडियन नेशनल समेत 28 क्रू मेंबर्स सवार थे, जिनमें से 19 इंडियंस को सेफ रेस्क्यू कर लिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस अटैक की कड़ी निंदा करते हुए कॉमर्शियल शिपिंग पर हो रहे अटैक्स को चिंताजनक बताया है और ओमान अथॉरिटीज के साथ मिलकर रेस्क्यू क्रू की घर वापसी की कोशिश शुरू कर दी है। फिजी के सुवा हाई कोर्ट हाउस एग्जिबिट रूम से 7 बार कोकेन गायब होने के मामले में एक्टिंग अटॉर्नी जनरल सिरोमी तुरंगा ने एक इंडिपेंडेंट और रिगरस पुलिस CID इन्वेस्टिगेशन की पुष्टि की है। फिजी विलेज की एक रिपोर्ट के अनुसार तुरंगा ने कहा कि कोर्ट एग्जिबिट्स की सिक्योरिटी और पब्लिक ट्रस्ट बनाए रखना बेहद ज़रूरी है और एग्जेक्टिव

0: रविवार को 7 बजे पापुआ न्यूगिनी के खिलाफ होगा। एशियन गेम्स 2026 के पूल ए मैच में डिफेंडिंग चैंपियंस इंडिया ने श्रीलंका को हॉकी के एक मैच में 16-1 से हराया। भारत की तरफ से जुगराज सिंह ने 4 गोल्स बनाए जबकि अभिषेक और दिलप्रीत सिंह ने हैट्रिक्स बनाई। इंडोनेशिया को 13-1 से हराने के बाद अब इंडियन मेंस हॉकी टीम का अगला मुकाबला साउथ कोरिया के खिलाफ होगा। इस मैच पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
1: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड
2: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ
3: मैं लाऊं अपना ए गेम
1: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: है एवरीडे ड्राइविंग के लिए स्मार्टर चॉइस. विजिट विंगर मोटर्स वेस्ट ऑकलैंड ग्रीन लेन और पुकेकोई और winger.co.nz. ऑफर एंड सितंबर 30th.
1: हे नेहा, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट होम. तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
2: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया.
1: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
3: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.
4: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
5: Busy subha ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try. Aapke nazdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
6: दुबई में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा मौका अब न्यूजीलैंड में. बिलकैट रियल एस्टेट एंड बीएनडब्ल्यू डेवलपमेंट्स प्रेजेंट्स बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो 26 एंड 27 सितंबर एट जेडब्ल्यू मैरियट ऑकलैंड 10 AM टू 8 PM. देखिए दुबई के बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अप टू 20% ROI, प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स पर 0% टैक्स और क्वालिफाइंग यूनिट्स पर अप फ्रंट DLD डिफर्ड. डेवलपर प्रिंसिपल से सीधी बातचीत इन पर्सन. रजिस्टर नाउ. विजिट bilcaps.com. प्रमोटेड बाय वेब टाइगर्स.
7: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने.
8: ले ले
9: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा.
10: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल. ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एट हैरिंगटन लिविंग मोनाको. बिग ऑन स्टाइल, ग्रेट ऑन प्राइस, परफेक्ट फॉर योर होम. हैरिंगटन लिविंग मोनाको.
11: 30 मिनट हो रहे इस समय हमारे स्टूडियोज में. 6 बजकर आज है थर्सडे द 24th of September. आज की सुबह सभी के नाम करने से पहले या आगे बढ़ने से पहले माफ कीजिएगा, गुड मॉर्निंग के कुछ मैसेजेस हमारे पास आए हैं तो वेरी क्विकली हैविंग अ लुक एट दोज मैसेजेस. सबसे पहले आज मिस्टर माटा माटा का मैसेज आया. उन्होंने कहा राम राम, हैप्पी थर्सडे एवरीवन, हैव अ गुड डे.
12: ये सुबह मुबारक हो आपको और उनके साथ. आज गुड मॉर्निंग एंड नमस्कारम विजय पूजा एंड ऑल लिसनर्स ऑफ हम. हैव अ हैप्पी एंड ब्यूटीफुल डे. रवनेश मुदुलियार, आपको भी ये सुबह बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो.
11: और इसके अलावा आज बॉबी मान जी, इन्होंने भी अपना गुड मॉर्निंग मैसेज जो है ये हमारे पास सेंड किया है. इन्होंने कहा है जय साई राम, पूजा एंड विजय, गुड मॉर्निंग, हैप्पी थर्सडे, साईं ब्लेसिंग्स. सो थैंक यू सो मच बॉबी जी आपके भी साथ और मैसेज के लिए. इधर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, जबकि आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं दिस इज ब्रेकफास्ट कैचअप, जहाँ पर हम आपको मिलकर एक साथ कैचअप जो है ये करते हैं कई तरह की चीज़ों के साथ. तो अभी बॉलीवुड में क्या हुआ ये तो आपने सुना दिया लोगों को, बट अच्छा नहीं सुनाया?
12: नहीं नहीं.
11: ओह, मैं तो कॉफ़ी बनाने गई थी ना, मुझे क्या पता. हाँ. मुझे लगा कि शायद आपने बता दिया हो कि क्या कुछ हुआ है बॉलीवुड में. तो चलिए पहले वो बता दें आप.
12: वैसे धर्मा प्रोडक्शन और सिक्या एंटरटेनमेंट की पेशकश आ रही है, तैयारियां जबरदस्त चल रही हैं. आयुष्मान खुराना और सारा अली खान.
11: अच्छा ये कौन सी फिल्म साथ कर रहे हैं?
12: उड़ता तीर.
11: वो नहीं पता मुझे.
12: उड़ता तीर जो है, इस फिल्म का ट्रेलर अब निकल चुका है और फर्स्ट लुक आपको मिल सकता है. अपकमिंग कॉमेडी एंटरटेनर है और इस फिल्म को लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं. इस फिल्म के साथ आकाश कौशिक ये डेब्यू कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर और काफ़ी फास्ट पेस्ड नैरेटिव और कॉमिक सिचुएशन, साथ में एक्शन सिक्वेंसेस जो है ये भी ट्रेलर में आपको देखने को मिलेंगे. और आयुष्मान खुराना, सारा अली खान के साथ इस फिल्म में राहुल बोस, राम कपूर, गुलशन ग्रोवर, मुकुल देव, रघुबीर यादव, ब्रिजेंद्र काला और सुप्रिया पिलगांवकर जैसे कई कलाकार जो है ये काम कर रहे हैं. और ये कोलैबोरेशन है धर्मा प्रोडक्शंस और सिक्या एंटरटेनमेंट के बीच. और आयुष्मान खुराना जो है एक और थिएट्रिकल प्रोजेक्ट जो है इसमें अब नज़र आने वाले हैं. और ट्रेलर जबकि रिलीज हो चुका है तो अब जो थिएट्रिकल कैंपेन है October 9th को आई थिंक ये फिल्म रिलीज होने को है, तो उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं.
11: वेरी इंटरेस्टिंग. तो इतनी सारी मूवीज़ जो है ये आ रही है ना आजकल, और मूवीज के साथ साथ इतने सारे वेब सीरीज वगैरह जो ये भी आ रहे हैं, मतलब ऑप्शंस बहुत है आपके पास. और ऑफ कोर्स अगर आप भी इस को लुक फोर्ड कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी है वंस इट रिलीजेस, तो आप ज़रूर इसका मज़ा ले सकते हैं. आज वैसे 24th of September है, और 24th of September को अगर देखा जाए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है ये मार्क की जा रही हैं. आज वैसे मार्क किया जा रहा है वर्ल्ड मैरिटाइम डे, साथ ही साथ इस सेलिब्रेशन के साथ अगर देखा जाए तो आज इनफैक्ट वर्ल्ड मैरिटाइम डे के साथ साथ वर्ल्ड बॉलीवुड डे जो है ये भी मार्क किया जा रहा है.
12: तमाम चीज़ें हैं जो आज आप जिसका हिस्सा बन सकते हैं वर्ल्ड बॉलीवुड डे. इसके अलावा आज मोफोंगो डे ये मार्क किया जाता है.
11: मोफोंगो क्या होता है?
12: मोफोंगो जो है पुर्तोरिको का एक बहुत ही लाजवाब डिश होता है. और ये जो डिश है इसमें गार्लिक, पोर्क क्रैकलिंग्स, कई सीजनिंग्स वगैरह जो है ये इस्तेमाल किए जाते हैं. इट्स वेरी वेरी पॉपुलर. तो इसको आज ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है. और साथ में जो एनिमल लवर्स हैं, यू कैन वॉलंटियर एट एन एनिमल शेल्टर, या फिर खुद आप किसी एक पेट की देखभाल जो है ये कर सकते हैं रिमेंबर मी थर्सडे में.
11: ओके, वेरी नाइस. सो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं और डेफिनेटली इन सारी सेलिब्रेशंस में हम और आप एक साथ बने रहेंगे. फिलहाल चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए, बारी है आज का हमारा पहला बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे जो है ये गेस करने का सवाल. आज वर्ल्ड बॉलीवुड डे भी है, तो इट्स अ वेरी गुड डे टू मार्क ऑल दीज थिंग्स साथ में सेलिब्रेट करते हुए. और क्वेश्चन का आंसर जो है ये भी आप हमें दे सकते हैं 5599 पर टेक्स्ट करते हुए. कुछ एलिमेंट्स है मूवी के जो हम आपको डिस्क्राइब करेंगे, और फिर उसके बाद आपको बस गेस करना है. आई मीन इट्स सिंपली लाइक व्हाट वी हैव बीन डूइंग पिछले कुछ दिनों से, जहाँ पर हम आपको एक मूवी के तीन एलिमेंट्स बताते हैं और फिर उसके हिसाब से आप गेस करते हैं कि हम किस फिल्म के बारे में बातें कर रहे हैं. तो आज के जो थ्री एलिमेंट्स हैं फॉर आवर बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे, द फर्स्ट वन इज मूछे, सेकेंड वन इज बिजली विभाग यानी कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और डिपार्टमेंट होगा ना विभाग. और तीसरा इज डांस कंपटीशन.
12: डांस कंपटीशन,
11: यस.
12: ओके,
11: मूछे,
12: हाँ,
11: बिजली विभाग और साथ में डांस कंपटीशन. दीज आर द थ्री एलिमेंट्स जो हमने आपको दे दिए हैं. अब इसके हिसाब से आपको अनुमान लगाना है कि आज की हमारी बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे कौन सी मूवी है. अगर आपको लगता है कि यू हैव गॉट द आंसर, ऑल यू नीड टू डू इज BF लिखना है सबसे पहले, फिर आपका आंसर, और फिर आपका नाम, और 5599 पर आपको ये सेंड कर देना है. याद रहे आपके लिए द ब्रेकफास्ट शो विद विजयन पूजा हम लेकर आते हैं फॉर्च्यून और साथ में हैरिंगटन लिविंग की ओर से. तो आप हमारे साथ जबकि जुड़े हैं, आज बहुत ही बेहतरीन मौके भी आपको हम देने वाले हैं विजेता बनने की, क्योंकि फॉर्च्यून की ओर से हमारे पास $251 वर्थ शॉपिंग वाउचर्स है. एक नहीं लेकिन दो शॉपिंग वाउचर्स हैं जो हम दो अलग अलग लोगों को आज ऑन द ब्रेकफास्ट शो गिव अवे करने वाले हैं.
8: From the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your

0: फिलहाल 20 मिनट बाकी है समय हमारे स्टूडियोज में वैसे सुबह 7 बजने में, और ठीक 7 पर आपके लिए न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट जो है ये हम लेकर आएंगे। वैसे थोड़ी देर बाद आपके साथ शेयर करेंगे द कूलेस्ट एंड क्वैकीस्ट, ऐसे कुछ टॉप 50 प्लेसेस इन द वर्ल्ड जहाँ कहा जाता है कि लोगों को विजिट करना चाहिए एटलीस्ट एक बार। और कमाल की बात ये है कि इस लिस्ट में न्यूजीलैंड की दो जगहें जो है ये शामिल है। टू डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम न्यूजीलैंड जो है इस लिस्ट का हिस्सा है। लोनली प्लैनेट इन्होंने ये लिस्ट जो है ये रिलीज किया है बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन 2027। और उस लिस्ट में ये कौन से दो शहर हैं न्यूजीलैंड के जो शामिल हैं ये आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले आज हमने जो सवाल पूछा है मुझे लगा था काफ़ी इजी बिकॉज इट्स क्वाइट अ पॉपुलर मूवी, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद आपको पहचानने में थोड़ी डिफिकल्टी हो। अभी तक रोनल्ड है, चरण है, कैरल है, साथ में सनीवेल से अशमीत है, सोम ने भी अपना मैसेज भेजा है, दविंदर सिंह जी है, नितिका है, और हरमिल आपका भी मैसेज जो है ये आया है।
1: सो थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए। आप भी कोशिश कर सकते हैं क्लूज जो है कि हमने आपको दिए हैं, और अब आप ट्राई करें देखें।
0: द थ्री एलिमेंट्स जो हमने मेंशन किया है दैट यू हैव टू यू नो इसके हिसाब से एवेल्युएट करते हुए गेस कि आज की हमारी बॉलीवुड मूवी कौन सी मूवी है। सबसे पहला इज मूछे यानी कि मुस्टैश।
1: मुस्टैश
0: हाँ मुस्टैश मुस्टैच
1: मुस्टाच
0: मुस्टाच मुस्टाच ओके तो सबसे पहला मूछे, दूसरा इज बिजली विभाग यानी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, और तीसरा इज डांस कॉम्पिटिशन। दीज आर द थ्री एलिमेंट्स जिसके हिसाब से आपको अनुमान लगाना है कि ये कौन सी मूवी हो सकती है। और अगर आपके पास आंसर है तो आप BF स्पेस आंसर ये नेम 5599 पर हमारे पास टेक्स्ट कर सकते हैं। Breakfast show with Vijay and Pooja. Chup ho jao papi ho, chup ho jao.

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Accurate traffic.
2: Kogan washes at a price that won't send you into a spin.
3: Final day today, but a little cooler, a high of 16. Into the city, Northern Motorway, 20 minutes, Constellation Drive to town, 38 from Silverdale. Slow at Silverdale, Constellation to Sunnynook and at Esmond. Northwestern, 28 Massey to town. Slow even heavy to Aotearoa to Point Chef, partly due to sunstrike, and then slow close to the city. Southern 27 in from Monaco, slow Papakura to Papatoetoe and at Penrose.
2: Shop Kogan washes and dryers now at Mighty 8.
4: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला, रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
5: Auckland, are you emergency ready? If the unexpected strikes, do you know what to do? Make an emergency plan this daylight saving weekend. Brought to you by Auckland Emergency Management. Make your plan at aem.govt.nz.
6: Grab your friends and whānau, pull out your pinkest outfits and join Pink Ribbon Walk this October. Walk together, have some fun and show your support for people affected by breast cancer across New Zealand. Get tickets now at pinkribbonwalk.co.nz.
4: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
7: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
7: Breakfast catch up. Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
9: 14 मिनट बाकी इस समय हमारी स्टूडियोज में 7 बजने में। फिलहाल द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, एंड टुडे इज थर्सडे द 24th ऑफ सितंबर।
10: और बस थोड़ी देर बाद न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट जो है ये हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं इस प्रोग्राम में। एंड कई इंटरेस्टिंग चीजें जो है ये हो रही हैं, खबरें जो है ये सामने आ रही हैं, इनके बारे में भी डिटेल्स बारी बारी से ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा हम आपको देते रहेंगे। डोंट फॉरगेट, वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद तकरीबन 90 डेज हो चुके हैं। ऑल वाइट्स जो हैं ये आज वापस मैदान लेने वाले हैं, एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज आज 12 खिलाड़ी ऐसे हैं जो स्क्वाड में शामिल नहीं होंगे। दीज 12 प्लेयर्स फीचर्ड फॉर द ऑल वाइट्स एट द वर्ल्ड कप।
9: ओह रियली?
10: उनमें से 12 प्लेयर्स नहीं होंगे, और ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने जा रहा है आज। और इस ये मैच जो है इसके बारे में डिटेल 7:30 बजे न्यूज हेडलाइंस में हम आपको देंगे।
9: ठीक है, तो आप अच्छे से सुनिएगा और बाकी डिटेल्स जो है वहाँ पर आपके लिए हम जरूर शेयर करने वाले हैं। पर फिलहाल हमने आपसे जो सवाल पूछा था उसे यहीं पर अब हम रैप अप कर रहे हैं। वी कैन सी अ फ्यू पीपल स्ट्रगलिंग, सो इसे ज्यादा लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं। अश्मिता कुमार ने अपना मैसेज भेजा है, ज्योति का आंसर आया है, अयान अली इन्होंने भी अपना आंसर भेजा है, साथ में जो एक्टर्स हैं मूवी में उनका नाम भी मैंशन किया है, प्रीति का भी जवाब जो है ये आया है। सो सबसे पहले जवाब बताते हैं, आज हमने आपसे कहा था कि जो हमारी बॉलीवुड मूवी आपको गेस्ट करनी है, द थ्री एलिमेंट्स वी प्रोवाइडेड वॉज मूछे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट यानी बिजली विभाग, और साथ में डांस कॉम्पिटिशन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन वुड बी, क्या लगता है आपको?
10: पता नहीं,
9: रब ने बना दी जोड़ी इज एब्सोल्युटली करेक्ट.
10: या आई नीड इट.
9: जो ज्यादातर लोगों ने हमारे पास मैसेजेस भेजे. एंड ये फिल्म जो है 2008 दिसंबर महीने में रिलीज हुई थी. अनुष्का शर्मा की पहली फिल्म थी जो उन्होंने की थी.
10: हाँ.
9: और इस फिल्म के बारे में यही कह सकते हैं कि लाइक जो डिस्गाइज शाहरुख खान लेते हैं एक डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करने के लिए, सिर्फ एक मूंछ का डिफरेंस जो है ये होता है. There is nothing else that he changes. Of course, hairstyle बदलता है, but एक मूछ जो है वो naturally इनके एक character के पास होता है, दूसरे character के पास नहीं होता, तो सिर्फ मूछ ही remove करते हैं. तो इसीलिए मूछ was one of those elements. Anyways, तो रब ने बना दी जोड़ी is absolutely correct. Now moving on, हमने कहा था आपके साथ share करेंगे Lonely Planet जिन्होंने officially release किया है Best in Travel 2027 का list, और इसमें 25 destinations जो है ये इन्होंने mention किए हैं, which is worth experiencing. तो पहले तो मैं आपको बता दूं, मालदीव्स एक जगह है, फुलिडू, यहाँ पर इन्होंने इसे मेंशन किया है इज द 25th प्लेस ऑन द लिस्ट. जिसके बाद डेनांग है वियतनाम में, 23 पर है गुजरात इंडिया में.
10: ओके.
9: फिर उसके बाद 22 पर है चेंगडू चाइना में, ओकिनावा जापान में 21 पर है, न्यू कैलिडोनिया साउथ पैसिफिक में नंबर 20 पर है, और द ट्वीड ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है, ये नंबर 19 पर है. बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस इज द ओनली प्लेस जो मेंशन किया गया है न्यूजीलैंड में, और ये नंबर 18 पोजीशन पर है इस लिस्ट में, विच इज डनीडन एंड वाइटाकी. तो डनीडन एंड वाइटाकी जो है दे मेड टू द लिस्ट. डनीडन के बारे में कहा गया है कि ये जो लिस्ट बनी है इसके हिसाब से कहा गया है कि दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफर्स ऑफ बीट कीवी चार्म, जिसमें डनीडन, ओमरू और भी अलग अलग डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स जो है शामिल है इस पर्टिकुलर रीजन के, और स्पेशली साउथ आइलैंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये. अगर इसे देखा जाए तो इट्स लाइक वन ऑफ द कूलेस्ट क्वैकीएस्ट प्लेसेस जिसे विजिट करना चाहिए इफ़ यू विजिट न्यूजीलैंड, या फिर अगर आप न्यूजीलैंड में रहते हैं तो. यहाँ पर ऐसी ऐसी स्टोरीज जो है ये सामने आई है, जैसे एक टू हेडेड काफ, दो सिर वाला बछड़ा, जो है गाय का बछड़ा. उसके अलावा ममीफाइड कैट, ग्रेवयार्ड टूर्स यहाँ पर किए जाते हैं, स्टेम पंक, और साथ में वर्ल्ड का जो रेयरेस्ट पेंगुइन है ये भी यहाँ पर मिलता है. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में कह सकते हैं कि डनीडन और अमरू जैसी जगह जो है ये लोगों को ऑफर करते हैं, जो दुनिया में कहीं किसी को नहीं मिलता. इनफैक्ट डनीडन का म्यूजियम ऑफ नेचुरल मिस्ट्री जो है ये भी बहुत पॉपुलर है. So I've never been to Dunedin and I don't really know कि ये म्यूजियम ऑफ नेचुरल मिस्ट्री है क्या, पर अगर आप गए हैं आपको पता होगा. नहीं गए हैं probably this school holidays you can plan something ना.
10: जा सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं इन चीज़ों को अगर आप चाहें तो.
9: वैसे इस लिस्ट में नंबर 1 पोजिशन पर है कैनेडा में एक जगह, क्यूबेक मेरे ख्याल से. ये एक जगह है जो लिस्ट किया गया है इज द टॉप प्लेस इन द वर्ल्ड जिसे 2027 में विजिट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू लोनली प्लैनेट का ये लिस्ट. बट इट्स काइंड अ वेरी प्राउड मोमेंट कि एटलीस्ट न्यूजीलैंड की जगह जो है ये मेंशन की गई है. आई थिंक न्यूजीलैंड के बारे में जब भी कोई बात करता है तो क्वींसटाउन इज दैट वन मेंशन जो हमेशा होता है, स्पेशली साउथ आइलैंड जब इसके बारे में बातें होती है. बट टॉकिंग अबाउट एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और रीजन और सिटी इन साउथ आइलैंड जिसके बारे में कह सकते हैं कि इतना मेंशन नहीं मिलता इसको, इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज अगर किया जाए तो बहुत अच्छी बात है ना.
10: बिल्कुल, और इट पुट्स अस अप ऑन द ग्लोबल मैप अगेंस्ट सम वेरी वेरी बिग कंट्रीज जहाँ पर टूरिज्म जो है काफ़ी बड़ा होता है, तो उस लिस्ट में हमारा भी नाम आ जाता है.
9: राइट, फिलहाल चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए बारी है आज के हमारे पहले थ्रोबैक की. इस थ्रोबैक का मजा उठाते हैं जिसके बाद आपके लिए ठीक 7 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट हम लेकर आएंगे, और फिर अगले घंटे रहेगा मॉर्निंग मैडनेस.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: सुपर सिटी ऑकलैंड में आज का मौसम बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है थ्रू आउट द डे. आज बहुत ही खूबसूरत ब्राइट सनी वेदर जो है ये रहेगा. सनसेट तो 6:19 PM पर होगा. करंट टेम्परेचर अगर देखा जाए 6.3 degrees है. बहुत स्लोली टेम्परेचर जो है ये ऊपर जा रहा है और हाई 14 आज एक्सपेक्टेड है. ओवरनाइट टेम्परेचर 8 degrees रहेगा आज.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.

0: Sports Experience. Call 0800 634 234.
1: गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। 3 मिनट हो रहे हैं समय हमारे स्टूडियोज में 7 बजकर और आज है थर्सडे द 24th of September। दिस इज मॉर्निंग मैडनेस
2: और इस घंटे थोड़ी ही देर में वेरी हैप्पी बर्थडे विश करेंगे आपकी शादी की सालगिरह की खुशियों में हम शामिल होंगे। आज जितने भी लोग अपना स्पेशल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर मैसेजेस आपने नहीं भेजे हैं हमारे पास, वक्त है आपके पास 5599 पर अपने मैसेजेस जो हैं प्लीज आप हमें जरूर भेज दें,
1: समय से पहले भेज दें ताकि वी डोंट मिस आउट ऑन इट। और ऐसा ना हो कि आप इंतजार कर रहे हैं कि अच्छा 7:40 के राउंड जब बर्थडे ग्रीटिंग होगा तो हम आपको विश करेंगे, बट सरप्राइजिंगली योर मैसेजेस have not reached us on time। तो आप जरूर ध्यान दीजिए और समय से पहले अपने मैसेजेस जो है ये सेंड कर सकते हैं आप ऑन 5599। फिलहाल चलिए मॉर्निंग मैडनेस की शुरुआत जबकि आप सभी के साथ हम कर रहे हैं, तो इस घंटे थोड़ी देर बाद आज आपका राशि वाइब हम लेकर आएंगे, एज इन आपका दिन कैसा रहेगा अकॉर्डिंग टू हॉरोस्कोप्स, ये हम आपको बताएंगे।
2: और साथ ही में इनाम जीतने के मौके जो है ये भी आपके लिए बारी बारी से इस प्रोग्राम में होंगे। और जैसे आपने पहले भी बताया है कि एक बार फिर आज मौका होगा फॉर्च्यून की ओर से, आप में से दो लोग होंगे जिनको $251 लागत का जो ग्रॉसरी शॉपिंग वाउचर है ये जीतने का मौका आपको मिलेगा, क्योंकि फॉर्च्यून जो है ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं एंड ओवर 10 वीक्स जो है ये इनाम देने वाले हैं ना,
1: सेवन वीक्स
2: में $101 का जो शॉपिंग वाउचर है ये जीतने का मौका है आपके
1: पास, 10 विनर्स के पास पर वीक।
2: नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट नोट शो और साथ में लोटस सुपरमार्केट्स माउंट रॉस्किल मेनुकाउ और फ्लैटबुश में आप शॉपिंग करें फॉर्च्यून या सिंपली ब्रांड के दो प्रोडक्ट्स खरीदें, रिसीट के पीछे अपना नाम पता लिखें, एंट्री बिन में डालें और आप ड्रो में शामिल हो जाएंगे और साथ में आप उसके ऊपर एक और इनाम जीतने का मौका भी आपके पास है।
1: जितने लोग इस कंपटीशन में पार्ट लेंगे जो जहाँ पर बेसिकली यू नो शॉपिंग करेंगे फॉर्च्यून का कोई भी दो प्रोडक्ट या सिंपली का कोई दो प्रोडक्ट और शॉपिंग करने के बाद इसे कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, अगर आप ये $101 का जो वाउचर है ओवर दी 7 वीक्स जीतते हैं तो वहाँ पर आपका विनिंग स्ट्रीक जो है ये ख़त्म नहीं होता है। देयर इज़ अनदर अपॉर्चुनिटी क्योंकि आप में से किसी एक को एक मौका मिलेगा एक $501 का ट्रॉली डैश जो ये जीतने का, नॉट वन बट दो लोगों को ये मौका मिलेगा।
2: हाँ, एक नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट और दूसरे जो होंगे वो लोटस सुपरमार्केट के लिए ये वाउचर जीतेंगे। सो बिग प्राइजेस और साथ ही में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। इनफैक्ट आज थर्सडे है, थर्सडे फ्राइडे और मंडे विद इन दिस 3 डेज Over $1,000 worth of grocery shopping vouchers जो है कि हम आपको देने वाले हैं।
1: So imagine हम आपके लिए इतनी सारी चीजें ऑलरेडी लेकर आ चुके हैं, अब आपको बस एक छोटी सी चीज करनी है, वो है ये कि जब और जैसे हम आपको ये अपॉर्चुनिटीज दे आप इसका फायदा जरूर उठाइए, कॉम्पिटिशन में पार्ट लीजिए, जीतने के लिए एटलीस्ट अपनी एंट्रीज जो है ये हमारे साथ रजिस्टर जरूर कराइए, बिकॉज इफ यू डोंट गेट दैट डन तो फिर जीतने का सवाल ही नहीं उठता ना।
2: बिल्कुल नहीं उठता। आप ऐसा करें अभी जाए हमारे फेसबुक पेज पर, जितने लोग अभी हमें आप में से सुन रहे हैं आपके पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी, यू विजिट आवर फेसबुक पेज, वहां पर एक पोस्ट आपको मिलेगा जो आज सुबह डाला गया है। उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में आप जिस भी माध्यम से हमें सुन रहे हैं, चाहे अपने रेडियो पर सुन रहे हैं चाहे रोवा पर सुन रहे हैं, उसका बस एक स्क्रीनशॉट आप डाल दें।
1: ओके, सो व्हिचएवर वे यू आर लिसनिंग टू अस, अगर अपने रोवा पर लॉगिन करते हुए सुन रहे हैं तो जो भी स्क्रीनशॉट है उसका वो आपको पोस्ट करना है। If you're listening to us 104.2 frequency के जरिए किसी रेडियो के थ्रू, चाहे गाड़ी का रेडियो हो या घर पर आपने या ऑफिस में कहीं पर रेडियो रखा है, तो उसकी एक फोटो लेकर आप वहां पर डाल दें एंड एक विनर बेसिकली हम यहां से भी ड्रॉ करेंगे।
2: वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी जितना बता रहे उतना तो करना पड़ेगा आपको ना।
1: हाँ, तो कंपटीशन में पार्ट जरूर लीजिए ताकि अपॉर्चुनिटी आपको मिले टू बी द विनर एटलीस्ट। फिलहाल 7 मिनट हो रहे हैं 7 बजकर, थोड़ी देर बाद राशि वाइब्स एंड रिमेम्बर आज का सेलिब्रिटी अलार्म भी खेलेंगे आपके साथ।

0: 1234.
1: Rashi Vibes.
2: तो कैसा रहेगा आज का आपका दिन? सबसे पहले मेष यानी एरीज, आज आपके लिए कहा गया है कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, बिजनेस में कुछ तेजी देखेंगे आप आफ्टर मिड डे, कोई बड़ा फायदा आपको हो सकता है और रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है।
3: वृषणी टॉरस, आपके लिए कहा गया है कि एक प्रैक्टिकल डिसीजन आज आपका पूरा का पूरा दिन आसान बना देगा, अपनी प्रायोरिटीज को क्लियर रखें, डोंट लेट किसी और की एजेंसी आपकी प्रॉब्लम बन जाए, ऐसा कुछ आप ना करें। ध्यान दीजिए कि आप खुद का काम जो है ये पहले कर रहे हैं किसी और के काम करने से पहले।
2: और उसके बाद मिथुन यानी जेमिनी, आज ऑफिस में हैं तो आज सिचुएशंस आपके फेवर में जाएंगे एंड यू विल बी वेरी रिलीव्ड अबाउट इट। किस्मत का साथ मिलने से रुके हुए काम धीरे धीरे पूरे होंगे और आज फाइनेंशियली भी आपका दिन जो है ये सुधरेगा।
3: और उसके बाद कर्क ने कैंसर, आपके लिए कहा गया है कि आज एक ऐसा दिन है जहाँ खुद के वेलबींग पर फोकस करना आपको जरूर चाहिए। इट्स अ वेरी गुड डे, इट विल रिफ्लेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। और साथ में आपके लिए कहा गया है कि अगर खुद को आप स्पेस दे रहे हैं एंड किसी को आप किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं तो इसके लिए गिल्टी बिल्कुल भी ना फील करें।
2: सिंह यानी लियो, आज इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है, हेल्थ बढ़िया रहेगा, काफी फ्रेश और एनर्जेटिक आज आप फील करेंगे।
3: और उसके बाद आज करियर यानी वर्गो, आपके लिए कहा गया है कि एक ऐसा काम जो इतने दिनों से पड़ा हुआ था फाइनली आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं, एंड वंस इट्स डन तो कुछ नई चीज़ करने के लिए आपको टाइम भी मिलेगा और हो सकता है कि ये जो नई चीज़ आपके लिए फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी साबित हो।
2: तुला यानी लिब्रा, सिर दर्द या थकावट की वजह से आज आपको परेशानी हो सकती है, रिक्वायर्ड रेस्ट आज आप जरूर ले। आज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दूसरों के इमोशंस का आप सम्मान करें अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी भावनाओं का सम्मान करे, और साथ में आज कुछ नए एक्सपीरियंसेस जो है ये भी आपको मिलेंगे।
3: और उसके साथ अगर देखा जाए तो आज वैसे बताया जा रहा है वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो के लिए कि आज का ये जो दिन है कुछ ऐसा है, आपको फीलिंग आएगी कि अरे ये तो सब पहले हो चुका है, लाइक समथिंग ऐसी आप ज़रूर चीज़ें नोटिस करेंगे कि ये पहले हो गया है, ये आपने पहले एक्सपीरियंस किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्चुअली इट हैपेंड। टेक योर टाइम, आस्क योर क्वेश्चन, अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा रखें एंड देन रीच टू अ कंक्लूजन। और हो सकता है कि ये कन्फ्यूजन जो है कुछ एक्सटेंड तक आपके लिए बड़े बाकी मामलों में भी, पर उसे क्लियर आउट करने में आज जितना समय आपको लेना है लीजिए, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट विल हेल्प यू मेक द राइट डिसीजन लॉन्ग टर्म में।
2: आज आपके लिए कहा गया है छोटे ट्रेवल जो है जिस पर आप जाएंगे इससे आपको फायदा हो सकता है, आज ऑफिस में काफी सपोर्ट आपको मिलेगा, हेल्थ भी बढ़िया रहेगा।
3: और उसके बाद मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आपका डिटर्मिनेशन आज काफ़ी पे ऑफ करेगा, अपने काम को बहुत ही मज़े से आप कर रहे हैं, आपने अपने सारे के सारे दिन को पूरा प्लान आउट कर लिया है क्या करना है कैसे करना है, यू हैव वर्कड आउट अ वे कि कैसे आप अपने गोल्स तक पहुंचेंगे एंड दिस इज़ बेसिकली व्हाट इज़ वर्किंग फॉर।

0: थोड़ी देर बाद आपके लिए लेकर आएंगे आज का हमारा सेलिब्रिटी अलार्म। होपफुली आप इसके लिए तैयार हैं।
1: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
2: चुप हो जाओ पापी, चुप हो जाओ।
1: कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन।

0: idea. Streaming on Rover.
1: A lot of injuries happen on the weekend. So if you're out and about, or just out in the backyard, have a and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
2: Hungry? Feel like pasta? Or a pie? How about pasta in a pie? Zed's new beef brisket mac and cheese pie is what you need. Head to Zed and for only $7.50, you can grab a delicious beef brisket mac and cheese pie. Zed is for the love of pies.
3: Few things sound better than logs crackling in a fire. Rain on a tin roof. My voice. And the words, you've won a pair of Bose headphones. Be in to win one of 50 pairs when you join Southern Cross Health Insurance by 11th of October. See website for details. T's and C's apply.
4: It's double points week at Woolworths. Simply hit Boost in the Everyday Rewards app, spend $50 or more in store or online and scan your Everyday Rewards card and collect double points on every shop. In Sunday, T's, C's and exclusions apply.
5: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
6: Uber drivers, if you already have a claim with Not Your Fault Services, it is moving forward and one of their claims managers will be in touch. If you have not applied, intake 4 is open. Not Your Fault Services phone team is at capacity. So please don't call, apply online instead at nyfservices.com. That's nyfservices.com.
7: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
7: Celebrity Alarm. Hit it.
9: तो क्या आप तैयार हैं आज के सेलिब्रिटी अलार्म के लिए? आपको बस हम एक आवाज़ जो है ये सुनाने वाले हैं, आप अच्छे से सुनिए, फिर उसके बाद अपना आंसर जो है ये आप हमारे पास सेंड कर सकते हैं ऑन 5599. तो ध्यान से सुनना है आपको, उसके बाद लिखना है बी एफ, फिर आंसर, फिर नाम और सेंड कर देना है ऑन 5599. आवाज़ सुनते देखते हैं सबसे पहले शख्स वो कौन होते हैं जो इनकी आवाज़ जो है ये पहचान लेते हैं. तो ये रहा आज के हमारे सेलिब्रिटी की आवाज़ इन सेलिब्रिटी अलार्म.
10: शायद आई थिंक सो. जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है.
11: अच्छा,
10: जो कल हुआ अच्छे के लिए ही हुआ, जो आज हो रहा है वो भी अच्छे के लिए होगा और जो कल होगा वो भी अच्छे के लिए होगा. सो
9: तो ये किसकी आवाज लग रही है आपको?
12: आई नो.
9: हाँ, यू नो, तो बताइए किसकी आवाज लग रही है.
12: मैं बता दूं क्योंकि मैंने देख लिया है.
9: अरे यार तब मत बताओ. देखना अलग बात है ना, तुम तो कंफर्म हो जाता. मुझे लगा सुनकर आप बता सकते किसकी आवाज है. पर क्या आप में से कोई है जिन्होंने इनकी आवाज सुनते ही पहचान लिया इनको? अगर हाँ तो जल्दी से बी एफ लिखे और फिर अपना आंसर, अपना नाम 5599 पर सेंड करें. रिमेम्बर, आज ऑन द ब्रेकफास्ट शो जाने से पहले हम गिव अवे करने वाले हैं $251 वर्थ ऑफ वाउचर ईच दो लकी विनर्स को फॉर्च्यून की ओर से, जो वो जीत सकते हैं हमारे साथ ऑन द ब्रेकफास्ट शो. और इस वाउचर का इस्तेमाल करते हुए आप शॉपिंग कर सकते हैं और यू नो फॉर अ वीक एटलीस्ट आपकी ग्रोसरीज जो है, एटलीस्ट इंडियन ग्रोसरीज, क्योंकि इंडियन ग्रोसरीज डिफरेंट होती है और बाकी ग्रोसरीज डिफरेंट होती है ना, ये आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं.
12: बिल्कुल.
9: या

0: say Indian groceries, I mean like Indian atta, Indian rice, and vegetables, ye sari cheeze, spices, Indian spices, ye sari cheeze, na? Right, to ek bar phir inki awaaz aapko hum suna rahe hain. The very first person jinhone aaj apna message bheja hai is Vinil from Manurewa. Abhi tak sirf ek hi shakhs hai jinhone kam se kam koshish ki hai. To ye kaun hai, kya lagta hai aapko? Jaldi se apna jawab aap send kijiyega.
1: Shayad, I think so. जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है.
2: अच्छा,
1: जो कल हुआ अच्छे के लिए ही हुआ, जो आज हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही होगा, और जो कल होगा वो भी अच्छे के लिए होगा. So
3: Bollywood's most wanted.
4: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
5: मैं लाऊं अपना A game.
3: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: 0800 634 234.
1: News headlines.
2: सुबह के मुख्य समाचारों में, ऑकलैंड के फ्लैटबुश में एक चोरी की गाड़ी को तेज रफ्तार से भगाने के बाद ट्रैफिक इंटरसेक्शन पर क्रैश करने वाले शख्स को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। रोस्कॉमन रोड से कल गाड़ी चुरा कर भाग रहे आरोपी ने क्रैश के बाद सिग्नल पर खड़ी दूसरी गाड़ियों को कार्जेक करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को बिना किसी विरोध के कस्टडी में ले लिया और मामले की जांच जारी है। न्यूजीलैंड पुलिस और हेल्थ न्यूजीलैंड ने मेंटल हेल्थ हैंडओवर्स के टाइम को इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में 60 से घटाकर 30 मिनट्स करने का फैसला किया है। रेडियो न्यूजीलैंड की रिपोर्ट के अनुसार, पब्लिक सर्विस एसोसिएशन ने इस स्टेप को डेंजरस बताते हुए कहा कि हेल्थ वर्कर्स पर काफ़ी हिंसा बढ़ रही है और पुलिस सपोर्ट घटाना उनकी सेफ्टी के लिए खतरा है। दूसरी तरफ पुलिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट स्टीव वॉट ने इस बदलाव का समर्थन किया है ताकि पुलिस ऑफिसर्स अपना टाइम दूसरे क्राइम्स से निपटने में लगा सकें। वॉट ने यह भी साफ किया है कि कॉम्प्लेक्स केसेस में पुलिस 30 मिनट से ज़्यादा रुकेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में हैंडओवर टाइम को 15 मिनट्स तक लाना चाहिए। न्यूजीलैंड ऑल वाइट्स फुटबॉल टीम चाइना में पैलेस्टाइन के खिलाफ अपना पहला हिस्टोरिक मैच खेलेगी, जिसका ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाएगा। फीफा के एक्सटेंडेड इंटरनेशनल विंडो के तहत जुड़े इस मैच में ऑल वाइट्स के पास 11 सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन रहेगा, जिसे कोच डेरिन बेजली एक ट्रेनिंग रन की तरह यूज करेंगे। न्यूजीलैंड फुटबॉल सोशल मीडिया पर मैच के क्लिप्स शेयर करेगा, जबकि टीम को इस विंडो में चाइना और जापान के खिलाफ किरिन कप के मैचेस भी खेलने हैं। ये मैच पैलेस्टाइन के खिलाफ आज रात 9:30 बजे से खेला जाएगा और अपडेट्स आपको हम पर हम देंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco. Hum. Accurate traffic.
5: Century Batteries. New Zealand's trusted battery.
6: Final day today with a high of 16. A serious crash in Herne Bay. It's closed part of West End Road from the tennis court up to the roundabout at Herne Bay. So a bit of a headache there. One Southern Motorway, 42 minutes, Manukau to town, slow Papakura on and off to the city. Northwestern, 40 from Massey, heavy on and off from Upper Harbour. Northern, heavy at Silverdale, slow from Constellation, 27 Constellation to the city.
5: Whatever you drive, ride or tow, power it with Century Batteries, New Zealand's trusted battery.
7: Before you can vote, you need to be enrolled. We're making it easy, with Electoral Commission teams popping up at events and venues across Aotearoa New Zealand, so you can enrol, check or update your details without any fuss. Find out where our teams will be at vote.nz.
8: Home loan के साथ थोड़ा cash भी पाना चाहते हैं? नया home loan लेना हो या मौजूदा loan का review करवाना हो? Squirrel आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त deal कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए power of the Squirrel effect. Squirrel.co.nz.
9: Briscoe's half-price birthday blowout is on now with half price off the entire store. That's right. Every single item in store nationwide is half price. All stores open till 9 tonight. Plus, we're giving away $25,000 cash.
10: See online for TCs and exclusions.
11: Do 8 Sudokus. Save 3 people's lives. Count the holes in a ceiling tile. Or just count the edges and then multiply it. 2 chapters of an audiobook about stoicism. Help create life-saving products. Watch a round of darts. Take a small nap.
12: These are some of the things you can achieve in one blood or plasma donation at your local NZ Blood Donor Centre or mobile drive. Visit nzblood.co.nz to book your blood or plasma donation appointment.
13: 1% finance and $2,000 off exclusive to West City Auto Group. That's right, get behind the wheel of JQ J7 SHS for just $47,990 plus on-road costs. With 1% finance and $2,000 off, experience premium style, advanced technology and super hybrid efficiency all in one impressive SUV. Hurry, limited stock available at 1% finance. Speak with Jimmy Taylor and team at West City Omura JQ. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
3: Birthday greetings.
14: Iska birthday bhai?
15: Mera hi birthday, chalo line mein aa jao.
14: Happy birthday to you.
0: Happy birthday, many many happy returns of the day. Aaj yani ki on the 24th of September aap bhi agar apna birthday celebrate kar rahe hain to janmdin ki bahut sari shubhkamnaen aapko hamari or se. Sabse pehle aaj Asha Sethi ji hai Flatbush mein apna birthday mana rahi hai, saath mein Shashikant Mule ji Mangri mein apna birthday celebrate kar rahe hain. To hamari puri ki puri hum team ki or se aapko happy birthday, many many happy returns of the day hum zarur wish kar rahe hain.
2: Ye khas din aaj aapko bahut bahut bar shubh aur mubarak ho. Very very happy birthday. वीर नारायण, आज आप भी अपना सीक्रेट बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. खुशी के इस मौके पर आपके जितने भी परिवार वाले हैं सभी शुभकामनाएं और बधाइयां आपको दे रहे हैं. जेम्स हैं, साथ में प्रणीत हैं, प्रश्नील, नविंदर, प्रकाश, क्रिश हैं, एडविन, दिलेंद्र और इनके साथ आपके अन्य जितने भी परिवार वाले हैं सभी ने आज आपको शुभकामनाएँ दी हैं. हमारी ओर से भी ये दिन शुभ और मुबारक हो.

0: finance experience. Call 0800-634-234.
1: फिलहाल 22 मिनट बाकी है इसमें हमारी स्टूडियोज में 8 बजने में. आज का सेलिब्रिटी अलार्म लुक्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. हमने कहा था सबसे पहले आज विनील ने अपना मैसेज भेजा था, उसके बाद हमारे पास डैन का मैसेज आया है. डैन ने कहा है कि आपकी आवाज है या फिर नहीं. ओ अच्छा नहीं, बट इन्होंने भाई लिखा इसलिए मैं सोच रही, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो विजय वर्मा को भाई थोड़े से बोलेंगे, इसलिए मुझे लगा कि आपको बोल रही है.
2: शायद बोले उनके भाई होंगे शायद.
1: प्रोबेबली या, बट डैन ने लिखा है विजय वर्मा. ज्योति ने लिखा है जिमी शेरगिल. शाइना का कहना है अर्शद वारसी. मोविन कह रहे संजय दत्त. कृणाल कह रहे पंकज त्रिपाठी. अर्जुन रामपाल, ये किसने लिखा है. रेड्स ने कहा है शर्मन जोशी. इतने सारे नाम मैंने पढ़े, सब अलग अलग और सब गलत. नॉट इवन वन आंसर इज करेक्ट. जितना मैंने भी पढ़ा है उसमें से किसी का जवाब सही नहीं है.
2: तो आप फिर से सुनाओ फॉर द फाइनल टाइम.
1: एक तो सुनाना पड़ेगा, फिर ऊपर से कुछ क्लूज भी देने पड़ेंगे. पर क्लूज देने से पहले ये आवाज जरा ध्यान से सुनिएगा.
3: शायद आई थिंक सो. जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है.
4: अच्छा,
3: जो कल हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो आज हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है.
1: तो ये आवाज किसकी है आपको पहचानना है. हमने आपको अगर क्लू देना हुआ इसके बारे में कि ये किनकी आवाज है, तो जैसे कि हमने बहुत बार बताया है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी आवाज की वजह से जाने जाते हैं. इनका भी सेम सिचुएशन, इनकी आवाज की वजह से लोग इन्हें बहुत ज्यादा जानते हैं, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं. काफी पॉपुलर थे ये आई थिंक जब 90s अर्ली 2000 के टाइम पे, especially late 90s into early 2000, बहुत पॉपुलर हुए ये, और especially for what he does.
2: न्यूजीलैंड से इनका बहुत गहरा संबंध है.
1: हाँ, काफी गहरा संबंध है.
2: हाँ, इतना हम आपको बता सकते हैं.
1: राइट, इतने सारे क्लूज हमने अभी आपको दे दिए, इससे ज्यादा नहीं दे सकते. कार्तिक आर्यन हेमंत ने कहा है, नहीं गलत है. दीपा ने कहा संजय दत्त, ये भी गलत है. सो नो करेक्ट आंसर्स, ये भी गलत हो गए हैं. लेट्स सी, मतलब अभी जितने सारे मैसेजेस हमारे पास है उसमें से सिर्फ एक शख्स है जिन्होंने इनको सही सही पहचाना, लेकिन बाकी सब ने गलत आंसर्स भेजे.
2: तो क्लूज जो हमने आपको दिए हैं कि इनकी आवाज़ से इनकी पहचान है, और मैंने जो क्लू दिया है कि न्यूजीलैंड से इनका बहुत गहरा संबंध है, तो कौन ये हो सकते हैं.
1: कमाल की बात ये है कि पेशा इनका कुछ और है, लेकिन इन्होंने एक्टिंग भी की है कुछ प्रोजेक्ट्स पे.
2: ओके, तो लो अब और क्या चाहिए आपको भाई. कोशिश करें जब तक ये गाना आप सुन रहे हैं तब तक का ही टाइम है आपके पास. BF अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर आप हमें भेज सकते हैं.
1: टॉपिक के अराउंड आपको बताएंगे, न्यूजीलैंड में एक चीज नोटिस की गई है जो ज्यादातर न्यूजीलैंडर्स फिलहाल कर रहे हैं. क्या है ये चीज जो ज्यादातर न्यूजीलैंडर्स फिलहाल कर रहे हैं, जानने के लिए हमारे साथ ही बने रहिएगा आप.
5: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local

0: Supermarket Newlyn, Namaste New Zealand Immigration Services, Indelible Homes, Gem Entertainment, TradeWorks Group, Classic Automotive Solutions Limited, Malolo Rentals and Tours, or IIIE Science. जानकारियों के लिए हम सुनते रहें.
1: Hum. Accurate traffic.
2: Leaf motor electric vehicles are unignorable.
3: Fine today with a high of 16. Southern coming in, a crash in the left lane before Prince's Street. We're taking an hour from Manukau to the city. Not bad too there, but then heavy Manukau to the city. Northwestern 40 in from Massey, heavy on and off from Upper Harbour. Northern 30 from Constellation, 57 Silverdale to town. Very heavy at Silverdale and most of the way from Constellation. And a crash in Herne Bay, West End Road closed from the tennis club to Jervis.
2: Buy a Leap motor this month, pay nothing until 2027 with $2,000 off your finance. Terms apply.
4: 3, 2, 1, rush!
5: Rewards Rush is back at BP. Get double everyday rewards points on fuel and shop, plus score 10 times points on selected items. Whether you're fueling up, grabbing a coffee, or stocking up on your favourite snacks, there's more to score at BP. Scan everyday rewards today. Offer ends 13 October. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewardsrush.
6: Hello, officer. What's the problem?
7: I mean, I might have been going a bit fast back there, but I know these roads like the back of my hand. I've been driving them for years. The folks who crash on these bends are like out-of-towners. That's not me. I'm a local.
8: Man, mid-40s. He's taken the corner too fast and slid off the road. Suspected head and spinal injuries. Ambo required. We've heard it all. We've seen it all. Slow down.
9: Create the outdoor space you love with Mitre 10. Save a very relaxing $800 on a stylish Catalonia outdoor corner lounge setting, now $2,699. And never get chilly with 15% off all Kent outdoor heaters. Mitre 10, your home for outdoor living.
10: India comes to town. Aotearoa ka feel hi kuch alag ho jata hai. Tickets ab available hai nzc.nz par. Be there. Kyunki ye sirf cricket nahi, ye hai Black Caps versus India.
11: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Don't mind, lekin aap dono ki jodi badi cute hai.
11: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
13: So, फिलहाल समय की ओर देखें तो बस 10 मिनट ही बाकी है समय हमारे स्टूडियोज में 8 बजने में. ठीक है, न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट जो ये रहेगा. बिफोर आज हम वो इन्फॉर्मेशन शेयर करें जिसके बारे में हमने मेंशन किया था कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो अब ज़्यादातर न्यूजीलैंडर्स फिलहाल कर रहे हैं. उससे पहले आज के हमारे सेलिब्रिटी अलार्म में जितने लोगों ने अपने अपने मैसेजेस भेजे हैं, थैंक यू सो मच आप सभी के मैसेजेस के लिए.
14: देवेंद्र हैं, शमीम, धर्मेन आचारी और इनके साथ अजय, श्वेता हैं, अमिया हैं, नीति, आपने अपने आंसर्स भेजे हैं.
13: ज्योति है, साथ में लव शर्मा है और इसके अलावा फ्लैटबुश से सनी का मैसेज आया है. डी है, नेहा हदकर जी है, फरीदा है, फरहा है, निराली, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. आई होप कि आप फिलहाल सुन रही हैं, बट आपने डेफिनेटली सही जवाब दिया है कि आज के हमारे जो सेलिब्रिटी रहे, इन सेलिब्रिटी अलार्म इज नन अदर देन लकी अली. लकी अली की आवाज थी जो आज आपके लिए हम लेकर आए थे.
14: हाँ, हमने कहा था न्यूजीलैंड से इनका बहुत गहरा संबंध है. तो
13: आपने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था?
14: बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में बोला था, यहाँ पर रहे भी है वो कितने समय तक.
13: वो उसी हिसाब से मैंने भी बोला था. एंड अनदर थिंग वाज कि द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ हिज व्हिच वाज लाइक नॉट फर्स्ट सॉन्ग, इनका इनके और भी गाने खैर काफी पॉपुलर हुए थे. आई थिंक नशा नशा भी इन्होंने गाया था ना.
14: हाँ,
13: तो वो गाना भी काफी पॉपुलर हुआ था. बिफोर द सॉन्ग क्यों चलती है पवन, ये गाना हिट हुआ था फ्रॉम द मूवी कहो ना प्यार है. उसकी शूटिंग यही हुई थी ना न्यूजीलैंड में, इसी वजह से मैंने तो वो हिसाब से बोला. बट एनीवेज, अब कहा गया है ज्यादातर न्यूजीलैंडर्स जो है ये एक्स्ट्रा वर्क ले रहे हैं या फिर स्मॉल बिजनेसेस ऑन द साइड शुरू कर रहे हैं, आइदर टू अर्न मोर मनी या सिंपली टू डू समथिंग दे एंजॉय. टेक लेजली वेब एक ग्राफिक डिजाइनर है जो अपना एक इंडी बुक कर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है कि रन करते हैं, जहाँ ये प्रमोट करते हैं बुक्स बाय इंडिपेंडेंट न्यूजीलैंड ऑथर्स. और लेजली ने कहा है कि शी न्यू इट प्रोबेबली इट वुडंट मेक हर रिच, लेकिन इससे उनके क्रिएटिविटी को एक हेल्प मिलता है, एक आउटलेट मिलता है, और इससे वो अपना स्किल्स भी डेवलप करती है जो उनके मेन जॉब के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होता है. इसके अलावा कहा गया है कि एक ग्रोइंग ट्रेंड जो है ये देखा गया है न्यूजीलैंड में. 1 in 4 न्यूजीलैंडर्स do side hustles to earn more than $10,000 in their first 6 months. One in four New Zealanders. While one in 10 make more than $25,000. इनलैंड रेवेन्यू डाटा के हिसाब से ये बताया गया है कि 263,500 न्यूजीलैंडर्स जो है हैड मोर देन वन जॉब इन द लेटेस्ट टेक्स्ट ईयर. इकोनॉमिस्ट का कहना है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, वीकर जॉब मार्केट, फ्यूअर आवर्स एंड द ग्रोथ ऑफ ऑनलाइन बिजनेसेस जो है ये कुछ मेजर रीजंस है जिसकी वजह से ये ट्रेंड न्यूजीलैंड में काफ़ी जल्दी जल्दी जो है ये बढ़ रहा है. एंड ऑन द अदर हैंड ये भी कहा गया है कि फाइंडिंग द एक्स्ट्रा वर्क इजंट ईजी ऑल्सो. इकोनॉमिस्ट शमुबिल एकोब जो है इन्होंने कहा है कि डिमांड फॉर सेकेंड जॉब इज़ हाई लेकिन कॉम्पिटिशन इज टफ. तो अगर आप भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं जहाँ पर आप सोच रहे कि एक साइड हसल जो है ये आप करेंगे, अपना खुद का स्मॉल बिजनेस शुरू करेंगे, तो आप अच्छे से रिसर्च कीजिएगा. बिकॉज एज वी हैव जस्ट सेड कि ये एक ग्रोइंग ट्रेंड देखा गया है न्यूजीलैंड में, ज़्यादातर लोग ये कर रहे हैं. तो ऐसा कुछ ना आप अपने ऊपर ले लें या ऐसे किसी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो जाए जिसमें कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हो कि आपको डिफ़िकल्टी हो टू ग्रो इवन इन दैट साइड हसल दैट यू आर डूइंग, क्योंकि उससे एडेड प्रेशर आता है ना.
14: Yeah.
13: So do your research properly and go for it.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: आई 10.5 degrees टेम्परेचर भी ऑकलैंड में आप फील कर रहे हैं. आज का हाई 14, ओवरनाइट कम से कम 8 डिग्रीज एक बार फिर रहेगा. फाइन डे, सनसेट 6:19 PM पर आज होगा.
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
2: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एट हैरिंगटन लिविंग मोनाको. बिग ऑन स्टाइल, ग्रेट ऑन प्राइस, परफेक्ट फॉर योर होम. हैरिंगटन लिविंग मोनाको.
0: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
1: ट्रेंड पेट्रोल में आज हम कुछ बातें करने जा रहे हैं अबाउट मिशेलिन स्टार.
3: ओके,
1: इसके बारे में आपने सुना है पहले?
3: हाँ, आई नो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेस्टोरेंट्स एंड ऑल, और दिस इज अ बेसिक, यू कह सकते हैं बेसिकली ये बहुत ही प्रेस्टीजियस रिकॉग्निशन होता है ना.
1: यस, प्रेस्टीजियस रिकॉग्निशन होता है. अगर किसी को एक मिशेलिन स्टार मिलता है तो वो एक इमीडिएट ग्लोबल मार्केटिंग इंजन बन जाता है, ड्राइविंग अ मैसिव सर्ज इन रिजर्वेशंस. आस्टा जो है ये वैलिडेट करता है प्रीमियम पोजिशनिंग, जिससे रेस्टोरेंट्स को या जिनको ये मिलता है ते यू नो लेवरेज द सिग्निफिकेंटली लेवरेज करके अपने प्राइसेस को बढ़ाते
3: हैं, राइट.
1: और साथ में काफ़ी प्रेस्टीज और ग्लोबल टैलेंट अट्रैक्शन जो है ये आपको मिलता है.
3: हाँ.
1: तो आपको थोड़ी सी जानकारी हम दें. इंडिया में इस साल 2026 में 47 इंडियन होटल्स जो है इन्होंने मिशेलिन कीज जो है ये जीते हैं.
3: मिशेलिन कीज?
1: हाँ, मिशेलिन कीज जो है ये जीते हैं.
3: मिशेलिन कीज और मिशेलिन स्टार्स में फ़र्क क्या होता है?
1: मिशेलिन कीज और मिशेलिन जो स्टार्स होता है उसमें डिफरेंस जो होता है वो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैसे
3: ट्राइंग टू फाइंड वर्ड्स. ओके, अच्छा बाकी चीजें बताइए, तब तक वी विल गेट बैक टू दिस इन अ व्हाइल.
1: या तो मैंने बताया था कि इंडिया में 47 होटल्स हैं. ये जो मिशेलिन कीज है ये सेव एज होटल इक्विवेलेंट ऑफ मिशेलिन स्टार्स, समझ गए ना. स्टार्स जो है रेस्टोरेंट्स को मिलते हैं, होटल्स को कीज मिलते हैं. तो वन की, टू की, थ्री की. वन की जो है ये होता है होटल विद डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी, एक्सेप्शनल कंफर्ट सर्विस. इसी तरह से टू की, थ्री की जो है ये दिए जाते
3: हैं, वन स्टार, टू स्टार, मिशेलिन स्टार्स के हिसाब से, राइट. ओके,
1: तो इंडिया में 47 होटल्स जो थ्री कीज हैं ये मैं आपको बताऊं. ताज लेक पैलेस इन उदयपुर.
3: ओके,
1: ताज फलकनुमा पैलेस हैदराबाद.
3: ओके,
1: ये दो होटल्स हैं जिन्होंने अपने जो थ्री की जो स्टेटस है उनको मेंटेन किया है.
3: ओके,
1: न्यूजीलैंड में भी कई होटल्स हैं जिन्होंने जो क्या बोलते हैं मिशेलिन कीज हासिल किए हैं. और जो टू की होटल्स हैं, वेलिंगफोर्ड होमस्टेड इन वेलिंगफोर्ड.
3: वेलिंगफोर्ड कहाँ है?
1: वेलिंगफोर्ड मुझे नहीं पता कहाँ है, जहाँ है.
3: मिलफोर्ड और वेलिंगटन का मिक्सचर लगता है ये. वेलिंगफोर्ड.
1: और साथ में रोजवुड मतकाउरी इन क्वींसटाउन.
3: ओके,
1: एंड डेलमो लॉज ऑन वहीकी आइलैंड.
3: ओह नाइस.
1: इन्होंने अपने जो इन्होंने टू की स्टेटस हासिल किया है.
3: हाँ.
1: और जिन्होंने रिटेन किया है ब्लैंकेट बे इन ग्लेनकी.
3: हाँ.
1: हुका लॉज इन टोपो.
3: ओके,
1: ओटाहुना लॉज इन क्राइस्टचर्च, रोजवुड केप किडनैपर्स इन हॉक्स बे, रोजवुड काउरी क्लिफ्स इन नॉर्थलैंड, द लिंडिस ओमारामा और फारेकाउहाउ कंट्री एस्टेट फर्दिस्टन में.
3: ओके, इन्होंने मेंटेन किए हैं,
1: इन्होंने अपना टू की स्टेटस जो है ये मेंटेन किया है. वन की के अभी लिस्ट है.
3: हाँ.
1: बट वो टाइम लगेगा बताने में, आप
3: फिर बाद में. हाँ, राइट. बट इंटरेस्टिंग ना, आई मीन इट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट कि आपके बिजनेस को जो बेनिफिट करे उसके हिसाब से तो चलना जरूरी है. बट आजकल क्या होता है कि रिव्यूज के मामले में भी कई लोग जो है ये हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, बट कई लोग पेड रिव्यूज भी करते हैं ना.
1: बट द थिंग इज ये जो मिशेलिन कीज है.
3: हाँ.
1: अब इसका कमाल देखो, आज से पहले मैंने हुका लोच का नाम ही नहीं सुना था।
3: ओके, ये नो आइडिया।
1: मुझे नहीं पता था ना कि हुका लोच कोई
3: टॉप। मैंने तो वेलिंग फोर्ड ही नहीं सुना था।
1: आज ये जब मिशेलिन कीज के बारे में मैं पता लगा या पढ़ रहा था,
3: तब
1: मुझे पता चला। हाँ,
3: इंटरेस्टिंग। तो ऐसी बहुत सी और भी खबरें हैं जो आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। ऑनियन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स द ब्रेकफास्ट शो विद विजयन पूजा आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। 8 मिनट हो रहे हैं 8:00 एंड दिस इज द रश आवर रिमाइंडिंग यू ऑल कि थोड़ी देर बाद आज का वर्ड सिटी एक टॉपिक तो रहेगा ही, लेकिन आज थर्सडे है तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु किंडोला से भी हम बातें करेंगे।

0: ऊर्जा।
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery anywhere in Auckland. Huge side-by-side stainless steel fridge freezer $699. 10kg 9-star energy heat pump dryer $799. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
3: Oh, that tap's boring. Oh, that tap's happy because you paid with a Westpac card. There's over 200 grand of happy taps to be won. Just tap your Westpac debit or credit MasterCard. Search Westpac Happy Taps. Fees, exclusions and terms apply.
4: Hey, City Rail Link's now open and our first trip's going to the game.
5: Now I can go east-west on just one train. So my first trip seeing an old friend in Swanson.
6: Our first train ride. We're surprising the kids with Te Waihoretu Station and a movie.
7: CRL first trip. Coffee with friends, maybe K Road. Maybe Pukekohe.
8: Oh, it'll be our millionth time going to the art gallery, but our first time taking the train.
9: Those all sound great. The City Rail Link's now open, so all aboard with Auckland Transport.
10: Know someone who may need support to enrol or vote? Ask them what would make it easier. It might be helping to find the nearest voting place, providing a lift, or supporting with the paperwork. Find more accessible information at vote.nz. Choose from audio, braille, easy read, large print, and New Zealand Sign Language. Or call 0800 36 7656. Brought to you by the Electoral Commission.
11: Create the outdoor space you love with Mitre 10. Save a very relaxing $800 on a stylish Catalonia outdoor corner lounge setting, now $2,699. And never get chilly with 15% off all Kent outdoor heaters. Mitre 10, your home for outdoor living.
12: The Breakfast Show with Weete and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price, perfect for your home, Harrington Living Manukau.
12: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
14: What's your take?
15: 17 minute 20 here, Art Bichkar on The Breakfast Show with Vijay and Pooja. What's your take? Me, aaj a totally different topic in comparison to other days.
16: Okay.
15: आज वर्ल्ड बॉलीवुड डे है।
16: अच्छा,
15: तो हमने सोचा कि आज थोड़ा शिफ्ट करते हैं अपना जो ध्यान है ना, अवे फ्रॉम जो नॉर्मल एवरीडे लाइफ टॉपिक्स के बारे में हम बातें करते रहते हैं। आज बॉलीवुड के बारे में ही कुछ बातें कर लेते हैं। आपको पता है कि पहली हिंदी फिल्म कौन सी बनी थी?
16: हाँ, राजा हरिश्चंद्र ना
15: जी,
16: साइलेंट मूवी थी वो।
15: साइलेंट मूवी 1913 में ये फिल्म बनी थी और दादा साहब फाल्के जी ने ये फिल्म जो है ये बनाई थी। इस फिल्म के बारे में मैं आपको बताऊं, इसमें इंटर टाइटल्स थे, टाइटल कार्ड्स थे मराठी और हिंदी में लिखे हुए, और फीमेल जो किरदार है ये मेल्स ने प्ले किए थे।
16: ओ,
15: इस फिल्म में क्योंकि उस समय पर इट वाज काइंड ऑफ टबू, जो रिसर्च मैंने जो रिसर्च मैंने किया है कि टबू था वीमेन के लिए टू परफॉर्म ऑन स्टेज। तो ये साइलेंट फिल्म थी। पहली साउंड फिल्म कौन सी थी?
16: नो आइडिया।
15: नो आइडिया?
16: नहीं, नहीं।
15: पहली साउंड फिल्म थी आलम आरा।
16: आलम आरा?
15: हाँ, आलम आरा जो फिल्म है ये 1931 में आई थी, डायरेक्ट

0: इन्होंने इस गाने को ऑन स्क्रीन परफॉर्म किया था और एक फकीर का किरदार उन्होंने निभाया था। और उसके बाद ये उस समय पर प्लेबैक टेक्नोलॉजी नहीं थी तो इंडियन सिनेमा में 1931 में, तो इस गाने को रिकॉर्ड किया गया था ऑन द सेट वाइल फिल्मिंग। और फिर बाद में चलकर फर्स्ट प्लेबैक सॉन्ग कौन सा था नहीं पता?
1: नहीं।
0: 1935 में आई थी फिल्म धूप छांव, उसका गाना जो है ये था मैं खुश होना चाहूं। ये गाना जो है वॉज द फर्स्ट क्या बोलते हैं प्लेबैक सिंगिंग। और पारुल घोष, सुप्रभा सरकार और उमा शशि ने इस, उमा शशि जो है उमा देवी को आप जानती हैं?
1: नहीं।
0: उमा देवी का नाम आपने नहीं सुना?
1: नहीं।
0: आप गूगल करके देखिए उमा देवी कौन है।
1: और
0: म्यूजिक डायरेक्टर जो है रायचंद बोरल, और अपने जमाने के बहुत ही मशहूर कलाकार पंकज मलिक।
1: ओके, नाउ आई नो हु उमा देवी इज।
0: कौन है?
1: टुनटुन नाम से ज्यादा जानी जाती थी ना।
0: जी।
1: हाँ, तो वो नाम स्क्रीन पर उनको मिला था आई गेस, एंड दैट्स व्हाई पीपल नो हर ऑफ दैट नेम, बट डेफिनेटली हैव सीन हर इन सो मेनी मूवीज।
0: लेकिन किसी को पता नहीं था
1: कि इनका नाम उमा देवी है।
0: नहीं, उमा देवी नाम पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि पहला प्लेबैक
1: इन्होंने गाया था,
0: गाना था इसमें उन्होंने फीचर किया था।
1: फीचर की,
0: आई मीन शी सेंग दैट सॉन्ग ना बेसिकली। डायरेक्टर नितिन बोस जो है और म्यूजिक कंपोजर आरसी बोरल, उन्होंने ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया था कि म्यूजिक को प्री रिकॉर्ड किया जाए और फिर बाद में चलकर इसको शूट किया जाए। तो बॉलीवुड की बहुत ही यूनिक हिस्ट्री है। अभी बहुत सारे रिकॉर्ड जो है, आमिर खान है, अमिताभ बच्चन है, एंड मॉडर्न डे सिनेमा में अगर देखें, आई एम नॉट रियली श्योर कौन सी फिल्म होगी, शी नंबर ऑफ थिएटर सोल्ड आउट जो है, हम आपके हैं कौन के बारे में कहते हैं कि इट होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट एस्टिमेटेड थिएट्रिकल फुटप्रिंट्स इन मॉडर्न बॉलीवुड हिस्ट्री, 73 मिलियन।
1: आप आम भाषा में समझाएं ना तो मैं समझूंगी।
0: अच्छा, नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, खैर छोड़ो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं बॉलीवुड के बारे में, अगर बताने बैठे तो काफी टाइम लगेगा।
1: या इट्स लाइक अ, इट्स अ वेरी बिग पूल ऑफ टॉपिक्स आई वुड से।
0: या, एंड तो मैंने आज सोचा कि आज आपसे दो तीन चीजें पूछ लेते। एक तो वो कौन सी बॉलीवुड मूवी है जो आपने सबसे ज्यादा बार देखी है?
1: ओके,
0: वो कौन सी बॉलीवुड मूवी है जो आपने सबसे ज्यादा बार देखी है? और शायद आपके लिए आपकी लाइफ का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन या मोटिवेशन किस मूवी से आपको मिला? आपकी फेवरेट मूवी, वो सारी चीजें। इट्स बेसिकली वी गोइंग टू टॉक बॉलीवुड टुडे।
1: ओके, इंटरेस्टिंग। तो लेट्स, वी हैव केप्ट इट वेरी सिंपल, और आप भी हमें बता सकते हैं। आप हमारे पास 0800-004-866 पर कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं कौन सी बॉलीवुड फिल्म जो आपने सबसे ज्यादा बार देखी है, और दूसरी चीज कि कोई एक ऐसी बॉलीवुड फिल्म जो आपके लिए इंस्पिरेशनल रही हो, लाइफ चेंजिंग रही हो। वी आर टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड मूवीज टुडे, क्योंकि आज वर्ल्ड बॉलीवुड डे मार्क किया जा रहा है, बॉलीवुड मूवीज डे ना।
0: हाँ।
1: गुड मॉर्निंग हम एफएम।
2: मॉर्निंग पूजा जी, मॉर्निंग विजय जी।
0: गुड मॉर्निंग भाई,
1: कैसे हो आप?
2: एकदम फर्स्ट क्लास, आप बताइए।
1: मैं
0: आप पूछिए, मैं बताता हूँ।
1: मेरा तो मुझे पता ही नहीं चल रहा यार कैसी हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे भी।
2: अरे चलो, अच्छी बात है, कोई बात नहीं,
1: अच्छी बात है। है
2: यही अच्छा है, यू नो वो जब प्रेडिक्शन हो, प्रेडिक्टर हो जाएगा ना बातें तो मजा नहीं आएगा।
1: अच्छा, हाँ, वो भी सही है। चलिए बताइए, अच्छा कौन सी फिल्म आपने सबसे ज्यादा बार देखी है?
2: तो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से 3 इडियट्स।
1: ओके,
2: कोई मूवी नहीं। Absolutely.
1: और लाइफ चेंजिंग आपके लिए इंस्पिरेशनल मूवी कोई एक जो आपने देखी हो?
2: मुझे लगता है 3 इडियट्स ही है, क्योंकि उसमें बताया गया है कि आप अपने हुनर पे ध्यान दो, कामयाबी अपने आप से पीछे आएगी। अगर आपने हुनर पे काम किया, अगर आपने आप पे, अगर मॉडर्न लाइफ से बोला, मॉडर्न डे में मतलब बोला जाए तो स्किल्स एंड डेवलपमेंट जो भी है आपका पर्सनैलिटी, और उस पे अगर आपने काम किया, so you definitely gonna get success उस हिसाब से। तो मुझे लगता है कि it's a life changing, fantastic writing और acting की क्या बात करें, और music भी, मतलब it's outstanding।
1: Very nice। आपका favorite song from Three Idiots?
2: Favorite song from Three Idiots, वही जो Three Idiots का main जो song है, सब गाते रहते हैं जो है, नहीं Give me some sunshine, actually. Give me some sunshine. Give me some rain.

0: That song. Awesome.
1: Very nice song, yeah. That song itself is so, you know, so... क्या बोलते हैं
2: इंस्पायरिंग
1: इंस्पायरिंग है बट इट रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड दैट्स हाउ यू गेट योर आंसर्स यू नो वैसा गाना है वो पर आपका नाम क्या है सर
0: ओमकार
1: थैंक यू इट वाज रियली वेरी नाइस टॉकिंग टू यू हैव अ वंडरफुल डे
0: थैंक यू सो मच जी सेम हियर
1: थैंक यू बाय हां जी
3: गुड मॉर्निंग पूजा जी गुड मॉर्निंग मेरे भाई कैसे आप
2: गुड भाई आप कैसे हो
3: मैं भी बस बढ़िया तो मेरी पहले तो नाम मेरा गौरव
1: जी
3: तो मैंने सबसे ज्यादा मूवी देखी है ना चाहते हुए भी सूर्यवंशम
1: मुझे लगा था आपको ये बोलेगा सेट मैक्स पर तो वही फिल्म आती थी ना
3: मैंने एक चीज सीखी है किसी के हाथों से भी खीर नहीं खानी
1: जिन्होंने सूर्यवंशम देखी है उसको ये कॉन्टेक्स्ट पता है
2: you know, सूर्यवंशम और सेताई कोई फिल्म है
1: इनका भी रिकॉर्ड है
2: ये जो फिल्में हैं रैंक अमंग द मोस्ट ब्रॉडकास्ट एंड व्यूड मूवीज ऑन इंडियन टेलीविजन लार्जली ड्यू टू कॉन्स्टेंट टेलीविजन सिंडिकेशन
1: क्योंकि वही है सेट मैक्स पर ये फिल्म आती थी
3: आसपास इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था तब ये थिएटर्स में रिलीज नहीं हुई थी सिर्फ नेशनल टीवी पे रिलीज हुई थी और तब ये बैक टू बैक हर चैनल पे कोई सा भी देख लो सोनी सब पे यही थी
1: वेरी नाइस यार गौरव थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए हैव अ नाइस डे ना चाहते हुए भी इन्होंने ये फिल्म सबसे ज्यादा बार देखी गुड मॉर्निंग हम
4: गुड मॉर्निंग
1: हाँ जी किन से बात हो रही है
4: जी मैं रोशन बोल रहा हूँ
1: हाँ जी रोशन बताइए कौन सी फिल्म आपने सबसे ज्यादा बार देखी है
4: द कल्ट मूवी शोले
1: ओह
4: और ये मैंने मतलब टीवी में तो देखी है मतलब मेरे बॉर्न होने से पहले जो है तो ये आई थी तो मैंने टीवी में देखी उसके बाद ये सीडी में रिलीज हुई मैंने वो देखी फिर कुछ अनकट सीन के साथ ये थिएटर्स में आई मैंने वो देखी आई थिंक मैंने मल्टीपल टाइम्स देखा है
1: ओके और कौन सी मूवी है जिससे आपको कोई एक लाइफ लेसन मिली है दैट यू विल ऑलवेज रिमेम्बर
4: दैट वाज वो मैं भूल गया श्रेयस तलपड़े की मूवी थी ना जो क्रिकेट खेलता है वो
1: इकबाल
4: इकबाल यस
1: ओके वेरी नाइस
2: थैंक यू भाई थैंक यू सो मच
1: हैव अ वंडरफुल डे तो अभी सिंस आज थर्सडे वी हैव टू टॉक विद गुरु किंडोला इन अ वाइल तो ज्यादा कॉल्स नहीं ले पाएंगे बट वी विल डेफिनेटली लव टू हियर फ्रॉम यू आप ऐसा कीजिए मैसेजेस हमारे पास सेंड कर दीजिए ऑन 5599 दो जवाब देने हैं आपको द मोस्ट वॉच्ड बॉलीवुड मूवी आपके लिए और दूसरा
2: द मोस्ट इंस्पायरिंग मूवी फॉर यू
1: आपके आंसर्स क्या होंगे
2: मेरे पास द मोस्ट वॉच्ड मूवी इज सत्य पे सत्ता
1: ओके
2: एंड द मोस्ट इंस्पायरिंग मूवी इज नन
1: ऐसी कोई फिल्म आपको इंस्पायरिंग नहीं लगी
2: जितनी देर मैं देखता हूँ मैं बहुत इंस्पायर्ड रहता हूँ किसी एक फिल्म से बिकॉज आई वॉच मूवी फॉर एंटरटेनमेंट
1: ओके इंटरेस्टिंग मेरे लिए आई थिंक मैंने जो मूवी सबसे ज्यादा बार देखी है वुड बी हम आपके हैं कौन और मेरे लिए इंस्पायरिंग मूवी अगर मैं बोलूँ तो इट वॉज इंग्लिश विंग्लिश I found that movie very, very inspiring. And in fact, आज भी when I watch it, मुझे आज भी वो फिल्म अच्छी लगती है. I watch it with the same enthusiasm.
2: तो आप 5599 पर हमें टेक्स्ट करके बताएं अपनी कहानी या आपका जो एक्सपीरियंस बड़े वाइट में भी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा बार कौन सी बॉलीवुड फिल्म आपने हाँ सबसे ज्यादा बार देखी है और कौन सी बॉलीवुड फिल्म आपके लिए सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग है
1: We are emphasizing on Bollywood क्योंकि आज वर्ल्ड बॉलीवुड डे है
5: Hollywood's most wanted.
6: Gundi khad jao. Ya seedha andar aao.
7: Main laau apna A game.
5: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: मिर्जापुर द मूवी, ये एक ऐसी वेब सीरीज जिसे मूवी में भी तब्दील किया गया, रिलीज किया गया, एंड द लव इट गॉट एज अ सीरीज, उतना ही प्यार इस फिल्म को भी मिली. और इसी महीने ये फिल्म रिलीज हुई और उसका ये ट्रेंडिंग गाना आज आपके लिए हम लेकर आ रहे थे बॉलीवुड मोस्ट वांटेड में मधुर शर्मा की आवाज़ में. इस गाने के बारे में हमने काफ़ी बातें की हैं, तो फिलहाल आई होप यू एंजॉयड द सॉन्ग. बट एज प्रॉमिस्ड, चलिए आज बातें करते हैं. हमारे साथ लॉजिक फाइनेंस के गुरु किंडोला जुड़ चुके हैं. वेरी गुड मॉर्निंग गुरु, कैसे हो आप?
1: गुड मॉर्निंग पूजा, मैं अच्छा हूँ, आप बताओ कैसे हो?
0: एकदम बढ़िया. आज आपसे बातें करने के लिए जब इसकी हम इंतज़ार कर रहे थे तो कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में सोच रहे थे. जैसे अभी करंट जो मार्केट है, वट एवर यू नो अपडेट्स आर कमिंग, द न्यूज़ इज़ कमिंग, ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट होम बायर्स हैं जो मार्केट में एंटर कर रहे हैं, प्रॉपर्टी मार्केट में एंटर कर रहे हैं, एंड अ लॉट ऑफ फर्स्ट होम बायर्स आर इन्वेस्टिंग इन दिस न्यूजीलैंड प्रॉपर्टी मार्केट, या पर्टिकुलरली ऑकलैंड का भी अगर देख लें हम. तो अगर कोई और भी है जो यू नो घर अभी तक उन्होंने नहीं लिया है, एंड दे स्टिल थिंकिंग अबाउट इट, दे विल बी द फर्स्ट होम बायर्स, अगर उनका ये सिचुएशन है, क्या बता सकते हैं करंटली वट एवर द मार्केट स्टेटस इज, सिचुएशन इज, उस हिसाब से अभी बैंक्स जो है फर्स्ट होम बायर्स को इंटरेस्ट रेट के मामले में या फिर बेनिफिट्स के मामले में क्या कुछ ऑफर कर रहे हैं?
1: पूजा, आज की डेट में बैंक्स के लिए जो फर्स्ट होम बायर्स हैं वो उनका ब्रेड एंड बटर है बेसिकली. जो मोस्ट ऑफ द लैंडिंग, मोस्ट ऑफ द होम लोन एप्लीकेशन या उसका जो लोन अमाउंट चल रहा है वो फर्स्ट होम बायर्स ही उसको जनरेट कर रहे हैं. और फर्स्ट होम बायर्स को डेफिनेटली कैप्चर करने के लिए बैंक्स, डिफरेंट बैंक्स ऑफरिंग डिफरेंट ऑफर्स कर रहे हैं कि बेसिकली इंटाइज करने के लिए कि यू नो शुड बी कमिंग टू अस. सो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो डेफिनेटली जो फर्स्ट होम बायर्स हैं, पहली बात तो उनको एक लेवरेज मिलता है कि दे कैन चूज एनीवेयर. चूज मींस कि उनके पास ऑप्शंस हैं कि दे कैन यूज द डिपॉजिट फ्रॉम 5% अप टू 20%. किसी भी ब्रैकेट में वो अपने डिपॉजिट को चूज कर सकते हैं कि या मेरे पास तो भी 5 ही है, या मेरे पास सिर्फ 7% है, या मेरे पास 10% है. सो दैट इज वन ऑफ द ब्यूटी व्हिच फर्स्ट होम बायर्स ऑलवेज कैरी. बेसिकली इतना मतलब उनके पास बड़ा ब्रैकेट है जिसमें कहीं भी वो चूज कर सकते हैं डिपॉजिट उनका कितना है. अगेन रिगार्डलेस ऑफ कि उनकी इनकम 150 है या 150 से ऊपर है, बिकॉज आई गेट लॉट ऑफ कॉल्स कि जहाँ पे लोगों का मिथ होता है कि 5% हम तभी कर पाएंगे क्योंकि 150 कंबाइंड इनकम होना चाहिए हस्बैंड वाइफ का या फैमिली का, इट शुड बी लेस ओ 150, तो तभी हम 5% में क्वालिफाई होते हैं. वो बात जो बिल्कुल सही नहीं है. यू स्टिल बी एबल टू गेट क्वालिफाइड अगर आप 5% दे रहे हो और आपका इनकम जो है कंबाइंड इनकम मोर देन 150 है. एंड देन इन टर्म्स ऑफ द रेट्स एंड द कैशबैक्स, नाउ बैंक्स अगेन ऑफरिंग प्रीटी गुड ऑफर्स एंड इन टर्म्स ऑफ द कैशबैक एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द रेट्स एज वेल. नाउ वो डिपेंड करेगा कि आप किस कहाँ पे किस ब्रैकेट में फॉल करते हो. कि बेसिकली अगर आप यू नो एज ए फर्स्ट होम बायर्स हो और आप कायंगोरा में फिट हो जाते हो, आपकी जो डील है कायंगोरा की डील में फिट हो जाती है, देन यू विल गेट द वन ऑफ द शार्पेस्ट रेट्स जो 20% डिपॉजिट के साथ मिलता है, यू विल गेट दोज रेट्स. बट कायंगोरा ऑल्सो चार्जेस यू 1.2% एक फीस लगाते हैं, एंड दैट फीस दे चार्ज अप फ्रंट एंड देट एडेड ऑन टू द लोन अमाउंट, तो वो आपके लोन अमाउंट में एड कर देते हैं. बट अगर आप कायंगोरा से बाहर जाते हो और स्टिल क्वालिफाई करना चाहते हो 5% लोन में, देन द बैंक्स ऑफरिंग ठीक है हम आपको लोन देंगे एंड आपको कैशबैक भी देंगे, बट जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा हम आपको 1.20 अप फ्रंट नहीं चार्ज करेंगे, बट वी विल पुट अ फीस ऑन टॉप ऑफ योर इंटरेस्ट रेट, सो दैट आपकी अगर घर की वैल्यू आगे जाके बढ़ गई या आपके पास कहीं से पैसा आया फैमिली से एंड यू वांट टू रिड्यूस योर लोन, तो जहां पे आप अपने लोन को रिड्यूस करोगे या आपकी घर की वैल्यू बढ़ जाएगी, वो जो मार्जिन है ऑटोमेटिकली कैन बी रिव्यूड, इट कैन बी ड्रॉप टू फ्रॉम 1.20 टू 0.75 या 0.75 से 0.30 या हो सकता है बिल्कुल ही मार्जिन वेव ऑफ हो जाए. बट दैट ऑल डिपेंड्स ऑन कि घर की वैल्यू कितनी बड़ी. अगर घर की वैल्यू नहीं बड़ी तो आपने क्या कितना और पैसा अपने लोन में डाल दिया टू ब्रिंग द लोन डाउन. सो दिस In terms of first home buyers, there's a lot of things going out there. Or as I said, ki banks want that loan because usi ke us loan ke upar hi wo process unka jo business abhi chal raha hai. So banks want those deals. And agar aapke paas already you've got an offer and sitting with the bank, ki aap dekhne aate ho ki can we get the better rates or pricing or better offer, then definitely I think it would be good thing to actually market around and have a chat ki kya kiya ja sakta hai. Aap mujhe bhi call kar sakte hain and you can have a chat with me and I'll give you really open and honest answer ki jo aapke paas offer hai wo best offer hai ya fir you know it can be done better.
0: Okay, kis number par call kare aapko?
1: Pooja ji, simple number hai, Logic Finance. Aap search karoge Google mein to you will get my details. Otherwise you can call me on 0800 number, which is 0800 Logic G. 0800 Logic G, jab aap type karte ho, that comes to me, which is 0800-564-424. 0800-564-424 is number to get in touch with me.
0: Okay, thank you so much for that information, Guru. Have a wonderful day. Ab next week Thursday ko aapse aur baatein karenge, theek hai?
1: Thank you, Pooja.
0: Thank you, bye.
2: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manuko, Mount Wellington and Westgate. Up to 60% off on now.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chup ho ja, papi ho. Chup ho ja.
2: Accurate traffic.
3: New tasty rice bars and bites in supermarkets.
4: 16 hour high, a clear one all day today. Herne Bay, West End Road has been closed all morning between Jervis and Fife Street near the tennis club due to a serious crash. Southern, we had a crash at Prince's. It's been sorted. We're just slow most of the way from Papakura. Heavy patches frequent. 40 minutes Manukau to the city. Northwestern 36 Massey to town. Heavy on and off from Upper Harbour. Northern 30 from Constellation. Heavy gravel to the bridge.
3: New tasty rice, low carb protein bars and bites. Less carbs, better snacking.
5: अब टाइम है स्प्रिंग क्लीनअप का माइटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन के साथ क्लीनिंग स्टोरेज शेल्विंग रैकिंग और भी बहुत कुछ पे मिलेगा जबरदस्त सेविंग्स टीज एंड सीज अप्लाई एंड्स अक्टूबर 14 स्प्रिंग क्लीनअप ऑन नाउ एट माइटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन
6: Spring savings are on now at Beds R Us. Save on selected sleepy head beds like the Chiropractic Perform, half price, queen size, now from 2299. Step up your sleep with spring savings at Beds R Us Manukau and Pokekohe, where dreams begin.
7: Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudhima Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor weekend, 24th and 25th October. Early bird tickets just $75 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12 half price, under 5s free. Book now at sudhimahotels.com/foodfestival.
8: Thinking of an EV? Think MG. Thinking of fast charging, clever tech, impressive range, and electrifying performance? Think MG. Thinking of safety features like a 360-degree camera or a 10-year warranty? Think MG. If you're thinking of an EV, you know who to think. See your nearest MG dealer today. Terms and conditions apply.
9: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
11: वैसे द रश आवर ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं. और इधर आपको हम याद दिला दें, आज है थर्सडे, लेकिन इसी सैटरडे को यानी ऑन द 26th ऑफ सितंबर आपके पास अपॉर्चुनिटी है बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो का हिस्सा बनने के लिए. क्योंकि अगर आप भी हाई रिटर्न प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स की तलाश कर रहे हैं विद जीरो टैक्स, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है. क्योंकि बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो 26 ये न्यूजीलैंड में होने जा रहा है इसी वीकेंड, 26 सितंबर एंड 27 सितंबर को. दिन 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ये रहेगा JW Marriott ऑकलैंड में, जहां पर आप जो डेवलपर प्रिंसिपल्स हैं इनसे मिल सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं सब एक्सक्लूसिव डील्स इंक्लूडिंग 0% अपफ्रंट DLD फीस जो आपके क्वालिफाइंग यूनिट्स पर आपको मिल सकता है, डिफरेंट पेमेंट प्लान्स और ऑफ कोर्स प्रोजेक्टेड रिटर्न्स ऑफ अप टू 20% ROI. चाहे आप शुरुआत कर रहे हैं या फिर आप अपना पोर्टफोलियो एक्सपेंड कर रहे हैं, आप वन ऑन वन कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं नाउ एट www.buildcaps.com. रिमेंबर www.buildcaps.com या फिर JW Marriott Auckland जो है ये आप पहुंच सकते हैं. और यहां पर जैसा कि मैंने बताया है, दिन में 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक आप टीम से मुलाकात करते हुए डिटेल्स हासिल कर सकते हैं. डोंट फॉरगेट, हम टीम भी यहां पर दिन में 10 बजे से मौजूद रहेगी सैटरडे 26th ऑफ सितंबर को, और आपके लिए सारी डिटेल्स जो है कि हम पर भी हम लेकर आते रहेंगे.
10: Let's go.
0: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local

0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
1: Hum, accurate traffic.
2: Fresh savings from Bargain Chemist.
3: Sunny weather all day, got a high of 16. In Herne Bay, a serious crash on West End Road has had it closed all morning between Jervis Road and Fife Street near the tennis club. It's still going on. Southern Motorway, 38 minutes, Manukau to town. Slow most of the way from Papakura. Heavy patches frequent from Penrose. Northwestern, 36, Massey to town. Slow from Massey, heavy Pātiki to Grey Lynn. Northern, 30 minutes in from Constellation, heavy from Greville.
2: Find fresh savings across health, beauty, baby, personal care and more, all at Bargain Chemist.
4: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
5: Kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
6: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited, trading as Assure One, is a licensed financial advice provider.
7: Bunnings has great value nailed across the store. And with daylight savings starting this weekend, we can help you replace those smoke alarm batteries with EverReady 9-volt battery 2-pack, just $5.69. Head in store or online for more great value. Bunnings
8: Warehouse. 4.95% finance on your next car. Exclusive to West City Auto Group. Right now, get into the Havil Jolion, Havil H6, Tank 300 or Canon Ute range with 4.95% per annum fixed finance for 48 months. With just 20% deposit. Whether you're after something stylish, practical, rugged, or ready for work, they've got something for everyone. But hurry, this exclusive offer won't last forever. Speak with Jimmy Taylor and team at West City GWM. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
9: Auckland, are you emergency ready? If the unexpected strikes, do you know what to do? Make an emergency plan this daylight saving weekend. Brought to you by Auckland Emergency Management. Make your plan at aem.govt.nz.
0: Hum, time check.
10: Brought to you by Mann Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tyres on 0800-00010.
11: Good morning, it's Amitik Nobishwe here.
0: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
12: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. An OIA expert is less shocked by alleged behaviour in the Education Ministry than a whistleblower's video. A senior has allegedly told staff not to write down interactions to circumvent the OIA. Former Ombudsman Office investigator Andrew Ecclestone says the way it has come out is rare.
13: This is why this stands out so much, is somebody's finally been caught on camera saying this.
12: An assault in South Auckland's Clendon Park overnight has left two people injured, including one critically. A 17-year-old male is charged. Ice around Gisborne is causing delays for motorists. Caution's being urged on State Highway 2. A herd of triceratops is stomping its way into Auckland Museum. Tickets go on sale today for the October exhibition. Spokesperson Victoria Travers says there will be lots to see.
14: It's so hands-on. It's awe-inspiring, animatronic. Triceratops, just so much to discover about these incredible species.
12: A hearing is underway in the lawsuit of three US news agencies over their banishment from the White House. CNN, MS Now and Politico argue it violates the First Amendment and Constitution, but the government says their coverage could amount to a national security risk. To sport, and a bold claim from Black Ferns coach Whitney Hanson, she's named a strong team for Sunday's test at Twickenham against England. Hanson thinks her side can run the Red Roses off their feet.
15: I think we've got fitness on them, so if we can play a fast game, and that's what everyone wants to watch, right?
12: Rugby news with All Blacks Travel and Hospitality.com. Eden Park, Bledisloe Cup hospitality packages selling now. And a new opponent for the All Whites, who take on Palestine in a football friendly in China from 9:30 tonight.
1: Sports news.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
16: World's best, hamari good brands.
0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
11: It's a very beautiful, bright, sunny day today. So, ज़्यादा मौसम के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इतना ही कहेंगे कि it's a very good day to get your washing sorted if you are feeling like कि बाहर कपड़े सुखाने हैं आपको, तो आज का दिन ये ज़रूर आप कर सकते हैं. However, temperatures जो है काफ़ी low रहेंगे. अभी high of 14 ही बताया जा रहा है जो हम आज experience करेंगे. Overnight 8 degrees रहेगा. Sunset होगा 6:19 PM.
0: Breakfast show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco. What's going on? क्या बकते हो?
16: अरे कहना क्या चाहते हो?
17: क्या कहना चाहते हैं हम, अच्छी तरह से आप सुने. इससे पहले कि आज की स्टोरी हम आपको सुनाएं, आज का जो चांस है ये हम आपको देना चाहेंगे. फॉर्च्यून की ओर से $251 का ग्रॉसरी वाउचर जो है ये जीतने का मौका आपको हम दे रहे हैं. और जो ग्रॉसरी वाउचर है ये लोटस सुपरमार्केट का किसी एक आउटलेट या नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट के लिए होगा. तो अभी आपको क्या करना है, आपको लिखना है फॉर्च्यून, अपना नाम और कहां से आप हमें सुन रहे हैं. प्रीटी सिंपल थिंग्स,
11: वेरी इजी.
17: हाँ, फॉर्च्यून ये लिखे सबसे पहले, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू राइट. उसके बाद अपना नाम और कहां से आप हमें सुन रहे हैं, ये 5599 पर आप हमारे पास टेक्स्ट कर दें.
11: राइट, तो अपने आंसर्स जल्दी जल्दी हमारे पास आप सेंड कर सकते हैं और 5599, और आपके लिए हम ये अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं. तो आज जाने से पहले अनाउंसमेंट अब ज़रूर करेंगे. आज का क्या मांगते हो, आई वेंट एंड आई क्रॉस चेक्ड जस्ट टू कंफर्म कि ऐसा तो नहीं कि कभी आजकल क्या है कि वायरल स्टोरीज क्रिएट करने के लिए कुछ भी लोग छाप रहे होते हैं, पब्लिश कर देते हैं, सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, एंड इट्स एक्चुअली इट्स लाइक वाइल्ड फायर. एंड ऐसा लगता है कि हाँ सच में ऐसा हुआ होगा. सो आई हैव ट्राइड टू फाइंड दिस आउट एंड मुझे पता चला कि एक्चुअली में ये सच में एक जेन्युइन चीज़ है. हाउएवर थोड़ी चीज़ें इधर उधर कर सकते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन पास होते होते भी थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन चला ही जाता है. तो ऐसे में अमेजोन पर एक रिव्यू जो है इसके बारे में काफ़ी बातें हो रही है. एंड दिस रिव्यू हैज़ बिन डन फॉर अ पिलो, एक पर्टिकुलर ब्रांड का पिलो है. इन्होंने अपने रिव्यूज़ में जाकर जब अपने कस्टमर का रिव्यू चेक किया, लाइक पढ़ा, तो दे वर एस्टोनिश्ड, दे शेयर देयर रिव्यू ऑन देयर वेबसाइट एज वेल. और वहाँ से ये स्टोरी जो है काफ़ी वायरल हुई. तो एक शख्स है, इन्होंने US में एक पर्टिकुलर पिलो के लिए अपना रिव्यू लिखा और रिव्यू का टाइटल था कॉज्ड माई डिवोर्स. इन्होंने कहा मेरी बीवी जो है ये एक लॉ का एग्जाम देने वाली थी, शी स्टेड अप स्टडिंग लेट, इसीलिए उन्होंने मेरे को कहा था कि सुबह 7 बजे जगा देना. शी स्लेप्ट थ्रू हर अलार्म्स एंड आई हैव बीन स्लीपिंग सो गुड विद दिस पर्टिकुलर पिलो कि हम दोनों जो है सुबह 7 के बजाय अराउंड 1 PM दोपहर के बाद जो ये जागे.
17: अच्छा.
11: शी वॉज फ्यूरियस बट शी हैड अनदर एग्जाम ऑप्शन एट 3 PM सो शी रश्ड out and left me in charge of picking up the kids from school. उसने कहा कि उसके बाद उसकी थकावट फिर भी थी, ज़्यादा सोया फिर भी थकावट थी, और फिर वो वापस से जो है ये थोड़ी देर के लिए जैसे ही उसी पिलो पर लेटा तो उसकी आँख लग गई. एंड वेन ही वोक अप इट वॉज ऑलरेडी 6 PM एंड उनकी बीवी जो है उनके ऊपर चीख रही थी, चिल्ला रही थी, क्योंकि अपेरेंटली वाइल शी वॉज गिविंग एग्जाम उनका फ़ोन जो है बार बार जो है ये आ रहा था, विच डिड आंसर ऑफ कोर्स. एंड लेटर ऑन जब उन्होंने चेक किया तो पता चला कि स्कूल से कॉल आ रहा था क्योंकि उनके बच्चों को टाइम पे पिक भी नहीं किया गया. नाउ शी हैड टू वेट 6 months सो दैट वो ये एग्जाम वापस से दे सके. तो उन्होंने पिलो का रिव्यू दिया है 10 out of 10 पिलो. नाउ दैट आई एम सिंगल आई एम लिविंग इन एन अपार्टमेंट and I can finally enjoy it in peace, इन्होंने कहा है. तो रिव्यू जो है इन्होंने जब पब्लिश किया, आई थिंक काफ़ी एक्सट्रीम लोगों ने कहा कि ये तो काफ़ी एक्सट्रीम रिव्यू है, और थोड़ा सरप्राइज भी हुए विद वट एवर द रिव्यू सेड. बट अपेरेंटली दिस इज वट इज़ क्या बकते हो, कुछ एक्सट्रीम हो, कुछ अलग हो, कुछ वियर्ड हो जो आपको क्या बकते हो बोलने पर मजबूर कर दे.
17: और वही हम आपके लिए लेकर आते हैं. और भी कई स्टोरीज हैं, आपके कुछ मैसेजेस जो हैं गिव आए हैं, उन पर भी हम डिटेल्स या उनको भी हम शेयर करेंगे इस प्रोग्राम में. बट राइट नाउ फॉर्च्यून, अपना नाम और कहां से आप हमें सुन रहे हैं, किस सबब में आप हैं, ये आपको हमारे पास जल्दी जल्दी टेक्स्ट करना है। जब तक अगले दो गीत आप सुनेंगे, गाने सुनेंगे, तब तक का टाइम आपके पास होगा।
11: राइट, एंड बिफोर वी मूव ऑन, अटेंशन टू ऑल उबर ड्राइवर्स, इफ यू ऑलरेडी हैव अ क्लेम विद नॉट योर फॉल्ट सर्विसेज, Now it is moving forward and our claims manager jo hai, they will be in touch with you. If you have not applied yet, intake for jo hai, ye not your fault services ke saath ab open ho chuka hai. You can definitely apply online nyfservices.com. Yaad rahe nyfservices.com par jaakar online ab application kar sakte hai. Please note, Not Your Fault Services जो है उनकी टीम is currently at full capacity, जिसका मतलब ये है कि अगर आप कॉल भी करोगे, you might not be attended, which is why they are requesting you to not call, but to go online and apply.

0: जगती।
1: What's going on?
2: What's up, Auckland?
3: चलिए सबसे पहले आपके लिए लेकर आ रहे हैं व्हाट्सएप ऑकलैंड, और आपको बता दें कहां कहां पर हमारी कम्युनिटी में क्या कुछ हो रहा है और कैसे आप इन चीज़ों का हिस्सा बन सकते हैं। फर्स्ट अप, आपको याद दिलाना चाहते हैं कि होने जा रहा है बिग दिवाली सेलिब्रेशन, जो कि आपके लिए लेकर आ रहे हैं खासतौर पर मैनिकाओ वेलरोम पार्क महिंद्रा एनजर दिवाली 2026, जहां पर मोहम्मद सदीक एंड टीम जो है ये आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए लाइव फ्रॉम इंडिया। डीजे लकी भी यहां पर आ रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। बहुत से डिलीशियस फूड स्टॉल्स रहेंगे, बहुत से फन राइज रहेंगे बच्चों के लिए, और ऑफ कोर्स फिनाले में एक स्पेक्टेकुलर फायरवर्क्स डिस्प्ले जो है ये भी रहेगा। सो इट्स ऑल हैपनिंग ऑन द 3rd of October एट द मैनिकाओ वेलरोम पार्क मैनिकाओ में 1 PM टू 9 PM। एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री, जिसका हिस्सा आप श्योरली बन सकते हैं।
4: वैदिक सेंटर पर 32 ग्लेसगो एफ पापाटोयटोय में वेद प्रचार सप्ताह जो है ये अगले सोमवार से रविवार तक होने जा रहे हैं। शाम 6:30 बजे के करीब प्रचार जो है ये शुरू हो जाएगा, और नेक्स्ट वीक 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन रहेगा न्यूजीलैंड में आर्य समाज की स्थापना का, तो आप इस प्रोग्राम में जरूर जाकर हिस्सा ले सकते हैं।
3: और इसके अलावा आपको याद दिला रहे हैं कि श्री राम मंदिर 11 Brick Street हेंडरसन, यहाँ पर होने जा रहा है श्री राम कथा। पूज्य राजन जी जो है ये आपके लिए ये लेकर आने वाले हैं नेक्स्ट वीक वेंसडे 30th September से लेकर ट्यूजडे 6th of October तक ये रहेगा, हर रात 7 PM टू 9 PM के बीच। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो इसके लिए आप श्री राम मंदिर को जरूर संपर्क कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट, आज है थर्सडे एंड टुमारो इज फ्राइडे द 25th of December, और कल होने जा रहा है एक और बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसमें आप एज अ कम्युनिटी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपके लिए भी एंट्री एब्सोल्युटली फ्री है, विच इज हम कीर्तन संग्रह रिकॉर्डिंग,
4: और इस दौरान बहुत सारे कलाकारों की रिकॉर्डिंग जो है ये की जाएगी, और उनके जो कीर्तन हैं रोवर पर हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप सुन सकेंगे। तो कल शाम 6:30 बजे के करीब पहुंच जाएं वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एफ पापाटोयटोय, और आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। स्नैक्स, रिफ्रेशमेंट्स, कावा वगैरह जो है विल बी ऑन सेल देयर, तो आप उसका भी सेवन वहाँ पर कर सकेंगे।
3: राइट, तो आपके आसपास आपकी कम्युनिटी में भी अगर कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, यू वांट अस टू टॉक अबाउट इट हमारे कम्युनिटी न्यूज सेगमेंट पे, तो आप जरूर हमें अप्रोच कर सकते हैं buzz@hamfm.com buzz@hummfm.com पर। फिलहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आपके लिए, जबकि थोड़ी देर बाद हम लेकर आने वाले एक और एक बहुत ही जरूरी जानकारी, और इसके लिए आपको हमारे साथ ही बने रहना होगा।
5: '80s के रेट्रो गाने।

0: disco ho ya rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: हम रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। For more information, log in to www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
2: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our mood.

0: Norton Vale Advisory Limited, trading as Assured One, is a licensed financial advice provider.
1: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो-दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
2: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया. मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया.
1: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
3: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.
4: उबर ड्राइवर्स, If you already have a claim with Not Your Fault Services, it is moving forward and one of their claims managers will be in touch. If you have not applied, intake 4 is open. Not Your Fault Services phone team is at capacity. So please don't call, apply online instead at nyfservices.com. That's nyfservices.com.

0: बॉलीवुड मोस्ट वांटेड में आपके लिए लेकर आ रहे थे हमारा ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग सॉन्ग्स, और इस गाने के बारे में भी हमने आपको काफी डिटेल्स जो है ये प्रोवाइड की थी। दिस पर्टिकुलर सॉन्ग इस्माइल लंगा ग्रुप द्वारा जो है ये रिक्रिएट किया गया, एंड इट वाज एंड इट इज बीइंग अप्रिशिएटेड ऑन द इंटरनेट ऑल्सो, प्लस जितने भी लोग इसे सुन रहे हैं। सिंगल रिलीज है ये फॉर दिस ईयर 2026, एंड उम्मीद है कि यू हैव ऑल्सो एंजॉयड इट, जिसे आपके लिए कंपोज किया था ऋषि सिसोदिया ने। फिलहाल
1: आपको हमने कहा था कि आपको फॉर्च्यून लिखकर 5599 पर आप हमारे पास भेजें और ड्रो में शामिल हो जाए। $251 का शॉपिंग वाउचर जीतने का मौका है। आई द फोर नमस्ते इंडिया।

0: इन सुपरमार्केट इन नोचो या फिर लोटस सुपरमार्केट के किसी एक आउटलेट में यहाँ ऑकलैंड में आप जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। तो सलमा है पापा टोय टोय से, कृणाल एलेसली से, नीलेश मैंगरी ईस्ट, विशाल नॉर्थकोट से इन्होंने अपना मैसेज भेजा है।
1: ओके, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो और भी मैसेजेस जो है ये हमारे पास आए हैं। आशीष है तकनीनी से, मुनेश है मनुरेवा से, किरणदीप बुट्टर जी है लिसनिंग फ्रॉम ऑकलैंड ऑन वे टू वर्क, इन्होंने कहा है।
0: केवल सिंह मनुरेवा, धीर मैसी, निक पेनरोज, श्वेता मनुरेवा, जायरीन ऑकलैंड से इन्होंने अपना मैसेज भेजा है।
1: आकाश है टिटिरांगी से, इसके अलावा संपत है सिल्वरडेल से, और नॉर्थकोट पॉइंट से है सिद सिखपाल जी, आपका भी गुड मॉर्निंग स्वागत कर रहे हैं हम ऑन हम।
0: नीतिका द गार्डन्स मेनिकाओ, अनीश माउंट वेलिंगटन, जश्नील माउंट वेलिंगटन, गीतांजलि स्वानसन में हैं।
1: और उसके साथ साथ सलीमा है ऑकलैंड सीबीडी से, इन्होंने मैसेज किया, मेनिकाओ से शिवनेश, वेलिंगटन से अभिषेक, और रोहिणी जी है अपाहट वेलिंगटन से।
0: मोनिका फ्रॉम पोकेनो, शालिनी मैसी, परमिंदर मटकाना, संध्या कुमारी तकनीनी में हैं।
1: दीपिका फ्रॉम ऑकलैंड, करिश्मा फ्रॉम ऑकलैंड, प्रवीण महाराज जी फ्रॉम माउंट रॉस्किल, एड्रिन इन्होंने कहा लिसनिंग ऑन रेडियो, कहां से वो नहीं बताया। और शेरोन है फ्रॉम ओनिहंगा, उसके साथ साथ हमारे पास मैसेज आया गौरव का, इन्होंने भी अपना लोकेशन नहीं लिखा है। अंबिका है सनीवेल से, इनका भी मैसेज आया है।
0: सो ऐसा करते हैं, जाने से पहले हम आपको जो क्या बोलते हैं,
1: क्या
0: बताएंगे कि किसने जो वाउचर है ये जीता है। तो आप इस दौरान अपने मैसेजेस जो है ये 5599 पर हमारे पास भेज सकते हैं। अमीशा है, आपने भी नहीं बताया कहाँ से, विश्वा है, आपने भी नहीं बताया कहाँ से, पुष्पा सिमिलरली, एशली मैंगरी से आपका मैसेज जो है ये आया है।
1: तो अभी क्या कीजिए, सबसे पहले फॉर्च्यून लिखिए, उसके बाद लिखिए अपना नाम और लोकेशन। बट वी से लोकेशन, हमें आपके एग्जैक्ट एड्रेस की जरूरत नहीं है, वी जस्ट सेइंग कि आप अपना जो भी सबर्ब है जहाँ आप रहते हैं या जहाँ से आप फिलहाल सुन रहे हैं, वो अपने नाम के साथ लिखकर 5599 पर हमारे पास आप सेंड कर दीजिए। इट्स दैट सिंपल। एंड वंस यू डू दैट, यू विल बी पार्ट ऑफ दिस ड्रॉ, जहाँ पर आज हमने कहा ना जाने से पहले आप में से किन्हीं दो लोगों को मिलने वाला है एक एक वाउचर वर्थ $251 ईच, All thanks to Fortune, जिनकी ओर से ये giveaway आपके लिए हम कर रहे हैं आज। So get started, 5599 पर अपने messages आप send कर सकते हैं।
2: थोड़ा सा हॉल बना दे।
3: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manuko, Mount Wellington and Westgate, up to 60% off on now.

0: Thursday 24th of September की ये सुबह जहाँ पर on the breakfast show with विजय एंड पूजा आपके लिए what's going on का ये सफर हम लेकर आ रहे हैं. आने वाले कुछ और दिनों में आपके लिए कुछ और जरूरी खबरें भी हम शामिल करने वाले हैं. कुछ जरूरी चीजें होने वाली हैं जिन पर आपको हम अपडेटेड जरूर रखेंगे. कितनी बार मैंने जरूर बोल दिया ना.
1: काफी बार.
0: एक और एक जरूरी चीज आपको बता दे. इट्स नॉर्मल टू फील लो समटाइम्स जस्ट लाइक द वेदर चेंजेस. पे अटेंशन टू योर फीलिंग्स. रीच इन एंड चेक how you're doing. Reach out and talk to a trusted professional. Support is available at Asian Family Services. Call Asian Helpline on 0800-862-342. Remember 0800-642-342 for free and confidential mental health support. And if you or someone you need is in danger, immediate danger, तो आप 111 remember 111 पर या emergency services से बातें कर सकते हैं.
1: By the way, सोनाली कुलकर्णी और राघव जुयाल और कायाडू लोहार जो हैं, ये अभी हाल ही में मुंबई में एक प्रेस मीट में गए थे फॉर द मूवी द पैराडाइज. द पैराडाइज जो है ये नानी की एक आने वाली फिल्म है
0: जी.
1: और इस फिल्म के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है ये उभर कर सामने आई.
0: क्या
1: सोनाली कुलकर्णी इन्होंने 26 साल पहले 26 years ago मिशन कश्मीर में ऋतिक रोशन की माँ का रोल प्ले किया था.
0: Yes, I remember.
1: And after 26 years, this time she's playing the role नानी की माँ का.
0: Oh.
1: हाँ, और उनसे ये पूछा गया, उन्होंने कहा कि आई गेट क्वाइट एस्टर्ड जब उनसे ये पूछा गया कि 26 साल बाद पहले आपने
0: ऋतिक
1: की मम्मी का रोल प्ले किया था और अब नानी का की
0: नानी
1: का,
0: की मम्मी की हाँ, आप दिखने वाले
1: तो उन्होंने कहा आई गेट क्वाइट एस्टोनिश्ड दैट ऑडियंसेस आर ओके व्हेन मेल एक्टर्स प्ले डाइवर्स काइंड ऑफ रोल्स. लेकिन जब एक हीरोइन एसेस द रोल ऑफ अ मदर लोग शॉक में चले जाते हैं. अरे माँ का रोल कर रही है ऐसा करते हैं ना. इनिशियली आई यूज्ड टू फाइट विद दिस परसेप्शन लाइक व्हाट डू यू मीन. उन्होंने कहा कि डिस्पाइट प्लेइंग मदर सो अर्ली इन हर करियर उन्हें टाइप कास्ट नहीं किया गया इन द इंडस्ट्री. उसके बाद उन्होंने कहा आई डिड प्यार तूने क्या किया और मिशन कश्मीर के बाद दिल चाहता है भी उन्होंने साइन किया. इट्स मेकर्स जो है उन्हें पता था कि मैं मिशन कश्मीर भी कर रही हूँ वो सारी चीजें हैं. सो उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री इस तरह से टाइप कास्ट नहीं करता, लोग क्यों कर रहे हैं.
0: ओके इंटरेस्टिंग. तो लेट्स सी अब जब ये इस रोल में देखने वाली है तो कितना अप्रिसिएशन या रिजेक्शन इनको फेस करना पड़ता है ये रिलीज के बाद ही पता चलेगा. फिलहाल आपको एक और एक चीज़ हम याद दिला दें. हमने जब इसके बारे में इनफेक्ट जब जब बातें की हैं तो लोगों का इंटरेस्ट हमें काफ़ी मिला है इस मामले में. और आपको हम सिर्फ रिमाइंड करा रहे हैं दैट मोस्ट ऑफ अस एक्चुअली वी डोंट टॉक अबाउट विल्स राइट, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक न्यूजीलैंड. और यहाँ पर अगर अचानक से किसी की डेथ हो जाए तो उस सिचुएशन में उनके पैसों का, उनके प्रॉपर्टी का क्या होता है आफ्टर दे आर गॉन. इंस्टेड ऑफ जस्ट अज्यूमिंग कि उनके पार्टनर्स को, उनके बच्चों को या फिर उनके रिलेटिव को मिलेगा, द सिंपल वे इज टू फाइंड आउट कि एक्चुअली में क्या होता है अगर किसी की मृत्यु विदाउट विल ये हो जाती है. न्यूजीलैंड में हम बातें कर रहे हैं. सो उसके बाद उनके एसेट्स का, उनके सेविंग्स का, उनके इन्वेस्टमेंट्स का, पर्सनल बिलोंगिंग्स का क्या होता है. इफ़ यू वांट फुल डिटेल्स ऑन दिस, एक रीसेंट एपिसोड जो है ये रिकॉर्ड किया गया है अनफिल्टर्ड विद सैंडी रूसबे में, जहां पर दे हैव हर्ड दिस कॉन्वर्सेशन और दे वर जॉइंड बाय तानिया पिंटो, सीनियर ट्रस्टी एट पब्लिक ट्रस्ट, जिन्होंने कई सारे मिथ्स एक्सप्लेन किए हैं, रिवील किए हैं कुछ ऐसे ट्रुथ्स जिसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है. प्लस शी हैज़ एम्फसाइज्ड ऑन द फैक्ट कि क्यों योर डेथ इजंट अबाउट एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, इट्स ऑल्सो अबाउट मेकिंग श्योर कि आपकी फैमिली जो है ये ना रह जाए पीछे इन फिगरिंग आउट कि अब आगे क्या होगा. सो इफ यू वांट फुल डिटेल्स आप विजिट कर सकते हैं लिंक दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू अगर आप ड्राइव लिखकर 5599 पर टेक्स्ट करते हैं तो.
2: Mornings made better.
3: Two frienda, char toast, butter jam, or a special chai.
2: The breakfast show with Vijay and Pooja.
4: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी.
5: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना.
4: और गानों में

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: वो इंडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
2: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
3: And award goes to Indelible Homes.
2: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite master builder.
4: Kahani of Indelible Homes.
5: There's a new kind of goodness in the pet aisle. Nature's Gift. Discover the new Nature's Gift grain-free range, now in convenient pouches and delicious kibble. Made with real meat, real vegetables and grain-free recipes, it's a natural choice for everyday feeding. So, looking for nature's goodness? You'll love Nature's Gift. All new look, same great nutrition in supermarkets now. The delicious dog food packed with real goodness. Give them the gift of Nature's Gift grain-free. Discover the range in store today.
6: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
7: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा।
8: अब हमारा क्या होगा?
9: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना।
7: तो क्या करें?
10: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
11: When India comes to town, Aotearoa feels different. Tickets are on sale now at nzc.nz. Be there, because this isn't cricket. This is Black Caps versus India.
12: ANZ is giving away Auckland FC tickets to fill this seat, and this seat, and that seat.
13: James, this is a radio ad.
12: Oh, sorry. ANZ is giving away 5,000 free tickets to Auckland FC's first home game of the season. It's our way of thanking the fans and Aucklanders who've backed the club from day one. Now the champs are back for more, so let's give them the welcome home they deserve and pack the stands. Search ANZ Pack the Stands for more information on how to claim your free tickets. T's and C's apply.
14: Get the kids creating these school holidays with free arts and crafts workshops at Warehouse Stationery. From making slime or clay craft to creating loom band jewellery, there's free fun for everyone these school holidays. Sign up now at warehousestationery.co.nz.
15: दुबई में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा मौका अब न्यूजीलैंड में। बिल्ड कैप्स रियल एस्टेट एंड बीएनडब्ल्यू डेवलपमेंट्स प्रेजेंट्स बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो 26 एंड 27 सितंबर एट जेडब्ल्यू मैरियट ऑकलैंड 10 AM टू 8 PM। देखिए दुबई के बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अप टू 20% ROI, प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स पर 0% टैक्स और क्वालिफाइंग यूनिट्स पर अपफ्रंट DLD डिफर्ड। डेवलपर प्रिंसिपल से सीधी बातचीत इन पर्सन। रजिस्टर नाउ, विजिट bilcaps.com। प्रमोटेड बाय वेब टाइगर्स।
16: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
17: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
18: What's going on?
19: डेली राउंडअप का वक्त है। सबसे पहले एक टीनेजर को गिरफ्तार किया गया है जब एक असोल्ट केस में या असोल्ट वाले मामले में ऑकलैंड के क्लेंडन पार्क में दो लोगों को चोटें आईं। काउंटीज मेनिकाओ सीआईबी डिटेक्टिव सीनियर सर्जेंट केविन टर्न ने बताया कि ऑफिसर्स को बुलाया गया कोपू प्लेस में कल रात 10 बजे के वक्त, जब रिपोर्टें आईं कि दो लोग घायल हुए हैं। एक को गंभीर हालत में, क्रिटिकल हालत में अस्पताल पहुँचाया गया, जबकि दूसरे की को बताया गया है कि वो सीरियस कंडीशन में थे। 17 साल के एक टीनेजर को अरेस्ट किया गया है और उन्हें आज मेनिकाओ यूथ कोर्ट में पेश किया जाएगा।
20: और इसके अलावा एक खबर जो है ये आ रही है जहाँ पर कहा गया है कि एक कोरियन आईटी कंपनी है, और शुड आई स्पेसिफाई सेइंग लाइक नॉर्थ कोरिया की एक आईटी कंपनी है, जिसके बारे में कहा गया है कि न्यूजीलैंड के नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर में कहा गया है कि नॉर्थ कोरिया आईटी वोका है। इन्होंने मैनेज किया टू सीक्रेटली गेट रिमोट एम्प्लॉयमेंट विद रेप्यूटेबल न्यूजीलैंड बिजनेसेस। नॉर्थ कोरिया में है, वहाँ से ये रिमोटली काम कर रहे हैं और न्यूजीलैंड के कई रेप्यूटेबल बिजनेसेस के साथ इन्होंने एम्प्लॉयमेंट जो ये हासिल की है, और न्यूजीलैंड के नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन जो है रिलीज की गई है। द वोका यूज्ड अ फेक आइडेंटिटी, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स एंड एक न्यूजीलैंड एड्रेस, एंड इवन रिक्रूटेड अ न्यूजीलैंड सिटीजन टू रिसीव एंड ऑपरेट द कंपनीज लैपटॉप। उनके बिहाफ पर. यस, इवेंचुअली ये जो बिजनेस है बिकेम सस्पिशियस और उन्होंने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद चलकर जो नेशनल न्यूजीलैंड नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर है उन्होंने कहा कि वोका ने फिर बाद में क्लेम किया टू हैव ऑब्टेन्ड कमर्शियली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और उन्होंने थ्रेटन किया टू रिलीज अनलेस दे वर पेड. ये इंसिडेंट जो है सामने आया जिसके चलते कहा गया है बहुत सी कंपनीज आर एट रिस्क ऑफ ब्रीचिंग यूनाइटेड नेशन सैंक्शंस और NCSC ने कहा है कि वार्निंग साइंस कैन इंक्लूड रिक्वेस्ट फॉर क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स, रिफ्यूजिंग वीडियो कॉल्स एंड अनयूजुअल वर्किंग आवर्स. इट रिकमेंड्स फेस टू फेस इंटरव्यूज, जहां पर अगर आप किसी एम्प्लॉय को अगर यू नो हायर कर भी रहे हैं तो हैव देम कलेक्ट देयर ओन इक्विपमेंट, नए एम्प्लॉयज को खासतौर पर, ताकि ऐसे सिचुएशन को आप डिकोड कर सके. एंड देयर इज अनदर ग्रोइंग कंसर्न कि AI पावर्ड साइबर अटैक्स जो है ये भी काफ़ी हो रहे हैं. NCSC ने कहा है कि एडवांस AI सिस्टम्स जो है दे आर केपेबल ऑफ एक्टिंग अनोनमसली और डेवलप कर सकते हैं मच फास्टर देन दैट इट इज़ एक्सपेक्टेड. और एडवाइस ये है कि आप अपने सॉफ्टवेयर अपडेटेड रखें, पैच सिस्टम्स रेगुलरली जो है ये करते रहे, एंड डोंट अज्यूम अ सिंपल फोन कॉल और टीम्स मैसेज इज ऑल्सो लेजिटिमेट. तो आप इस बात का भी ख्याल रखें, हर ओर से आपको अलर्ट रहना जरूरी है.
19: और साथ ही में इंडिया के खिलाफ जो समर सीरीज है उसके लिए T20 स्क्वाड की घोषणा कर दी गई है. व्हाइट बॉल कैप्टन मिचेल सेंटना एक एक्सपेंडेड 16 मैन T20 स्क्वाड को लीड करने वाले हैं. 5 गेम सीरीज जो होने जा रहा है अक्रॉस 11 डेज इन 4 सिटीज. 12 मैच टूर पर इंडिया आ रहा है न्यूजीलैंड, और इस 12 मैच टूर के लिए अभी तक मोर देन 76,000 टिकट्स आर ऑलरेडी सोल्ड. बैटिंग ऑलराउंडर रचिन रविंद्र को रूल आउट कर दिया गया है फ्रॉम द T20 सीरीज.
20: He's injured, ना?
19: हाँ, और उनके रिहेबिलिटेशन में लगभग 6 हफ्ते लग सकते हैं. तो अभी एम किया जा रहा है कि वो अवेलेबल रहें फॉर द ODI सीरीज अगेंस्ट इंडिया स्टार्टिंग एट ईडन पार्क इन ऑकलैंड, जो कि 4 नवंबर को होने को है. हार्ड हिटिंग ओपनर्स टीम साइफर्ट और फिन एलन ये एक बार फिर साथ आने वाले हैं एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस T20 वर्ल्ड कप कैंपेन. और उसके बाद चलकर ये इन दोनों को एक साथ आप देख सकेंगे, बट T20 सीरीज में दे विल बी नो रचिन रविंद्र.
20: ओके, एंड द फाइनल वन फ्रॉम माय एंड आज के लिए है कि एक लेटेस्ट स्टेज ऑफ नेशन वाइड प्रोग्राम जो है ये सामने आया है टू रिड्यूस पुलिस इन्वॉल्वमेंट इन मेंटल हेल्थ कॉल आउट्स. ये अभी काफ़ी ज़्यादा इस पर बात हो रही है. पुलिस एंड हेल्थ न्यूजीलैंड जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं स्टैंडर्ड हैंड ओवर टाइम एट एमरजेंसी डिपार्टमेंट्स फ्रॉम 60 मिनट्स टू 30 मिनट्स नाउ. इट्स द फोर्थ एंड फाइनल फेज ऑफ चेंजेस जो शुरू हुए थे 2024 में, एम्ड एट अलाउिंग पुलिस ऑफिसर्स टू गेट बैक टू अदर पब्लिक सेफ्टी वर्क. लेकिन पब्लिक सर्विस एसोसिएशन का कहना है कि ये जो मूव है ये डेंजरस है. इट आर्ग्यूज विद मेंटल हेल्थ वर्कर्स एंड आर ऑलरेडी अंडर प्रेशर एंड दे नीड पुलिस सपोर्ट जब ये नेसेसरी कंसिडर किया जाए. तो पुलिस एसोसिएशन का कहना है कि वुड का थोड़ा डिफरेंट व्यू है, सेइंग कि पुलिस आर एन द अप्रोप्रिएट लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स फॉर मेंटल हेल्थ इशूज एंड छोटे हैंडओवर्स जो है ये उनको फ्री कर देंगे, उनके ऑफिसर्स को फ्री कर देंगे टू रिस्पॉन्ड टू बर्गलरीज असॉल्ट्स एंड अदर इंसिडेंट्स. हेल्थ न्यूजीलैंड का कहना है कि सेफ्टी रिमेन्स प्रायोरिटी और पुलिस विल स्टे लॉन्गर देन 30 मिनट्स व्हेन अ केस इज कॉम्प्लेक्स या फिर सेफ हैंडओवर हैजंट बीन कंप्लीटेड. अराउंड हाफ ऑफ इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स आर ऑलरेडी मीटिंग द 30 मिनट टारगेट. Although Health New Zealand का कहना है कि कुछ rural hospitals है which may not be able to consistently meet it. तो अभी इस पर काफ़ी सवाल हो रहे हैं, काफ़ी back and forth हो रहा है. Let's see क्या decision जो है finally इसका निकलता है.
8: Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local developer.

0: Show with Vijay and Pooja.
1: Tumo jao, papi ho. Tumo jao.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction. Do baate.
2: आज की दो बातें आपको हम सुनाएंगे थोड़ी देर में, थोड़ा सा थम जाइए क्योंकि उससे पहले आज हमें बताना है कि हु आर आवर लकी विनर्स जिनके हाथ लगा है $251 वर्थ ऑफ वाउचर्स, वो भी थैंक्स टू फॉर्च्यून, जिनकी ओर से आप इन वाउचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट नोट शो या फिर लोटस सुपरमार्केट की किसी भी ब्रांच में।
3: तो सबसे पहले नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट जाकर इस वीक अपनी शॉपिंग जो करने वाले हैं इनके मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स 9256।
2: नाम क्या है इनका?
3: विशाल नॉर्थकोट।
2: इनका नाम है विशाल नॉर्थकोट?
3: नहीं, विशाल फ्रॉम नॉर्थकोट।
2: ओके, कंग्रेचुलेशंस विशाल, बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे ही वाउचर्स हमारे हाथ लग जाएंगे, हम तक पहुंच जाएंगे, हम डेफिनेटली आपके साथ ये वाउचर्स शेयर करेंगे फॉर यू टू यूज इट। एंड ऑन द अदर हैंड, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू मनीषा। और मनीषा, आपके मोबाइल के लास्ट फोर डिजिट्स आर 5453, आपने भी जो वाउचर है ये जीता है। सो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू बोथ आवर विनर्स।
3: इट डजंट एंड हियर, और भी इनाम है जो हम आपको देते रहेंगे, इसके लिए हमारे साथ शामिल रहे। पहली बात आज की, रिश्तों की भी एक अपनी उम्र होती है। कुछ मरने तक चलते हैं, कुछ जीते जी मर जाते हैं।
2: वेरी ट्रू।
3: और दूसरी बात आज की
2: जी,
3: बोलने का हक छीना जा सकता है। आपसे बोलने का हक छीना जा सकता है मगर खामोशी का कभी नहीं।
2: वो भी बहुत ही ट्रू। चले इसी के साथ साथ आपसे चाहेंगे इजाजत अब आगे बढ़ने की। कल एक बार फिर मुलाकात होगी आप सभी के साथ ठीक सुबह 6 पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा लेकर आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए एंजॉय आवर थ्रोबैक एंड थैंक यू आपके साथ और समय के लिए।

0: Factor.
1: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye kyunki aa rahi hai.
2: My time with Kashika.
3: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. हाउ आर यू? 24 सितंबर हो गया. देखो 6 दिन बजे, ये महीना भी चला गया. आप में एक महीना स्प्रिंग का ऐसे ही निकलने वाला है. कहाँ हैं आप इस समय, किस जगह से हमें सुन रहे हैं? भाई चेरी ब्लॉसम हो रहा है और ऐसे में आप काफ़ी सारी फ़ोटोज़ वगैरह निकाल ही रहे होंगे. मुझे भी बताओ लोकेशन कोई ऐसी बढ़िया सी, मैं भी चाहूँ जाके कुछ फ़ोटो छोटे निकालूँ. या एक्चुअली देखा जाए तो प्रकृति को हम अपनी आँखों में जब समा लेते हैं ना, तो एक बहुत ही अच्छी सी एक यू नो हमें एक फीलिंग आती है कि ओ माय गॉड दिस इज़ जन्नत. और ये वाकई ही स्वर्ग से कम नहीं है न्यूजीलैंड. इसी नोट पर अब वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. मैं काशिक आपका साथ निभाने के लिए आ चुकी हूँ. 12 बजे तक आपका मेरा साथ बना रहेगा. और ये कह सकती हूँ थैंक यू कशिश फूड्स को, जिनकी सौजन्य से आपके लिए मुमकिन हो जाता है मंडे टू फ्राइडे 10 से 12 बजे के दरमियान. और ऐसे में थोड़ी देर बाद हमारा साथ निभाने के लिए एशियन फैमिली सर्विसेज से एक्सपर्ट आ जाएंगी. कोई सवाल है आपके पास इनसे बात करने के लिए तो ज़रूर बताइए, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक इट फॉरवर्ड टू हर. एंड गाना तो मैं बजाने ही वाली, याद रहे आपका ऑफिस शाउट आउट, आपकी 6 वर्ड स्टोरी अबाउट द टेलीफोन, ये सब बातें जो है हमारी हाईलाइट बन चुकी हैं. जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाकर लोग यही पूछते हैं बताओ अब 6 वर्ड स्टोरीज को 6 वर्ड्स में सम अप करके बताओ. तो इट्स रियली बिकम अ सुपर डुपर हिट. थैंक यू टू यू ऑल.
0: बचाओ क्या,

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: एक्सपर्ट्स अड्डा में जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वी हैव डॉक्टर मिथिला विद अस ऑन द टेलीफोन लाइन फ्रॉम एशियन फैमिली सर्विसेज एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हो आप?
2: गुड मॉर्निंग कशिका जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
1: मैं तो ठीक हूँ। आई थॉट लेट मी जस्ट आस्क यू, आने वाले महीनों के अंदर अंदर वी विल बी टॉकिंग टू यू अबाउट मेंटल हेल्थ और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और हम किस तरह से नोटिस करते हैं अगर कोई हमारे बहुत नज़दीकी है, करीब का है, उसे हम किस तरह से सपोर्ट देते हैं। तो ऐसे में आप फ्रॉम एशियन फैमिली सर्विसेज हैं यहाँ पर और हमने सोचा यू विल बी द प्रोबेबली बेस्ट पर्सन टू यू नो कम फॉरवर्ड एंड स्पीक टू अस।
2: पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद मुझे आपके शो पे आने देने का मौका देने के लिए।
1: थैंक यू।
2: हाँ, लाइक कभी कभी लो फील करना नॉर्मल है,
1: हाँ,
2: तो उस समय पॉज करना चाहिए और रिटेन करना चाहिए, लाइक टू नोटिस हाउ यू आर फीलिंग, खुद से पूछना चाहिए लाइक मुझे कैसा महसूस हो रहा है, क्या मेरी नींद, मेरा रूटीन या मेरा लोगों से मिलना जुलना बदल गया है। सो नोटिसिंग दीज चेंजेस इज अ पॉजिटिव फर्स्ट स्टेप और रीचिंग आउट मीन्स स्टार्टिंग अ सिंपल केयरिंग कॉन्वर्सेशन। सो आप बोल सकते हैं आपके यू नो समवन यू नो जो हमेशा जैसे होते हैं वैसे नहीं है, तो फिर आप उनसे पूछ सकते हैं कि यू डोंट सीम लाइक योर सेल्फ लेटली, वुड यू लाइक टू टॉक। और अगर कोई दोस्त या रिश्तेदार अपनी परेशानी शेयर करे तो उनकी भावनाओं को समझे, उनके लिए मौजूद रहे और बिना कोई राय बनाए उनकी बात सुने।
1: ओके, तो इन सब चीजों के लिए लाइक दिस इज द प्रोग्राम फॉर रीच इन एंड रीच आउट, जिसका मीनिंग आपने हमें बहुत अच्छी तरह समझाया, तो इसके लिए कोई सपोर्ट आपकी तरफ से अवेलेबल है?
2: Definitely. So, पहले तो we should talk to someone we trust. So, कोई अगर फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है जिससे हम ट्रस्ट करते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। अदरवाइज हम एक ट्रेन प्रोफेशनल से भी बात कर सकते हैं। तो एशियन फैमिली सर्विसेज फ्री और कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट ऑफर करते हैं, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं एशियन हेल्पलाइन पर। हमारा टोल फ्री नंबर है 0800-862-342। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि इफ यू और समवन एल्स इज इन इमीडिएट डेंजर देन कॉल 111 फॉर इमरजेंसी सर्विसेज। द थिंग इज कि रीचिंग आउट इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत की निशानी है।
1: डेफिनेटली। तो आप सजेस्ट करती हैं कि आपके पास एशियन फैमिली सर्विसेज में ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं जो एक फ्री और कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट दे सकते हैं थ्रू द एशियन हेल्पलाइन, और द नंबर टू गिव अ कॉल इज 0800-862-342। इज दैट द नंबर?
2: यस यस, दैट्स राइट।
1: ठीक है, और एक चीज और है, यू नो इफ देयर इज सम काइंड ऑफ अ इमीडिएट डेंजर, व्हाट डू यू सजेस्ट?
2: तो डेफिनेटली फर्स्ट तो कॉल 111,
1: हाँ,
2: क्योंकि वो जब हम 111 पे कॉल करते हैं देन दे विल आस्क डिफरेंट क्वेश्चन और फिर उसके हिसाब से दे विल ऑल्सो प्रोवाइड यू गाइडेंस ऑन व्हाट टू डू, क्योंकि इमरजेंसी में डिफरेंट अप्रोच होता है ना। तो क्योंकि हमारी हेल्पलाइन है वो वैसे भी 9 to 8 है और हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं लाइक इमोशनल सपोर्ट, यू नो वेलबींग, कि हाउ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और हाउ टू ओवरकम चैलेंजेस लाइक गिविंग सपोर्ट इन दैट स्पेस। लेकिन इमीडिएट डेंजर पे तो 111 पे ही कॉल करना चाहिए एंड कीप योरसेल्फ सेफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: एब्सोल्युटली। तो रीचिंग आउट इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, आई कैन से दैट, और ये एक मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि एक हिम्मत की निशानी है। दिस इज व्हाट आई वुड लव टू ऐड, राइट? थैंक यू सो मच। एशियन फैमिली सर्विसेज से मिथिला गडकरी हमारा साथ दे रही थी आज, और याद रहे कि कभी भी लो फील करना एकदम नॉर्मल है और बिल्कुल ये मौसम की तरह है, जिस तरह से कभी धूप होती है कभी बादल होता है, और रीचिंग आउट का मतलब है कि आप कुछ पॉज कर रहे हैं अबाउट योर फीलिंग, है ना। खुद से खुद पूछ सकते हैं कि हमें कुछ कैसा महसूस हो रहा है, क्या मुझे नींद आई, क्या मेरा रूटीन सही चल रहा है, क्या मैं लोगों से उसी तरह मिलती हूँ जिस तरह या मिलता हूँ जिस तरह से आपको लगता है। तो ये चेंजेस एक पॉजिटिव स्टेप है खुद के लिए, एंड अपने से बढ़कर कौन होगा, है कि नहीं?
2: एकदम
1: थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. आई थिंक अगली बार से आप ब्रेकफास्ट शो में बातचीत करने वाली हैं टू केटर टू द ऑडियंस ऑफ ब्रेकफास्ट शो एज वेल. सो थैंक यू सो मच मिथिला फॉर द टाइम यू हैव गिवन मी फॉर माई टाइम. एंड ये माई टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हम कभी भी लो फील करें. बिल्कुल आपको पता है यू कैन रीच आउट टू 0800-862-342 और इमरजेंसी में 111 का इस्तेमाल कर सकते हैं. और किसी से मदद मांगना कमज़ोरी नहीं बल्कि हिम्मत की निशानी है. वंस अगेन अ बिग थैंक यू टू यू मिथिला एंड जल्द आपसे फिर बातचीत होगी.
2: थैंक यू कशिका जी. थैंक यू फॉर योर कंटिन्यूड सपोर्ट.
1: थैंक यू. टेक केयर. बाय.
2: टेक केयर. बाय बाय. बाय.
1: सो कमिंग अप नेक्स्ट इज ऑफिस शाउट आउट.
0: माय टाइम विद कशिका.
3: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज में. आप ही तो नहीं.

0: ढूंढते।
1: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
2: अब हमारा क्या होगा?
3: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना,
1: तो क्या करें?
4: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
5: Spruce your backyard for spring at Trade Tested. Smash the winter grime with a Karcher water blaster. Get a Hyundai chipper in to shred the branches or deal to the weeds with a fancy Greenworks electric garden sprayer. Be first up, best dressed this spring at Trade Tested.
6: The ultimate pro iPhone, iPhone 18 Pro. With a big leap in battery life, new 48 megapixel Fusion main camera with variable aperture for more creative control, and four gorgeous colors. Be the first to unbox it with a great deal at Spark. Plus, save even more with trade-in. Do more with iPhone 18 Pro on an eligible pay monthly mobile plan with Spark. Order online or in-store. Spark terms and credit criteria apply. Delivery times may vary.
7: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
8: हाँ। अच्छा
7: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
8: मिसेस सिंह
9: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
10: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 0928130 और विजिट focuskitchens.co.nz।
11: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
12: Office shout out.
13: ऑफिस शाउट आउट की बात करती हूँ तो मेरे दोस्त जो हैं फ्रॉम सुशील्स मसल शेफ कैफे वेलिंगटन एश, थैंक यू वेरी मच, इट इज़ सो मीनिंगफुल, वेरी सनी, ब्यूटीफुल, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने वाली, स्माइली केयर के साथ भावनाओं को, सिंपली केयर करने के साथ भावनाओं को समझने वाली कशिका जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, बी हैप्पी एंड हेल्थी। Thank you, Ash. This means a lot to me. And definitely, I'm actually doing some... I have a challenge right now on my health. But people like you and people as great as, you know, my pyare pyare listener, listeners jo bhi hain sun rahe hain, aap logon ki wajah se, it keeps me going. And that is the, you know, beauty of being on the radio. By the way, ek baat aur aapko batana chahti hu, kal ek bahut important din hai, hum kirtan sangrah ki ek recording Vedic Center mein kal 32 Glasgow Avenue Papatoy mein sham 7 baje se hone wali hai, aur hum ki team ke sath aap jud sakte hain, entry bilkul free hai, refreshments kawa sale par honge, kuch opportunities jeetne ke liye honge, yahan aap aakar un kalakaron ko bhi dekh sakte hain jo itni khoobsurti ke sath unhone gaano ki recording करने वाले हैं हम लोग मिलकर।
11: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: बीट ऑफ बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: एक बात है, एक नॉर्थ कोरिया के ऑपरेटिव जो थे, उन्होंने पोस्ट किया एज अ रिमोट आईटी कॉन्ट्रैक्टर और वो अननोइंगली इनको हायर किया न्यूजीलैंड के बिजनेस ने, जहां उनकी एक फेक आइडेंटिटी, एक लोकल रिक्रूट जो था जो उनसे सैलरी लेते थे और ऑपरेट करते थे कंपनी का लैपटॉप, इतना कुछ हुआ एंड पूरे साल भर तक उनके बिजनेस को उन्होंने ऑपरेट करने की कोशिश की। नाउ नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर ने इसे एक थ्रेट रिपोर्ट में ऐड कर लिया है और द बिजनेस, जिसको अभी रिपोर्ट में आइडेंटिफाई नहीं कराया जा रहा, उन्होंने कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने बताया न्यूजीलैंड पुलिस को इसके बारे में। इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया येस द वर्कर वॉज इन नॉर्थ कोरिया वाइल वर्किंग रिमोटली फॉर दिस। नाउ सर्टन थिंग्स लाइक दिस, कभी कभी डर बहुत लग जाता है ना, लेकिन मुझे अभी एक चीज़ है जिस पे मैं उबर ड्राइवर्स को हेलो हाय कहना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर डूइंग अ फैबुलस जॉब और अगर आपका कोई क्लेम है विद नॉट योर फॉल्ट सर्विसेज, इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड नाउ और क्लेम्स मैनेजर जो हैं आपके टच में रहने वाले हैं। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि इनटेक 4 जो है अब खुल चुका है, सो नोट कीजिए कि आप नॉट योर फॉल्ट सर्विसेज की फ़ोन टीम, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हैं, दे फुल टू द कैपेसिटी, सो उन्हें फ़ोन मत कीजिए आप। इंस्टेड अप्लाई कीजिए ऑनलाइन ऑन nyfservices.com विच इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट योर फॉल्ट सर्विसेज। उबर ड्राइवर्स नो दिस वेरी वेरी वेल एंड आई थिंक यू कैन वेरी वेल रिलेट टू दिस एंड हाउ यू गो अबाउट इट। चलो, इसके बारे में तो आपके साथ हमने शेयर कर ली। कोई कम्युनिटी की खबर है तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं 5599 पे या buzz@hamfm.com पे।

0: Factor.
1: बॉलीवुड के बारे में तो बताऊंगी ही बताऊंगी, लेकिन अभी बता देती हूँ ऑकलैंड की बहुत बड़ी दिवाली जो है ये आपके लिए लेकर आ रहे हैं. एट दिस इज गोइंग टू बी हैपनिंग ऑन द 3rd of October, 1 PM to 9 PM. फ्री एंट्री है एट द मैनकाओ वेलोड्रोम पार्क मैनकाओ में, और ये NZI कम्युनिटी ट्रस्ट NAMI आपके लिए लेकर आ रहे हैं पूरी सेलिब्रेशन. इसी के साथ साथ 28 तारीख से लेकर 4 अक्टूबर तक वेद प्रचार हफ्ता मनाया जा रहा है, जहाँ 30th anniversary सेलिब्रेशन मनाई जा रही है ऑफ आर्य समाज इन न्यूजीलैंड. ये होगा एट 32 ग्लासगो एवेन्यू पापाटोटो 6:20 से. श्री राम मंदिर में पूज्य राजन जी जो हैं ये 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक पधारने वाले हैं और प्रवचन करने वाले हैं. 7 से 9 बजे महाप्रसाद का आयोजन भी किया जा रहा है.
0: क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के.
2: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ थे.
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट.
3: इट्स नॉर्मल टू फील लो समटाइम्स, जस्ट लाइक हाउ द वेदर चेंजेस सो कैन आवर मूड्स. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800-862-342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or emergency services.
4: हे नेहा, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट होम. तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
5: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया.
4: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
6: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.
7: राज, रोमांस, एक्शन और सुपर नेचुरल पावर से भरी कहानी, एक थ्रिलिंग फैंटेसी एडवेंचर. द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा, एम तमन्ना.
8: इस वन की काली शक्ति रात के साये से भी काले.
7: द वन रिलीजिंग इन सिनेमास ऑन 25th September.
9: अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है जो कुछ भी हो रहा है सब एक नंबर की बकवास.
7: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स. रेटिंग TBC.
10: हमें माता का बुलावा आया है.
11: ANZ is giving away Auckland FC tickets to fill this seat, and this seat, and that seat.
12: James, this is a radio ad.
11: Oh, sorry. ANZ is giving away 5,000 free tickets to Auckland FC's first home game of the season. It's our way of thanking the fans and Aucklanders who've backed the club from day one. Now the champs are back for more, so let's give them the welcome home they deserve and pack the stands. Search ANZ Pack the Stands for more information on how to claim your free tickets. T's and C's apply.
13: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे.
14: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
13: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है. शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो.
15: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो. सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड.
16: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे.
17: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं. डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है.
16: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं.
18: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है. आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए. NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस. कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
1: So, Dream Diary में मेरे पास एक पूरा हफ्ता हम बात कर रहे हैं अबाउट बेबीज. और आपने कल मुझे टेक्स्ट किया था, देखिए, एंड यू रिमेम्बर्ड इट सो वेल. इफ़ यू आर ड्रीमिंग अबाउट अ बेबी बॉय, यूजुअली ये सिम्बलाइज करता है एक फ्रेश स्टार्ट, ऑफ कोर्स पर्सनल ग्रोथ और एक पोटेंशियल, यू नो, लिटरली फ्रॉम अ प्रेगनेंसी, आई कैन से दैट. लेकिन बेबी बॉय ऑफन रिप्रेजेंट करता है एक ब्रांड न्यू फेज, जैसे कि नई जॉब, एक नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट या कोई शिफ्ट इन अ रिलेशनशिप. अब दिस इज ऑल्सो हैविंग अ मैस्कुलिन एनर्जी. सो इन ड्रीम साइकोलॉजी हम कह सकते हैं एक बेबी बॉय जो है ये सिंबलाइज करता है इमर्जेंस ऑफ अ ट्रेडिशनली मैस्कुलिन ट्रेट विद इन यू. असर्टिवनेस, किस तरह से आप उसको असर्ट करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ, आपका फोकस, और किस तरह से आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उस तरफ भरसक प्रयत्न करते हैं. कई ट्रेडिशनल और कल्चरल इंटरप्रिटेशंस होते हैं रिगार्डिंग अ बेबी बॉय. एक बड़ा ऑस्पिशियस साइन माना जाता है कि भाई अपकमिंग एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी, प्रोफेशनल सक्सेस होगा, यू नो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स डू हैपन. बट आई कैन ओनली से दैट बेबीज ड्रीम करना इज अ लकी लकी थिंग. ऑलराइट, तो हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, कल हम इसे फिनाले करेंगे. कोई और ड्रीम आपको लगता है बच्चे के बारे में आपने देखी है तो मेरे साथ आप 5599 पे टेक्स्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं kashika.singh@mediaworks.co.nz.
0: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI.

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: एक बात तो है, हम इतने प्यारे प्यारे जो बातें हम आपके साथ लेकर आते हैं या गाने लेकर आते हैं, ये भी किसी ना किसी के सौजन्य से आते हैं, तो थैंक यू वेरी मच रचना, 0800 रचना, आपकी ओर से थ्रोबैक गाना आ रहा है। वैसे एक बात आपके साथ मुझे और शेयर करनी है, और वो है दैट मोस्ट ऑफ़ अस हम अवॉइड करते हैं विल्स, डेथ, या इसके बारे में बात करना हमें लगता है कि यू नो इट्स टू हैवी अ टॉपिक। लेकिन एक बात बताऊँ, अनफिल्टर्ड में सैंडी और रोज़बे ने बात की अबाउट इस्टेट प्लानिंग कॉन्वर्सेशंस और किस तरह लोग इसे अवॉइड करते हैं, और ये बातचीत उन्होंने की तान्या पिंटो के साथ, जो कि सीनियर ट्रस्टी ऑफ पब्लिक ट्रस्ट हैं। और क्या क्या हो सकता है, आप ड्राइव लिख के भेजें 5599 पे, आपको पूरा का पूरा एपिसोड मिल जाएगा किस तरह से फैमिलीज कभी कभी फिगर आउट ही नहीं कर पाती और किस तरह से चैलेंज फेस करने लग जाती हैं। सो डेफिनेटली आप ये एपिसोड ड्राइव लिख कर भेजें, आपको डिटेल्स पता चल जाएंगी। इतना ब्यूटीफुल सा ट्रैक है कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में, लेट्स गेट नॉस्टैल्जिक।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: देहात 14 ओवरनाइट टेम्परेचर ऑफ 8 आज का फोकस बताया जा रहा है. सदलीज आपका साथ देते चले जा रहे हैं जो वेस्ट की तरफ बढ़ जाएंगे. इट फील्स लाइक 12 डिग्रीज राइट नाउ. सनसेट 6:19 पर.

Namaskar and a very, very good morning to you. कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए माय टाइम लेकर मैं काशी का हाजिर हो जाती हूँ 12 बजे तक आपके मेरे साथ बना रहेगा. गाना बजाते हैं लेकिन गाना बजाने से पहले आपको याद दिलाते हैं मैं आपकी रिमाइंडर क्लॉक जो ठहरी. आज का दिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है. कहा जाता है ये बॉलीवुड नाम जो है ये ब्लेंड हुआ था फ्रॉम द नेम बॉम्बे और जो अब मुंबई है और हॉलीवुड और ये रिफ्लेक्ट करता है हिंदी लैंग्वेज की फिल्म इंडस्ट्री को लेके. One of the largest production centers in the world, जहाँ 1,000 films in a year बनती हैं और आज मनाया जा रहा है World Bollywood Day. अब पता नहीं कितने लोग इसे मनाएंगे लेकिन कुछ गाने आपके लिए लेकर आ रही हूँ. Enjoy कीजिए कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए माई टाइम लेकर मैं काशिका आपका साथ निभा रही हूँ 12 बजे तक. बचाओ क्या?

0: एब्सोल्युटली इट बेटर लिव बेटर एंड रेस्टोरेंट्स एक कुछ ऐसी जगह जहाँ छोटी छोटी चीज़ें हमें अनॉय करने लग जाती हैं. इवन इफ यू आर डूइंग समथिंग इट्स बॉदरिंग द नेक्स्ट टेबल, यू नो ऐसा कई बार हो जाता है, या कभी कभी स्टाफ भी इरीटेट होता है. कुछ गुड एटिकेट्स जो होते हैं वो ये कॉम्प्लिकेटेड रूल्स को थोड़ा ईज आउट कर देते हैं और कहते हैं कि यू शुड डेफिनेटली ड्रॉ अ लाइन जहाँ पे आपको दूसरों को एक डिस्टर्ब करना नहीं है. डोंट बी रूड टू द स्टाफ, राइट? एंड कभी कभी स्लो हो जाती है सर्विस, कुछ हो जाता है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट पर्सन इज सर्विंग यू, इज नॉट कुकिंग फॉर यू. कभी कभी अपनी फिंगर्स ना स्नैप करें, डोंट शाउट अक्रॉस द रेस्टोरेंट. जब स्टाफ से बात करें तो विद अ बेसिक कर्टसी वी कैन डू दैट. या वाई एम आई टॉकिंग ऑल दिस, इज द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले किसी ने इवेंट आउट किया कि रेस्टोरेंट में आते हैं और यू नो कुछ लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे रेस्टोरेंट उन्हीं का खुद का है, ओनर बन जाते हैं. जैसे कि इट हैपन्स वेन यू नो पीपल आर एक्चुअली स्टेइंग इन अ होटल एज वेल. आई फेस दैट इन दुबई, जहाँ लोग आते हैं और कहते हैं होटल तो अब मेरा है, ये मैंने खरीद लिया है. एक कमरे में आप रह रहे होते हैं लेकिन कितना बड़ा नाक में दम करते हैं बार बार, कभी रूम सर्विस को, कभी बेल बॉय को, कभी इसको, कभी उसको फ़ोन करने लगते हैं. नॉट एवरीबडी इन योर रेस्टोरेंट नीड्स टू नो जिस रेस्टोरेंट में आप जा रहे हैं आपका क्या कॉन्वर्सेशन चल रहा है. सॉफ्टनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाउड स्पीकर मत बन जाना भाई. कभी कभी कुछ कॉन्वर्सेशंस पर्सनल होते हैं और यूजुअली यू नो ये चीज़ होती है इवन विद द फोन्स, वी कैरी आर फोन्स और उनको स्पीकर पे लगा देते हैं. बेटर है कि यू नो वो रील्स या जो भी वीडियो आप देख रहे हैं किसी का वेट कर रहे हैं, कर्टसी जनरल है कि आप उसको स्पीकर पे ना लगाएं. रेस्टोरेंट बिजी होते हैं, क्राउड होता है, खाना गर्म हो जाता है, माफ़ कीजिएगा, बच्चे जो होते हैं वो मूव अराउंड करने लग जाते हैं. बट कुछ लोगों के बात बहुत ज़्यादा अनोइंग लगने लग जाती है. आपको अपना मील इन्जॉय करना होता है. ये बच्चे कभी कभी आपसे टकर जाते हैं तो डोंट गेट अनोइड अबाउट ऑल दिस थिंग्स. एक चीज़ और है, अगर आपको कभी माफ़ कीजिए नमक चाहिए या कोई सॉस चाहिए, आपके टेबल के नेक्स्ट में कोई बैठा हुआ होता है, डोंट सिंपली स्ट्रेच योर हैंड आउट. नो, आई थिंक इट्स बेटर कि हम क्या कर सकते हैं, हम यू नो पोलाइटली स्टाफ को बोल सकते हैं कैन यू प्लीज़ गेट समथिंग, इट विल सेव यू दैट ऑकवर्ड सिचुएशन. और एक टेबल जो है देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट सिटिंग एंड टॉकिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, बट कभी कभी जब रेस्टोरेंट पैक्ड होता है तो कई बार कुछ लोग जानबूझ के वहाँ बैठे ही रहते हैं. यू प्रॉबेबली डोंट वॉन्ट टू रश आउट यू नो आफ्टर द प्लेस, बट आई थिंक द अदर पीपल आर वेटिंग एंड दीज आर सम जनरल थिंग्स विच हैपन. एंड थैंक यू वंस अगेन, आई एम नॉट टेकिंग योर नेम, बट थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग दिस अप.
1: Sanatan World Cup Sports and Cultural Incorporated brings you Valentine's Buffet Restaurant, Lal's Transport and Ram's Group of Companies 11th Sanatan World Cup 2026, hosted by NZ Sanatan Sports and Cultural Incorporated from September 30th. Auckland comes alive with soccer, netball, volleyball and golf teams from New Zealand, Fiji, Australia, Canada and America competing across Bill McKinley Park and local venues. Unity through sport, culture and community. Contact Tunman Chairperson Jiten Lal on 021-452-503. Stay tuned to Hub, your official media partner.
2: Get the bold new flavors of Subway rice bowls, like chicken teriyaki or green goddess falafel, packed with protein, fiber, warm brown rice and your choice of salads from just $11. Eat fresh with new Subway rice bowls.
3: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
4: 1% finance and $2,000 off exclusive to West City Auto Group. That's right. Get behind the wheel of JQ J7 SHS for just $47,990 plus on-road costs. With 1% finance and $2,000 off, experience premium style, advanced technology and super hybrid efficiency all in one impressive SUV. Hurry! Limited stock available at 1% finance. Speak with Jimmy Taylor and team at West City Omura JQ. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
5: हे नेहा, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट होम। तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
6: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
5: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
7: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
8: दुबई में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा मौका अब न्यूजीलैंड में। बिल्डकैट रियल एस्टेट एंड बीएनडब्ल्यू डेवलपमेंट्स प्रेजेंट्स बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो 26 एंड 27 सितंबर एट जेडब्ल्यू मैरियट ऑकलैंड 10 AM to 8 PM। देखिए दुबई के बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अप टू 20% ROI, प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स पर 0% टैक्स और क्वालिफाइंग यूनिट्स पर अपफ्रंट DLD डिफर्ड। डेवलपर प्रिंसिपल से सीधी बातचीत इन पर्सन। रजिस्टर नाउ, विजिट buildcaps.com। प्रमोटेड बाय वेब टाइगर।
9: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six word story.
0: Okay, my six word story here is today. I would love to give this. I had gone to a national park and it was like मुझे लगा कि वहाँ पे जाके मैं कुछ फोन से लोगों को वीडियो कॉल करके दिखाऊंगी क्या है क्या नहीं. But yeah, I remembered that. So I can only say that story of mine is no service. The national park smiled. मुझे लगा चल काशिका पकड़ में आ गई. So this is what happens.
9: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

सो एक गुड न्यूज है, फोनटेरा ने डिलीवर किया है फुल ईयर की प्रॉफिट ऑफ 2.6 बिलियन इन इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिस मॉर्निंग. और पूरी ईयर के प्रॉफिटेबिलिटी में 3.4 बिलियन वाज यू नो लाइक इन पार्ट ऑफ 1.2 फ्रॉम द सेल ऑफ द मेनलैंड ब्रांड टू फ्रेंच डेयरी. वाह क्या बात है भाई. देखो कुछ कुछ अच्छी अच्छी खबरें आनी चालू हो चुकी हैं.

0: आशिका।
1: वाह,
2: हाउ
1: अद्भुत।
3: अभी मैं थोड़ी देर पहले दुबई के बारे में बातें कर रही थी, एंड दुबई के बारे में बात करते करते ऑफ कोर्स 10 इयर्स ऑफ माय लाइफ हैव गॉन इन दुबई, और वहाँ से ही सीधा यहाँ न्यूजीलैंड आई थी, राइट। लेकिन दुबई का बहुत बड़ा एक प्रॉपर्टी एक्सपो जो है कि सब कुछ चेंज हो चुका है वहाँ पे, ये होने वाला है, एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर हाई रिटर्न प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट विद जीरो टैक्स, तो ये बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो मिस मत कीजिएगा जो होने वाला है 26 एंड 27 ऑफ सेप्टेम्बर के दिन, यानी सैटरडे और संडे के दिन सुबह 10 से लेकर 8 बजे तक रात को एट JW मैरिट इन ऑकलैंड। डेवलपर प्रिंसिपल्स जो हैं आप इनसे मिल सकते हैं इन पर्सन, और इनकी एक्सक्लूसिव डील्स को आप समझ सकते हैं, इंक्लूडिंग 0% अप फ्रंट DLD फीस और जो क्वालिफाइंग यूनिट्स हैं उन पे डिफर्ड पेमेंट प्लान्स, और साथ साथ प्रोजेक्टेड रिटर्न्स ऑफ अप टू 20% ROI। अब खुद अगर आप यू नो यू वांट टू स्टार्ट आउट या अपनी पोर्टफोलियो एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो एक वन ऑन वन कंसल्टेशन जो है आप buildcaps.com के साथ बुक कर सकते हैं, नहीं तो JW मैरिट्स में आप सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक पहुंच सकते हैं 26 एंड 27 ऑफ सेप्टेम्बर के दिन। ऑफकोर्स सैटरडे के दिन आपको मैं वहाँ पे मिलने वाली हूँ, सुबह 10 बजे से मैं दोपहर तक वहाँ रहूँगी, और JW मैरिट्स में आपसे मुलाकात होगी। कुछ दुबई से कितना रिलेट कर रही हूँ मैं, और ऑलरेडी देखो ये बुलावा आ गया मेरे पास वहाँ का यहाँ पे महसूस करने का। सो आई शैल सी यू डेफिनेटली देयर, एंड ये दुबई एक्सपर्ट नहीं प्रॉपर्टी एक्सपो में।
4: मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा रहता रे।
5: हर दिन की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
6: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800-634-234. TCs and lending criteria apply.
7: The first time Glenn saved lives was a Thursday. He closed his eyes to see how many dog breeds he could name. 22. Not bad, Glenn. Not too bad. Sit back and save lives. Visit nzblood.co.nz to book your blood or plasma donation appointment.
8: Get the bold new flavors of Subway rice bowls, like chicken teriyaki or green goddess falafel, packed with protein, fiber, warm brown rice and your choice of salads from just $11. Eat fresh with new Subway rice bowls.
9: Hey, City Rail Link's now open, and our first trip's going to the game.
10: Now I can go east-west on just one train. So my first trip seeing an old friend in Swanson.
11: Our first train ride. We're surprising the kids with Te Waihoretu Station and a movie.
12: CRL first trip, coffee with friends, maybe K Road, maybe Pukekohe.
13: Oh, it'll be our millionth time going to the art gallery, but our first time taking the train.
14: Those all sound great. The City Rail Link's now open, so all aboard with Auckland Transport.
15: Shh, there's a spring sale on at Elite Bathroomwear. September only, there's serious savings on luxury bathroom fittings for your dream bathroom. There's a massive range of heated towel ladders, freestanding baths in acrylic, stone and concrete, groove timber vanities, earthy concrete basins, lead-free designer tapware in 7 colours, including brushed bronze everything. Elite Bathroomwear's massive VIP spring sale is in store only. Or apply for VIP access online. Elite Bathroomwear, Kiwi owned and operated. They love bathrooms.
16: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath, and you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights. Do lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
17: Uber drivers,
0: If you already have a claim with Not Your Fault Services, it is moving forward and one of their claims managers will be in touch. If you have not applied, intake 4 is open. Not Your Fault Services phone team is at capacity. So please don't call, apply online instead at nyfservices.com. That's nyfservices.com.

0: Factor.
1: Rescue me, recycle me.
2: मेरे घर में ना सब मुझे कहते हैं कि मैं बहुत यू नो चीज़ों को मैं डब्बा बाटली वाली हूँ. अभी वाई डू दे से दैट बट दे डोंट रियली रियलाइज कि मैं क्या डब्बा बाटली में करना क्या चाहती हूँ. आई डोंट नॉट नो हाउ मेनी ऑफ यू, लेकिन जिस समय जब हमारे पास प्लास्टिक के बैग्स आया करते थे और मैं उनमें से सामान निकाल लिया करती थी, मैं उसको रीयूज़ कर लिया करती थी इन द गार्बेज यू नो बिन्स के लिए, ट्रैश बिन्स के लाइनर्स बनाने के लिए मैं उनका इस्तेमाल कर लेती थी. सो दैट वॉज़ वन थिंग आई वुड स्टार्ट टू रीयूज़. और फाइनली फिर मुझे लगता था कि पूरा वसूल गया, फिर इससे कचरा बाहर निकल गया घर के. जो मक्खन के जो डब्बे होते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस आते हैं ना, मैं उन्हें छोड़ती नहीं हूँ. अभी जैसे भाई घर में खाना बना लिया, उसके बाद थोड़ा सा बच गया तो उसको कटोरियों में रखने के बजाय आई विल प्रेफर कि मैं उसको डब्बे में अच्छी तरह रख लूँ. और कभी कभी व्हाट आई वुड डू वुड बी प्रोबेबली रीयूज देम, कि कभी लंच बैग लंच बॉक्सेस होते हैं उसके अंदर भी आप उन सब्जी को रख दो, हिल के गिरेगी भी नहीं. सिमिलरली जो दही के डब्बे आते हैं, दही के डब्बे, अभी कशिश के डब्बों की ही मैं बात कर लेती हूँ, तो अगर कशिश के डब्बे आते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं, उसमें कई बार ऐसा होता है यू नो लाइक आई एम यूज टू दैट स्टोर करने के लिए लेफ़्ट ओवर्स. तो मोस्टली जैसे मैंने कभी टमाटर की प्यूरी बना ली या मैंने हरी चटनी बना ली, इस तरह की चीज़ें जब मैं बना लेती हूँ और मुझे लगता है कि मैं क्या करूँ, तो वो दही के डब्बे मेरे लिए काम आ जाते हैं और फिर मैं उनमें से निकाल के उसका इस्तेमाल करने लग जाती हूँ. ऐसी चीज़ें जब होने लग जाती है ना तो बहुत मुझे लगता है किफ़ायती, आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एट दैट टाइम कि मैंने इस तरह से इन चीज़ों को रीयूज़ किया. नाउ इन योर केस, how would you actually be trying to reuse things? I'm very sure there are lots and lots of ways which you probably would be wanting to do. And big thank you to you, Suparna. aap aa rahi hain mere paas Dubai Property Expo mein enjoy karne ke liye. hum log Marriott hotel mein milenge. dekho time mila to coffee shoppy bhi piyenge saath mein. acha theek hai, okay, ye to ho gaya. lekin waise aapko bata deti hu ki jab aap bachchon ki chuttiyan kal se shuru hone wali hain aur aapne ye bhi bataya ki aap प्लान कर रही हैं रोवा को डाउनलोड करने के लिए, रोवा का ऐप कर लीजिए डाउनलोड, क्योंकि आप हमें वहाँ पे जहाँ पे भी आप छुट्टियों पे दो हफ्ते की जाने वाली हैं, और आपने कहा था कि आप मैरिट से होते हुए उसके बाद आप नॉर्थ शोर की साइड से नॉर्थ में जा रही हैं, एंड यू डेफिनेटली वॉन्ट टू हैव अ लुक एट दुबई एज़ वन ऑफ द यू नो पॉइंट्स जहाँ पे आपको लगता है कि इट नीड्स सम अटेंशन, तो डेफिनेटली गो हैड. अब आप रोवा की बात ही कर रही थी डाउनलोड करने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि 60s 70s के ट्रैक सुनने हैं तो आप रिवाइंड सुन सकते हैं, 80s के जूक बॉक्स को सुन सकते हैं, फिजी कीर्तन और साथ साथ फिजी कीर्तन संग्रह ये भी आप सुन सकते हैं, पंजाबी हिट सुनने हैं तो आप बिल्कुल चढ़दी कला हमारे सुन सकते हैं, राहत फतेह अली खान का म्यूजिक स्टेशन भी आप सुन सकते हैं.
0: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: Do you buy 0800 Rachna? Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: तो चलिए फिर इसी के साथ साथ कह सकती हूँ कीजिए स्वीकार कशिका का नमस्कार. आई एम गोइंग टू लीव यू बिहाइंड विद टू वेरी वेरी नॉस्टैल्जिक टाइप ऑफ सॉन्ग्स. एक तो ऑफ कोर्स बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है एंड आई एम श्योर आप क्योंकि आज बॉलीवुड डे है एंड वर्ल्ड बॉलीवुड डे है तो ऐसे में दो प्यारे प्यारे ऐसे ट्रैक्स आपके लिए मिक्स और एक 90s का ट्रैक छोड़ के जा रही हूँ जो आपको शायद बहुत पसंद आएगा. तो कह सकती हूँ कि कीजिए स्वीकार कशिका का नमस्कार. आज का दिन कहलाता है गुरुवार वीरवार बृहस्पतिवार. मेरी मुलाकात आपसे होगी बिल्कुल धमाल के साथ. मेरी मुलाकात आपके साथ होगी एक धमाल के साथ. क्या तुक्के बनते चले जा रहे हैं ना. ये तुकबंदी बहुत अच्छी हो रही है एंड यस ये TGIF का जो मैं दिन और वो लेकर आऊँगी थोड़ा सा तड़का मारेंगे. ठीक है चलो अभी के लिए चलती हूँ. कल सुबह 10 बजे आपसे दोबारा मिलती हूँ एंड बिग थैंक यू टू यू फॉर लिसनिंग टू मी ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. रोवा के जरिए सुन रहे हैं या कहाँ से सुन रहे हैं बस थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक. जस्ट इन्जॉय दोज लवली मोमेंट्स टुगेदर विद यू. तो बाय दिस इज कशिका साइनिंग ऑफ और आ रहे हैं धूम मचाने के लिए केतन. इनका साथ जरूर दीजिएगा. टेक केयर बाय.